मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की 15वीं तिथि। तदनुसार 5 मई सन 2026 इस समय प्रातः के 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत।

0: मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संवेद स्वर में गाए इस देश गान के साथ।

0: भक्ति संगीत की कार्यक्रम वंदना में आइए वंदना करते हैं मारुति नंदन केसरी नंदन बलधारी दुख भंजन कृपा निधान संकट मोचन भगवान हनुमान की।
1: अवतार श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी

ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं। श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष है अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

भगवान राम सद्गुण और धार्मिकता के प्रतीक हैं। उनकी कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा, सत्य का पालन और करुणा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। राम नाम का महत्व जो ना जाने वो अभागी है, जिसके हृदय में श्री राम निवासी वही सौभाग्यशाली है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे सुरेश वाडेकर, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद रफी के। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, विषय है सत्याग्रह का जन्म।
1: सत्याग्रह के जन्म की कहानी भी कम रोचक नहीं है। 16 नवंबर 1860 को हिंदुस्तानी मजदूरों का पहला जहाज दक्षिण अफ्रीका के शहर नेटाल पहुंचा। ये वही मजदूर थे जो गिरमिटिया यानी बंधुआ मजदूरों के रूप में कोयले की उन खदानों में काम करने के लिए वहां पहुंचे थे जिनके मालिक गोरे थे। सेठ अबू बकर पहले हिंदुस्तानी व्यापारी थे जो व्यापार के लिए 1881 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया में उन्होंने दुकान खोली और थोड़ी जमीन खरीदी। हाजी अबू बकर का अनुसरण करते हुए कुछ अन्य हिंदुस्तानी व्यापारी व्यापार के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका आ गए। इधर अपने 5 वर्ष के गिरमिटिया एग्रीमेंट से मुक्त होने वाले मजदूरों ने स्वतंत्र रूप से छोटे छोटे कारोबार शुरू कर दिए। इस प्रकार वहां पर हिंदुस्तानी व्यापारियों का एक अच्छा खासा वर्ग स्थापित हो गया। जाहिर था कि यह बात वहां के गोरों के लिए आर्थिक हितों के प्रतिकूल थी। इन गोरों ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को हिंदुस्तानियों के खिलाफ तरह तरह के खौफ दिखाने के साथ प्रदर्शन करने की भी शुरुआत कर दी, जिसकी परिणति था एक खूनी कानून, और इसी कानून के खिलाफ सत्याग्रह का जन्म हुआ। जिस समय दक्षिण अफ्रीका में ये सब घटित हो रहा था, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में वहीं पर ही थे। नियति का ये खेल ही तो था। इस कानून का जिक्र करते हुए गांधी जी ने लिखा था, इस बिल से केवल हमारा ही अपमान नहीं होता बल्कि सारे हिंदुस्तान का अपमान होता है। अपमान का अर्थ है कि निर्दोष व्यक्ति के स्वाभिमान का भंग होना, और हम निर्दोष हैं। गांधी जी आगे लिखते हैं कि जैसे जैसे मैं उस बिल की धाराएं पढ़ता गया, कांपता गया, उसमें हिंदुस्तान के प्रति द्वेष और घृणा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं देख सका। मुझे लगा कि अगर यह बिल पास हो गया और हिंदुस्तानियों ने कायर बनकर इसे स्वीकार कर लिया, तो दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी कौम के पैर जड़ से उखड़ जाएंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष सेठ अब्दुल गनी ने की थी। सभा में जब बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास होने लगा, तो सेठ हाजी हबीब ने अपने भाषण में यह बात रखी कि यह प्रस्ताव हमें खुद को हाजिर नाजिर मानकर पास करना चाहिए कि हम नामर्द बनकर ऐसे कानून के सामने कभी भी न झुकें। और हाजी साहब के इन्हीं शब्दों ने गांधी जी को चौंका दिया, और यहीं से उस सत्याग्रह के बीज का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों जगह एक अहम भूमिका निभाई, और 11 सितंबर 1906 की यही दास्तान है। सत्याग्रह के सिद्धांत को हथियार बनाकर 8 साल के संघर्ष के बाद गांधी जी के नेतृत्व में यह लड़ाई जीत ली गई। इस विजय से दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिला, और गिरमिटिया मजदूरों पर 3 पौंड का वार्षिक कर लगाने वाले खूनी कानून को भी सरकार को वापस लेना पड़ा। इस विषय में गांधी जी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखते हैं कि अंत में

0: सत्य की जय हुई। हिंदुस्तानियों की तपस्या में सत्य मूर्तिमान हुआ। इसके लिए अटल श्रद्धा थी, अटूट धैर्य की और सतत कार्य करते रहने की आवश्यकता थी। यदि कौम हार कर बैठ जाती, कांग्रेस लड़ाई को भूल जाती और कर को अनिवार्य समझकर सरकार के आगे झुक जाती, तो वो कर आज तक गिरमिटिया हिंदुस्तानियों से वसूल होता रहता और इसका कलंक स्थानीय हिंदुस्तानियों को और समूचे हिंदुस्तान को लगता। आधुनिक युग को सत्याग्रह का शस्त्र साधन देने वाली ये सभा अवश्य ही इस युग की सबसे महत्वपूर्ण सभाओं में से एक है। यहाँ ये भी याद करना बहुत जरूरी है कि 20वीं सदी में अहिंसा के इतिहास में सर्वाधिक सुनहरा अध्याय लिखने वाले सरहदी गांधी या बादशाह खान ने सत्याग्रह को पैगंबर का हथियार कहा। इस प्रकार सत्याग्रह के सफल प्रयोग ने विश्व में एक सच्चाई, आत्म बलिदान और अहिंसा के सिद्धांत को स्थापित किया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में अर्थात सुबह 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं सुरेश वाटिकर। मई माह में हमारे किसान भाई क्या करें, इसकी जानकारी दी जाएगी कार्यक्रम खेती की बातें में। वार्ताकार हैं कुंदन सिंह और समय सुबह 6:45। साथ ही सुबह 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर यशपाल सिंह की वार्ता। शीर्षक है आधुनिक समय में आयुर्वेद।

लोक भजनों का आनंद लीजिएगा लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:45 पर, सुबह 10:45 पर, माफ कीजिएगा सुबह 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा वायलिन वादन का। कलाकार हैं शंभू दयाल श्रीवास्तव।

संगीतकार नौशाद पर केंद्रित है कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसे प्रसारित किया जाएगा दिन में 11 बजे। विश्व अस्थमा दिवस पर आधारित है कार्यक्रम। कुछ बातें कुछ गीत, शीर्षक है बढ़ता प्रदूषण घुटती सांसें। दोपहर 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में चर्चा होगी सरदार ज्ञानी जैल सिंह पर। जानिएगा इको फ्रेंडली कुकिंग विषय में। हमारे स्वास्थ्य में जानकारी दी जाएगी डार्क सर्कल कारण और निवारण पर। साथ ही सुनिएगा भावना त्यागी की वार्ता, शाकाहार से स्वास्थ्य रक्षा।

फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद प्रसारित किया जाएगा दोपहर 3 बजे। सायंकालीन सभा में शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में चर्चा का विषय है वायु गुणवत्ता और हैंड हाइजीन। अतुलनीय भारत में बात होगी चीनी का रोजा की, साथ ही हेल्पलेस के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी, इनहेलर्स के सही व संभव सफल प्रयोग की बात होगी, योग और प्राणायाम की, साथ ही वैष्णवी उपाध्याय की वार्ता संपूर्ण पोषण के लिए जरूरी है विविध भोजन प्रसारित किया जाएगा।

गर्मियों की जुताई से लाभ व विश्व अस्थमा दिवस की मंडी भाव मौसम की जानकारी व लोकगीतों के साथ डॉक्टर आदित्य कुमार की वार्ता पशुओं में कुपोषण से होने वाले रोग प्रसारित की जाएगी। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर चर्चा का विषय है विश्व अस्थमा दिवस। ज्ञान सागर, सेहत टिप्स व फिल्म संगीत के साथ असीम आनंद की वार्ता प्रसारित की जाएगी, जिसका शीर्षक है तपती धरती जिम्मेदार कौन। शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम विविधा। साथ ही रात्रि 8 देशभक्ति परम फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा भारत भारती।

कार्यक्रम खेल दर्पण प्रसारित किया जाएगा रात्रि 10 बजे और रात्रि 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं पंडित उल्लास कशालकर। तो ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं सुरेश वाटिकर।

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं, आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है, जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा, जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत, चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती, देव नदी गंगा, शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे। तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर, संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुंदन सिंह की वार्ता। शीर्षक है मई माह में किसान भाई क्या करें।
1: यों तो खेती बाड़ी के हिसाब से वर्ष भर हर महीना महत्वपूर्ण होता है। मई माह में तेज गर्मी, आंधी और धूप के कारण हर व्यक्ति का मन चाहता है कि छायादार स्थान पर ठंडी हवा का आनंद लिया जाए, लेकिन किसान भाइयों के लिए यह सब संभव नहीं है। उन्हें तो किस नई नित नई की कहावत को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करना ही पड़ेगा, अन्यथा फसल उत्पादन प्रभावित होगा और खेती से हानि ही उठानी पड़ेगी। मई माह रबी फसलों की कटाई मड़ाई और अनाज के भंडारण के कार्य को संपादित करने के लिए महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। हर किसान भाई चाहता है कि बरसात से पहले ही रबी फसलों की कटाई मड़ाई का कार्य संपूर्ण कर लिया जाए और उसका भंडारण भी समुचित तरीके से कर लिया जाए, ताकि उसे अनाज के खराब होने की संभावना से बचाया जा सके। जहाँ तक रबी फसलों की कटाई मड़ाई का सवाल है, फसल पकने पर समय से कटाई करें। फसल को ऐसी अवस्था तक न पहुंचने दें जिससे दाने या बालियां झड़ने लगें। कटाई के पश्चात लाग को खलियान में पहुंचाएं। मिलावट से बचाव हेतु बीज वाली फसल के लाग को अन्य फसलों के लाग से दूर रखें। मड़ाई से पूर्व लाग को भली प्रकार सुखा लें। अच्छी प्रकार न सूखे लाग की मड़ाई में समय भी ज़्यादा लगता है, मशीन के टूट फूट का खतरा रहता है तथा दाने भी कट फट जाते हैं। मड़ाई से पूर्व थ्रेसर की जांच कर लें, बियरिंग आदि में ग्रीस अवश्य लगा लें। इसके साथ साथ थ्रेसर का परनाला कम से कम 1 हाथ ऊंचा तथा 2 हाथ लंबा रखें। परनाला थ्रेसर में लाख डालने वाले व्यक्ति की कोहनियों को सीध में रखें। लाख डालने वाला व्यक्ति ढीले कपड़े न पहनकर चुस्त कपड़े पहने और अपनी कमीज बाजुओं तक मोड़ ले। थ्रेसर में लाख पूर्ण यानी RPM चक्कर लगाने पर ही डालें। बीज वाली फसल के लाग की मड़ाई से पूर्व थ्रेसर को 2-3 मिनट खाली चलाकर साफ कर लें तथा प्रथम कुछ लाग की मड़ाई के उपरांत उस पैदावार को बीज से अलग कर दें। जहां तक अनाज भंडारण की बात है, मड़ाई के बाद बात आती है अनाज को सुरक्षित भंडारण करने की। भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में फैलाकर खूब सुखा लें। सूखने की पहचान हेतु अनाज के दाने को दांतों के बीच दबाने से दाना कट की आवाज के साथ टूट जाएगा। वह स्थान जहां अनाज भंडारित करना है हवादार एवं ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां जमीन एवं वातावरण की नमी न पहुंच सके। अतः अनाज भंडारण हेतु लोहे अथवा टिन की चादरों से निर्मित कोठियां यानी बखारी उत्तम रहती है। अनाज रखने से पूर्व भंडार को भली प्रकार साफ कर लें। छत एवं दीवारों की दरारों को बंद करके चूने से पुताई करा दें। पुताई के बाद छत, दीवार तथा फर्श को मैलाथियन 50 cc कीटनाशक दवा की 1 भाग मात्रा 100 भाग पानी में मिलाकर बने घोल को 3 लीटर मात्रा प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर छिड़काव करें। जहां तक संभव हो भंडारण नए बोरों में करें। अगर पुराने बोरे ही प्रयोग करने हों तो अनाज भरने से पूर्व उनको मैलाथियन के घोल में 10 मिनट तक डुबाकर सुखाने के पश्चात प्रयोग करें, जिससे हानिकारक कीटों के अंडे आदि अगर हों तो नष्ट हो जाए। अनाज के अंदर BHC अथवा अन्य कोई भी दवा बिल्कुल ना मिलाएं। कमरे के अंदर बोरों में अनाज भंडारण हेतु नमी से बचाव के लिए बोरों को फर्श पर पॉलीथीन की चादर अथवा सूखी लकड़ी के पट्टों या क्रेट्स के ऊपर ही रखें। बोरों के चट्टे छल्ली या धांग के चारों ओर तथा ऊपर छत की ओर लगभग 1 मीटर खाली स्थान अवश्य रखें, जिससे हवा का आवागमन भली प्रकार होता रहे तथा समय समय पर देखभाल भी की जा सके। भंडारण में अनाज रखने के पश्चात EDB

0: 30 मिलीलीटर अथवा सल्फास की 3-3 ग्राम की एक दो टिकिया प्रति मैट्रिक टन अनाज की दर से रखकर भंडार को भूसा मिली चिकनी मिट्टी से लीप लेस कर बिल्कुल बंद कर दें, जिससे जहरीली गैस बाहर ना निकले। भंडारण के दौरान विशेषकर बरसात में भंडार गृह की देखभाल जरूर रखें। मई के महीने में आपको जायद में बोई गई फसलों की उचित देखभाल भी करना आवश्यक है। जायद के मौसम में हमारे किसान भाइयों ने उड़द की फसल और मूंग की फसल और कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाई होंगी। ये इस समय खड़ी हुई हैं और इस महीने में चूंकि विशेष गर्मी रहती है, इसलिए गर्मी से बचाव के लिए ये जरूरी है कि 15-15 दिन के अंतराल पर इन फसलों में सिंचाई आप अवश्य करें। हमारे बहुत से किसान भाई जायद में सूरजमुखी की खेती भी करते हैं और सूरजमुखी की फसल की भी देखभाल आपको करनी है। इस समय सिंचाई, निराई गुड़ाई और विरलीकरण तथा फसल सुरक्षा के उपाय इस समय आपको अवश्य अपनाने हैं, क्योंकि ये फसल भी आपके खेतों में खड़ी होगी। मक्का की फसल भी हमारे बहुत से किसान भाई जायद में उगाते हैं, उस फसल में भी सिंचाई, निराई गुड़ाई तथा फसल सुरक्षा के उपाय करें और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि नमी का अभाव नहीं होना चाहिए। आम के फल वृक्षों की भी देखभाल करनी है। आम के पेड़ों पर सफ़ेद चूर्ण यानी फफूंदी जो रोग लगता है, उसकी रोकथाम हेतु इस समय घुलनशील गंधक या अन्य कोई जैसे कैराथीन या कैलेक्स नाम की दवा का छिड़काव करें। इसके लिए आप उद्यान विभाग के कर्मचारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो किसान भाई नया उद्यान लगाना चाहते हैं, उनको नए बाग लगाने हैं, तो गड्ढों की खुदाई करने का ये उपयुक्त समय है। जहाँ पर आपको फल वृक्षों का रोपण करना है, वहाँ पर आप समुचित आकार के गड्ढे तैयार करें और गड्ढे इस समय तैयार करने के बाद आप खाली छोड़ दें, जिससे बरसात से पहले उन गड्ढों की भराई हो सके और उसमें जो है फल वृक्षों का आप रोपण कर सके। हमारे कुछ किसान भाइयों के पास ऊसर जमीन भी होती है और ऊसर जमीन के सुधार का कार्य भी अभी से यानी रबी फसल की कटाई के पश्चात ही, जब जैसे ही खेत खाली हो जाते हैं तभी से शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को कुछ काम करने हैं। जैसे जो रबी फसल की कटाई की है उसके पश्चात जो खेत खाली हुए हैं उन्हें गर्मियों में खुला छोड़ दें। मिट्टी परीक्षण हेतु खेतों से नमूना लेकर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला अवश्य भिजवाएं। मई माह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है चूहों के विनाश का, क्योंकि इस समय खेत खाली होते हैं और जब खेत खाली होते हैं तो उस समय जो चूहों के बिल हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन हम किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि चूहा विनाश का जो कार्यक्रम है ये सामूहिक रूप से करना चाहिए, क्योंकि अगर एक किसान भाई अपने खेत में चूहों के विनाश के लिए कार्यक्रम चलाते हैं तो वे चूहे दूसरे खेत में चले जाते हैं और मरते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सभी किसान भाइयों को सामूहिक रूप से चूहा विनाश का कार्यक्रम चलाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले किसान भाई पहले दिन खेत के सभी बिलों को सूखी मिट्टी से बंद कर दें। दूसरे दिन आप देखेंगे कि कुछ बिल खुले हुए दिखाई देंगे और कुछ बिल जो है आपको बंद दिखाई देंगे। इसका कारण ये है कि कुछ चूहों के नकली बिल भी होते हैं, तो कभी कभी वो नकली बिल भी बना लेते हैं लेकिन रहते असली बिलों में। तो जो बिल खुले हुए दिखाई देंगे उनको आप समझ लें कि वही चूहों के असली बिल हैं और उन्हीं बिलों में चूहा विनाश वाली दवाओं का प्रयोग आपको करना है। चूहा विनाश के लिए जिंक फास्फाइड नाम की दवा का प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड 1 भाग ले लें, तेल 2 भाग ले लें, कोई भी खाने का तेल ले लें, अनाज 40 भाग ले लें। इस तरह से ये जो आप चारा तैयार करेंगे यानी ये जो तीनों चीज़ों को मिला लेंगे, इसके बाद इसको छोटी छोटी पुड़ियाओं में बना लें, कागज़ की पुड़ियाओं में बना करके और खुले हुए बिलों में एक एक पुड़िया डालकर बिलों को गीली मिट्टी से बंद कर दें।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुंदन सिंह की वार्ता। शीर्षक था मई माह में किसान क्या करें।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के

0: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतीय जनता पार्टीति दलेन पश्चिम बंगाल राज्ये 94-200 सदस्यीय राज्य विधानसभायां प्रचंडं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः। अनेन स्वाधीनतानन्तरं प्रथमवारं पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलं बहुमतेन सत्तायाम् आगतमस्ति। असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वयुक्तेन एनडीए दलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायाम् आगम्यते, यत्र हि भाजपा दलेन 73 आसनानि विजितानि। केरलम राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन यूडीएफ इति संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधनेन 90 आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायक रूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः, यत्र च कांग्रेस दलेन 63 आसनानि विजितानि। पुदुचेरी इत्यत्र राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनेन एनडीए इत्यनेन 30 आसनेषु 18 आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रीं टीएमसी नेत्रीं ममता बैनर्जीं 15,000 मतैः पराजितवान्। निर्वाचन सूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15-वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपा दलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलेन 6-200, तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चंद्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहासः विनिर्मितः। राज्ये 34-200 निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन 80 आसनानि प्राप्तानि। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिम बंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरलम राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणां च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपा मुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतन प्रभातस्य सूचकः अस्ति, तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारत श्रेष्ठ भारतस्य भावनायां च विश्वासं स्थापितवन्तः।
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य 20-अधिकेषु राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति, तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपादलेन पुदुचेरीत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरीत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मल कुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षकरूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीयमण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकमण्डलेन अनुमोदितमासीत्। आईपीएल इति 20 प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की। वामदल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जालू कबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल त्रगावेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम ने 47 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुत सीट से हार गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन तिरुपुर जिले के अविनाशी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में टीवीके की कमाली एस से हार गई। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें अपने नाम की हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुद्दुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। एन रंगास्वामी की पार्टी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुद्दुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा पुद्दुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

0: overhauled the score 18.4 overs, losing 4 wickets. Today, Delhi Capitals and Chennai Super Kings will clash at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वार्ता। शीर्षक है आधुनिक समय में आयुर्वेद। वार्ताकार हैं डॉक्टर यशपाल सिंह।
2: इतिहास गवाह है कि मानव जीवन के स्वास्थ्य की चिंता किस सृष्टि के समय से ही आदि देवों द्वारा की जा रही है। समय परिवर्तन के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व में वृद्धि हुई और विभिन्न देशों में विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का उदय विश्व के विभिन्न देशों में हुआ। प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों में एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी, नेचुरोपैथ, चीनी, तिब्बती एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। इनमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों विशेषकर सबसे अधिक प्रचलित एलोपैथ केवल लक्षणों के आधार पर रोग की चिकित्सा करती है, किंतु आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा के साथ साथ मनुष्यों के आहार विहार, रहन सहन एवं विभिन्न चर्याओं जैसे दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या आदि का अनुसरण करने का निर्देश भी देती है। रोगी की चिकित्सा एवं स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य का संरक्षण आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। प्रचलित आधुनिक चिकित्सा पद्धति की शीघ्र लाभकारी औषधियाँ खासकर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग चिकित्सकों द्वारा अंधाधुंध किया जा रहा है। ऐसा देखा जाता है कि रोगियों को एक ही रोग के लिए एक साथ बहुत सी एंटीबायोटिक्स एवं अन्य औषधियों का सेवन कराया जाता है। इसे MDT या मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। सिद्धांततः इस थेरेपी से रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं का नाश होता है। इसके दूसरे पक्ष को देखें तो अनुसंधानों से यह पता है कि उक्त दवाएं रोग के जीवाणुओं के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करती हैं तथा एक रोग की दवा लेने से किसी अन्य रोग का उद्भव हो जाता है। आयुर्वेद रोग की प्रगति देश, काल, बल, ऋतु आदि का ध्यान रखकर रोगी की चिकित्सा करता है। उसके बढ़े हुए दोषों को साम्यावस्था में लाता है और शरीर के दूषित मलों को शरीर से बाहर निकालता है। धातुओं का पोषण करता है जिसके फलस्वरूप रोग समूल नष्ट हो जाता है। साथ ही शरीर की आंतरिक शक्ति का विकास होता है। आयुर्वेद त्रिदोष सिद्धांत पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इसके अनुसार समदोष, समाग्निश्च, समधात्मल क्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय, मन स्वस्थमिदेते अर्थात जिसके सत्व, रज, तम आदि मानसिक एवं वात, पित्त, कफ आदि शारीरिक दोष सभी अग्नियां, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एवं मल का निष्कर्षण की सभी क्रियाएं सम एवं सुचारू हों तथा जिसकी आत्मा, इंद्रिय एवं मन प्रसन्न हों वह स्वस्थ है। पाश्चात्य दोषों के लोग एलोपैथ चिकित्सा पद्धति की औषधियों के दुष्प्रभावों के कारण निरापद चिकित्सा पद्धतियों को पसंद कर रहे हैं और उन्हें जानने की तीव्र जिज्ञासा रखते हैं। इसी कारण विश्व के विभिन्न देशों ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को न केवल मान्यता दी है बल्कि अपने यहाँ आयुर्वेद महाविद्यालय खोलकर विधिवत अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया है। इधर हम अपनी ही पद्धति आयुर्वेद को गौड़ मानकर अन्य पैथियों की ओर अग्रसर हैं। हमारे आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के शिक्षकों, छात्रों एवं चिकित्सकों का उत्तरदायित्व बनता है कि वे तन, मन एवं धन से समर्पित होकर अपने ही देश की चिकित्सा पद्धति को अपनाएं एवं इसका लाभ जन जन तक पहुंचाएं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि हल्दी एड्स के वायरस को मारने में सहायक है। सदाबहार के पौधे से कैंसर की विनक्रिस्टीन एवं ब्लास्टीन नाम की दवा बनाई जाती है। सदाबहार तो TNT जैसे विस्फोटक एवं उसके दुष्परिणामों को समाप्त करने में सहायक हो सकता है। अमेरिका में इसकी खोज चल रही है। आज भारतवर्ष सहित पूरे विश्व के वैज्ञानिक आयुर्वेदिक औषधियों पर शोध में सक्रिय हैं। हमारा आयुर्वेद शास्त्र सर्वविदित, सुविस्तृत एवं शाश्वत है। अंत में हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद निरापद, पूर्ण वैज्ञानिक, शाश्वत एवं सरल चिकित्सा पद्धति है। हमें सही रहते विदेशों से

0: आयात होने से पूर्व अपने प्रयासों को तेज करना होगा, जिसके फलस्वरूप मानव संपूर्ण स्वास्थ्य अर्जन कर एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सके।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर यशपाल सिंह की वार्ता। शीर्षक था आधुनिक समय में आयुर्वेद।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:18 हुए हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना।

0: मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे
2: से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लोकतंत्र की जीत बताया। कहा, इस बार के चुनाव में सर्वाधिक रही महिलाओं की भागीदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई तबादला नीति सहित कई प्रस्ताव पारित। एक जनपद एक व्यंजन योजना को भी मिली मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का किया उद्घाटन। कहा, तकनीकी प्रगति का शानदार उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। और प्रदेश सरकार ने समाप्त की बिजली कनेक्शन के प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लोकतंत्र की जीत बताया है।
3: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है।
2: नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में कल श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
3: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को प्रधानमंत्री के प्रति देशवासियों के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जन जन का यह अभूतपूर्व जनादेश प्रधानमंत्री के नए भारत विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि को एक नई गति प्रदान करेगा। श्री योगी ने बंगाल, असम और पुडुचेरी के भाजपा संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी की गई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस वर्ष सभी स्थानांतरण 31 मई 2026 तक पूरे किए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि कैबिनेट ने एक जनपद एक व्यंजन योजना लागू करने पर सहमति दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 25% की सब्सिडी और अधिकतम 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
4: तमाम तरह से इस योजना को बनाया गया है कि पूरे प्रदेश में जो भी खाद्य पदार्थ जहाँ जहाँ के जो फेमस है और उनको प्रमोट करना, उनको दूर पैकेजिंग के माध्यम से दूर दूर तक पहुँचाना और उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको सरकार सहयोग दे करके और उस पर 25% की सब्सिडी और अधिकतम 20 लाख रूपए तक की मदद करके इस तरह से अभी 150 करोड़ रूपए का ये 26-27 बजट इस योजना में रखा गया।
2: मंत्रिमंडल की बैठक में अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में संत कबीर पार्क बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण को भी सहमति प्रदान की गई। साथ ही प्रदेश में 150 राजकीय विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब्स की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान इस वर्ष प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 147 करोड़ रुपये की धनराशि देने पर भी मुहर लगी।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सहकारी समितियों और पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के लिए 371 लेखा परीक्षकों तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लिए 129 लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर स्तर पर मजबूत वित्तीय ढांचा बनाना जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री जी के द्वारा विजन दिया गया है देश को 2047 यानी 140 करोड़ भारतीयों के सपने का भारत। उस भारत के निर्माण की दिशा में शुरुआत कहां से होनी है? सबसे छोटी इकाई से, ग्राम पंचायत। हमारी नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका है, नगर निगम है, और इसके लिए उन्हें वित्तीय प्रबंधन के गुण सिखाना, कैसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन का परिचय दे करके हम अपने यहाँ अपनी यूनिट को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम गोरखपुर पहुंचे। वह आज गोरखपुर में करीब 613 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर से ही शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी से जुड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। यह संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी कमान और मध्य कमान एवं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से आयोजित की जा रही है। इस मौके पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता और आर्मी कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को तकनीकी प्रगति का शानदार उदाहरण बताया।
2: हमारी सेनाएं क्या कुछ करने में सक्षम नहीं है, इसका अंदाजा तो पूरी दुनिया को अब हो चुका है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का, मैं मानता हूं, एक नमूना है। और इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस मिसाइल सिस्टम के साथ साथ यानी लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया है। और इसे साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं।
0: बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब पहले की तरह सभी बिजली कनेक्शन पोस्टपेड ही रहेंगे। पिछले वर्ष से अब तक प्रीपेड मोड में किए गए 83 लाख से अधिक कनेक्शन फिर से पोस्टपेड मोड में बदले जाएंगे। पुराने मीटर को भी स्मार्ट प्रीपेड मोड में बदलने का कार्य स्थगित रहेगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल इस संबंध में लखनऊ में हुई बैठक के बाद बताया कि बिलिंग की सुविधा भी अब पहले की तरह ही रहेगी। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कल फर्रुखाबाद, सीतापुर, हमीरपुर, जौनपुर और झांसी सहित 15 जिलों में 32 गो संरक्षण केंद्रों का लखनऊ से वर्चुअली लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार निराश्रित और बेसहारा गोवंशों के संरक्षण, संवर्धन और भरण पोषण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
3: निराश्रित गोवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। जो छूटी हुई गायें हैं, जिन्हें लोग दूध देने के बाद छोड़ देते हैं, योगी सरकार उनकी चिंता कर रही है। 32 वृद्ध गौ संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया गया है। एक गौ संरक्षण केंद्र की कीमत 1,80,00,000 रुपया है और ये बड़ी संख्या में इन गौशालाओं को बनाकर गायों को संरक्षित करने का काम किया जाएगा।
0: मौसम विभाग ने 3 दिनों तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। कई जगहों पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित रहा। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में ओले भी गिरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी बारिश की स्थितियों को देखते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लोकतंत्र

0: की जीत बताया। कहा, इस बार के चुनाव में सर्वाधिक रही महिलाओं की भागीदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई तबादला नीति सहित कई प्रस्ताव पारित। एक जनपद एक व्यंजन योजना को भी मिली मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का किया उद्घाटन। कहा, तकनीकी प्रगति का शानदार उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। और प्रदेश सरकार ने समाप्त की बिजली कनेक्शन के प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मौसम के मिजाज के साथ। पश्चिमी विक्षोभ का असर शहर में मंगलवार को भी देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को तूफान आ सकता है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ तेज वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं। उधर रविवार सोमवार रात 74 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार से तूफान आया, जिसे भयभीत लोगों ने कांपते हुए अपनी रातें बिताई। शहर से देहात तक वर्षा हुई। इसमें सोमवार को दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिले में रविवार रात में मौसम में बदलाव देखने को मिला था। रात को फतेहपुर सीकरी में ओले पड़े, जबकि किरावली, मढ़ाकुर, रुनकता, सरैंधी आदि क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। शहर में रात भर ठंडी हवा चलती रही। रविवार सोमवार रात करीब 3:45 पर तूफान आया। तेज हवा चलने के साथ ही वर्षा हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। मंगलवार को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है, साथ ही ओले व वर्षा की संभावना भी जताई जा रही है।

जहां बारिश और तूफान ने मौसम थोड़ा सुहावना कर दिया है, वहीं मौसम में बदलाव से तेज बुखार के साथ शरीर में दर्द की समस्याएं लोगों के मध्य बढ़ती जा रही हैं। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से वायरल संक्रमण फैलने लगा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग बुखार और खांसी से परेशान हैं, साथ ही बच्चों को तेज बुखार भी आ रहा है। इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को ठंडे व पेय पदार्थ आइसक्रीम का सेवन न करवाएं। तेज धूप से आने पर

ठंडा पानी न पिए, घर का पौष्टिक आहार लें, पानी और तरल पदार्थ का सेवन अधिक से अधिक करें, जूस की जगह फलों का सेवन करते रहें।

केंद्र सरकार द्वारा गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने और राष्ट्रीय एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आगरा जनपद में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 24 अप्रैल से 8 मई तक निःशुल्क राशन मिलना शुरू हो गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल कुल 35 किलो दिया जा रहा है। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल कुल 5 किलो प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है।

आपको बता दें कि शहर में आज जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित रहेगी। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के तहत सुल्तानगंज पुलिया के पास 250 mm और 500 mm राइजिंग मेन लाइन के इंटरकनेक्शन का कार्य किया जाएगा। शाम के समय कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। इसमें शामिल हैं बल्केश्वर कमलानगर, न्यू आगरा, इंद्रपुरी, मुगल रोड, आदर्श नगर, तेज नगर, गंगा गोरी बाग, प्रोफेसर कॉलोनी, राधानगर, राधा विहार, अनुराग नगर, लोहिया नगर, वसंत विहार और बूढ़ का बाग।

अब कुछ सूचनाएं रेलवे से। रेलवे ने जयपुर मंडल में रोड अंडर ब्रिज के काम के चलते कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त व रीशेड्यूल करने की घोषणा की है। पीआरओ ने बताया कि मथुरा जंक्शन जयपुर ट्रेन 10 मई को अलवर जयपुर के मध्य निरस्त रहेगी। जयपुर मथुरा जंक्शन ट्रेन 10 मई को जयपुर अलवर के बीच निरस्त रहेगी। इसके साथ ही लालगढ़ प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस 10 मई को लालगढ़ से 1.5 घंटा देरी से रवाना होगी। साथ ही मथुरा जंक्शन भिवानी ट्रेन 10 मई को मथुरा जंक्शन स्टेशन से 2 घंटे 10 मिनट की देरी से रवाना होगी। कोटा रेलवे स्टेशन पर जारी पुनर्विकास कार्य के चलते गाड़ी संख्या 13238 एवं 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस कोटा के स्थान पर सुगरिया स्टेशन से चलेगी। आगरा रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि ट्रेन 16 अप्रैल से 12 मई तक कोटा स्टेशन के स्थान पर सुगरिया स्टेशन से रात्रि 20:40 पर प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 13237 एवं 13239 पटना कोटा एक्सप्रेस 15 अप्रैल से 11 मई तक कोटा स्टेशन के स्थान पर सुगरिया स्टेशन पर समाप्त होगी। सूचनाओं का सिलसिला श्रोताओं हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल सफर में आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

कार्यक्रम आसपास में आपका पुनः स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए एक बार फिर से जारी करते हैं, शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। अग्निवीर का बढ़ा क्रेज, लगभग 75,000 ने किया आवेदन। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होकर देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं की ऑनलाइन सामान्य परीक्षा जून में होगी। इस बार 12 जनपदों के युवाओं ने रिकॉर्ड आवेदन किए हैं। सेना ने परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं मई माह में प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश शासन के हालिया प्रशासनिक फेरबदल के तहत आगरा के नगर आयुक्त का तबादला कर उन्हें संभल का जिलाधिकारी बनाया गया है। करीब 3 साल तक ताज नगरी में सेवाएं देने वाले उनके स्थान पर 2017 के आईएएस अधिकारी अब नगर आयुक्त होंगे। स्वच्छता के लिए शिखर पर पहुंचाकर शहर को वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। देश में शहर आगरा को एक नया मुकाम दिलवाएं। उपलब्धियों के मुख्य आंकड़े जो उन्होंने गिरवाए हैं वो ये हैं, कूड़ा निस्तारण जिसमें शामिल है 18 लाख मैट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण, भूमि बहाली 60 एकड़ जमीन डंपिंग ग्राउंड से मुक्त होगी, बुद्धा पार्क जिसमें सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किए जाएंगे, वहीं क्लीन वाटर क्लीन एयर और स्मार्ट सिटी श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे, साथ ही गोबर उत्पादों के जरिए आत्मनिर्भरता की पहल के लिए गौशालाओं का विकास किया जाएगा।

शहर में हर दिन 80 घरों में सोलर सिस्टम लग रहे हैं। जल्द ही शहर को सोलर सिटी बनाए जाने की तैयारी है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सोमवार को बैठक कर प्रधानमंत्री सूर्य योजना को सफल बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में सोलर रूफटॉप स्थापना में आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तृत से समीक्षा की गई। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अप्रैल माह में जनपद में कुल 2192 सोलर पावर प्लांट की स्थापना का कार्य किया गया है, जो प्रदेश में कुल सोलर रूफटॉप स्थापना के मामले में जनपद 5वें स्थान पर है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जनपद में कुल स्थापना 18,384 के सापेक्ष डिस्कॉम द्वारा 15,840 सोलर प्लांट का निरीक्षण संपादित किया गया है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठे विवाद पर आखिर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने रोक लगा दी है। उन्होंने प्रीपेड नाम की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इसके चलते आगरा के 1.70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वे भी आगरा के 5.5 लाख उपभोक्ताओं की भांति 1 से 30 तारीख के बिल भुगतान आगामी 10 दिनों के अंदर करेंगे। उपभोक्ताओं को SMS और WhatsApp के माध्यम से बिल भेजा जाएगा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए थे। आगरा जनपद में 5.5 लाख उपभोक्ताओं में से 1.70 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिए गए थे।

आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और आइए अब सुनते हैं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं।

नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के 250 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां 3 वर्ष की अवधि के लिए होंगी। पात्र अभ्यर्थी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 7 मई सन 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मेकॉन में अकाउंटेंट समेत 24 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स ने 24 गैर कार्यकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत अकाउंटेंट और असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। योग्य उम्मीदवार मेकॉन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 मई 2026 है।

एनएचपीसी ने ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिस की 16 भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां उत्तराखंड के धौलीगंगा थाना पिथौरागढ़ में की जाएंगी। चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 मई 2026 है।

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पदों पर आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार 6 मई सन 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र को डाक से भी भेजना होगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 11 मई सन 2026 है।

गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, इसलिए अब किताबी सफर के साथ साथ बच्चों के हुनर को तराशने का, उन्हें निखारने का मौका भी मिलने वाला है। बच्चे स्कूल की किताबों से राहत पाकर घर बैठ मोबाइल टीवी में समय बर्बाद करने की बजाय खेल कूद डांस और कई रोचक गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। शहर के क्लब, डांस सिंगिंग एकेडमी और स्कूलों की ओर से आयोजित होने वाले समर कैंप में प्रतिभाग कर वे अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। अभिभावक भी बच्चों की स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए समर वोकेशनल कोर्स को सही बता रहे हैं और इसे बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से लागू करने और बच्चों को इसके प्रति जागरूक करने की सिफारिशें भी स्कूलों को दी जा रही हैं। तो स्विमिंग, डांसिंग और सिंगिंग करेंगे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, वहीं कई बच्चे स्केटिंग और ताइक्वांडो के बैच भी शुरू जहाँ पे केंद्रों पर करे जा रहे हैं वहाँ अपने हुनर को पहचान सकते हैं, उन्हें निखार सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों का। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत, कार्यक्रम आसपास को यहीं पर संपन्न करने के।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचार प्रभात का, इंतजार कुछ पलों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपरहिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्यभर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारत

0: अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम और एलजेके ने एक एक सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहाँ आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरान

0: अनी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप्प पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
1: धन्यवाद मुनीष। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के जेर कयादत यूडीएफ फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाजे अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तिजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में 2 महाजों पर तारीख रकम हुई है। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ने वाली तमिलगा वेतरी कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इधर दीगर असेंबली इंतखाबात में आसाम और पुदुचेरी में अवाम ने फिर से हुक्मरान पार्टियों में एतमाद का इजहार किया है, जबकि केरलम में लोगों ने तब्दीली के हक में राय जाहिर की है। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर असेंबली में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की है। इस तरह तृणमूल कांग्रेस का 15 साल से जारी दौरे हुकूमत खत्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं, जबकि 1 सीट पर उसे सबकत हासिल है। 293 असेंबली सीटों में से 292 हलकों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआईएम 1 सीट पर कामयाब हुई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल में बीजेपी ने तकरीबन 45.84% वोटों के साथ 206 सीटें जीती हैं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस का वोट तकरीबन 8% कम होकर 40.8% रह गया, जबकि उसने 2021 के इंतखाबात में 48.5% वोट हासिल किए थे। तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े रहनुमाओं को हार का सामना करना पड़ा है। इस इलेक्शन में बीजेपी ने न सिर्फ शिमाली बंगाल में बड़ी कामयाबी हासिल की, बल्कि तकरीबन पूरे जनूबी बंगाल में भी अपनी मजबूत गिरफ्त बना ली। ममता बनर्जी को अपने भवानीपुर हलके में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अधिकारी ने नंदीग्राम सीट भी जीती है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी तमिलगा वेतरी कड़गम टीवीके ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। पार्टी की तश्कील के बाद पहले चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और वो वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय पिरम्बूर और तिरुची ईस्ट दोनों हलकों से चुनाव जीत गए हैं। 234 रुकनी असेंबली में हुक्मरान डीएमके पार्टी को 59 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी हरीफ पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 47 सीटों पर कामयाब हुई है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय जल्द ही तमिलनाडु के नए वजीर आला की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, जो सरकार बनाने की खातिर अक्सरियत के लिए दरकार 10 सीटें कम हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय का सुपरहिट आगाज हुआ है और उनकी पार्टी रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। थलाइवा, जननायकन, मरसल और सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हीरो रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में वजीर आला का रोल निभाने जा रहे हैं और उनके सामने वोटरों के ख्वाब पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। 51 साल के विजय को आज उनकी पार्टी के एमएलए अपना रहनुमा चुन सकते हैं। पार्टी मखलूत इत्तेहाद की सरकार बनाने को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है और विजय के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज सरकार बनाने और उसे बेहतर तरीके से चलाने का होगा, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। खबरनामे के लिए चेन्नई से सुशील चंद्र तिवारी।
0: आसाम में हुक्मरान बीजेपी के जेर कयादत एनडीए ने 126 रुकनी असेंबली में नामा निगार से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय का सुपरहिट आगाज हुआ है और उनकी पार्टी रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। थलाइवा, जननायकन, मरसल और

0: सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हीरो रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में वजीर आला का रोल निभाने जा रहे हैं और उनके सामने वोटरों के ख्वाब पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। 51 साल के विजय को आज उनकी पार्टी के एमएलए अपना रहनुमा चुन सकते हैं। पार्टी मखलूत इत्तेहाद की सरकार बनाने को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है और विजय के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज सरकार बनाने और उसे बेहतर तरीके से चलाने का होगा, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। खबरनामे के लिए चेन्नई से सुशील चंद्र तिवारी।
1: आसाम में हुक्मरान बीजेपी के जेर कयादत एनडीए ने 126 रुकनी असेंबली में 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी मुद्दत के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की है। पार्टी की इत्तेहादी आसाम गण परिषद को 9 सीटें मिली हैं, जबकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ ने फैसलाकुन कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी आईयूएमएल को 22 सीटें मिली हैं। इस तरह इस इत्तेहाद को रियासत में बालादस्ती हासिल हो गई है। यूडीएफ के करीब करीब सभी सरकर्दा रहनुमा वाज़े अक्सरियत से मुंतखब हो गए हैं। इधर हुक्मरान एलडीएफ की तरफ से सीपीआईएम को 26, सीपीआई को 8 और आरजेडी को 1 सीट मिली है। बीजेपी को इस मरतबा 3 सीटें मिली हैं, जबकि अभी तक असेंबली में पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। पार्टी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में नेमम हलके से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। पुदुचेरी में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने 30 रुकनी ऐवान में 18 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है और इख्तदार बरकरार रखा है। इत्तेहादी पार्टियों में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 3 सीटें आजाद उम्मीदवारों के हक में गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल करार दिया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम और पार्टी कारकुनों के तई तशक्कुर का इजहार किया है। चुनाव नतीजों के बाद कल शाम दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें 20 से ज्यादा रियासतों में इक्तदार में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी का मंत्र है अवाम भगवान है और पार्टी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि इसीलिए लोग पार्टी में और ज्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं।
2: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के लिए एक नई सुबह का आगाज हुआ है और अवाम ने मुल्क की अजीम जमहूरियत और कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है।
2: ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: इधर बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने भी बीजेपी और एनडीए में फिर से अपने एतमाद का इजहार करने पर चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के अवाम के तई तशक्कुर का इजहार किया। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में पार्टी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। जनाब अमित शाह ने मगरबी बंगाल में पार्टी की जीत को डर, खौफ, खुशनूदी और दरअंदाजों को पनाह देने वालों के खिलाफ अवाम के जवाब से ताबीर किया। उन्होंने लगातार तीसरी बार पार्टी में एतमाद का इजहार करने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तिजारती अंजुमनों ने बीजेपी की शानदार कामयाबी का खैर मकदम किया है। कारोबारी रहनुमाओं ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार रियासत की मईशत में नई जान डालने के लिए सनतकारी बुनियादी ढांचे

0: के फरोग और सरमायाकारों के लिए साजगार पॉलिसियों के एक नए दौर का आगाज करेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरान से किए गए एक ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। पिछले महीने नाफिज की गई जंगबंदी के बाद से मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके में ये इस तरह का पहला हमला है जिससे काफी नुकसान हुआ। वहां के हुकाम ने ये जानकारी दी है। मालूम हुआ है कि इस वाकये में 3 भारतीय शहरियों को कुछ जख्म आए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अबूजबी में भारतीय सिफारतखाने ने बताया है कि वो मुतासिर अफराद की खैर आफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुकाम के साथ राबता कायम किए हुए है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की है कि कल वहां आने वाले 4 ड्रोन और 3 क्रूज मिजाइलों का पता लगाया गया और उन्हें बीच में ही मार गिराया गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: कल के हमलों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद से कायम निस्बतन पुरसकून माहौल का सिलसिला टूट गया है। 8 अप्रैल को ये जंगबंदी नाफिज हुई थी। अमरीका के सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अमरीकी फोर्सेज आबनाए हुरमुज से फंसे हुए कमर्शियल बहरी जहाजों को बहिफाजत बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू करेगा, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया और कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान ने यह वार्निंग दी है कि इस आबी गुजरगाह में दाखिल होने वाले गैर मुल्की

0: नाफिज हुई थी। अमरीका के सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अमरीकी फोर्सेज आबनाए हुरमुस से फंसे हुए कमर्शियल बहरी जहाजों को बहिफाजत बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू करेगा, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया और कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान ने यह वार्निंग दी है कि इस आबी गुजरगाह में दाखिल होने वाले गैर मुल्की फौजी फोर्सेज पर हमला किया जाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने जमैका के अपने हम मनसब कामिना जॉनसन और उनकी काबीना के दीगर वजरा के साथ एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के दरमियान शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने तालीम, सेहत, जरात, डिजिटल सियाहत, खेल, तफरी, बुनियादी ढांचे, सलाहियत साजी और कसीर जहती उमूर के सिलसिले में ताल्लुकात को आगे ले जाने के बारे में तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने जमैका के सनती और कारोबारी रहनुमाओं के साथ बातचीत भी की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो रियासत में पीने के पानी की

0: गंगा सागर तक कमल की हुक्मरानी। अखबारात ने भारत और कनाडा के दरमियान एफटीए मुजाकरात का दूसरा दौर शुरू होने की खबर को भी अहमियत दी है। तकनीकी दौर में मुस्तकबिल के लिए तहकीक और सरप्राइज इंतहाई जरूरी। अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को कौमी सफे पर जगह दी है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के जेर क्यादत यूडीएफ फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाजह अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमलों में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण और मधुश्री के गाए इस मधुर गीत के साथ। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत एआर रहमान और इस्माइल दरबार का, साथ ही फिल्म का नाम है किसना।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कोई आपसा से, स्वर सोनू निगम का। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

जलीस शेरवानी का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना। उदित नारायण और राघव की आवाजों में धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने और फिल्म का नाम था तेरे नाम। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजों में गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार आनंद राज आनंद और फिल्म का नाम है हमको तुमसे प्यार है।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, रूप कुमार राठौर जयश्री शिवराम की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है संजीव दर्शन ने, और फिल्म का नाम है कितने दूर कितने पास।

रूप कुमार राठौर और जयश्री शिवराम की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म कितने दूर कितने पास का गीत। और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें प्रस्तुत है जिले की हलचल।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शाहजहांपुर और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्र का।
2: शाहजहांपुर जनपद में बीते एक महीने के दौरान प्रशासनिक शक्ति, जनकल्याणकारी पहल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, खेल और नगर व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों ने जिले की तस्वीर को जीवंत बनाए रखा। हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में हलचल रही, जिसने स्पष्ट किया कि प्रशासन और समाज दोनों स्तरों पर निरंतर सक्रियता बनी हुई है। महीने की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा का जिला कारागार निरीक्षण खास रहा। उन्होंने कारागार की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और विशेष रूप से महिला बैरक में जाकर बंदियों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने महिला बंदियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कारागार में चल रहे पठन पाठन कार्यक्रम की सराहना करते हुए सुधारात्मक और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। साफ सफाई और अनुशासन पर संतोष जताते हुए उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ये महीना विशेष रहा। श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में महात्मा रामचंद्र जी महाराज बाबू जी की 127वीं जयंती अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हजारों साधक एकत्रित हुए और सामूहिक ध्यान के माध्यम से विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना की। वैश्विक आध्यात्मिक मार्गदर्शक कमलेश डी पटेल दाजी ने अपने वर्चुअल संदेश में साधना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अधूरे प्रयास व्यक्ति के भीतर गहरे संस्कार छोड़ते हैं। उन्होंने हार्डफुलनेस पद्धति को जीवन में अपनाने का संदेश दिया और आंतरिक शुद्धि के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा दी। पूरा आश्रम दिन भर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहा। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 30 मेधावी छात्र छात्राओं को अपने आवास पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद कर उनके लक्ष्य, तैयारी और भविष्य की योजनाओं को समझा। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, समाचार पत्रों के पठन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी पर जोर देने की सलाह दी।

0: साथ ही जिले के 165 गांव में पुस्तकालय स्थापित करने की योजना की जानकारी दी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सके। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण कर कार्मिकों से सीधा संवाद किया और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को परखा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही प्रशिक्षण को व्यवहारिक और स्पष्ट बनाने के निर्देश दिए, ताकि फील्ड में कार्य करने वाले कर्मचारी किसी भी प्रकार की घटनाएं का सामना न करें। पुलिस विभाग भी पूरे महीने सक्रिय रहा। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने पुबाया कोतवाली का औचक निरीक्षण कर महिला हेल्प डेस्क सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को रजिस्टर में विस्तार से दर्ज किया जाए और किसी भी मामले में लापरवाही न हो। पारदर्शिता और संवेदनशीलता को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए उन्होंने पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। खेल गतिविधियों में भी जिले की बेटियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अस्मिता खेलो इंडिया बालिका हैंडबॉल लीग का आयोजन दून इंटरनेशनल स्कूल में किया गया, जिसमें जिले की 9 टीमों ने भाग लिया। कड़े मुकाबलों के बाद दून इंटरनेशनल स्कूल विजेता बना, जबकि हरि कौशल त्यागी पब्लिक स्कूल उपविजेता रहा। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उन्हें मंच देने की आवश्यकता है। नगर व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम ने भी सख्त कदम उठाए। शहर के केरुगंज, घंटाघर और बहादुरगंज क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटवाया गया और ठेला संचालकों से जुर्माना वसूला गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। कुल मिलाकर शाहजहांपुर में बीता महीना प्रशासनिक शक्ति, जन जागरूकता, शिक्षा उन्नयन, आध्यात्मिक चेतना, खेल प्रतिभाओं के उत्थान और नगर सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रयासों का साक्षी रहा। जिले में हर स्तर पर हो रही गतिविधियां ये दर्शाती हैं कि विकास और व्यवस्था को लेकर प्रशासन और समाज दोनों सजग और प्रतिबद्ध है।
1: शाहजहांपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का।
2: जिले में विश्व स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उपदेश से बीते हफ्ते विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर एक जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मलेरिया जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी के प्रति आम जन में जागरूकता बढ़ाने और इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास को मजबूत करना था। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में जिला मलेरिया अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने मलेरिया के खतरे, उसके फैलाव और बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में विश्व मलेरिया दिवस की थीम मलेरिया को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प, अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा, लोगों को जागरूक करने और इस बीमारी के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का आह्वान करती है। उन्होंने कहा कि मलेरिया उन्मूलन के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें हर एक नागरिक की सक्रिय भूमिका जरूरी है। गोष्ठी के अंत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन प्रसाद ने उपस्थित लोगों को मलेरिया उन्मूलन के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, बुखार होने पर तुरंत जांच कराएं और मलेरिया के लक्षण को नजरअंदाज न करें। उन्होंने कहा कि यदि समाज के सभी लोग मिलकर प्रयास करें तो वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इस हफ्ते कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र प्रतापगढ़ में एक जनपद एक उत्पाद के प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्या के द्वारा मंच से 15 प्रशिक्षार्थियों को अपने हाथों से टूल किट वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त उद्योग AS रावत द्वारा मुख्य अतिथि एवं सभी प्रशिक्षार्थियों का अभिवादन करते हुए उन्हें योजना से लाभ हेतु आह्वान किया गया था। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बीते महीने की शुरुआत में ग्राम संसारपुर में निर्माणाधीन इंडस्ट्रियल एरिया का स्थलीय निरीक्षण किया। यह इंडस्ट्रियल एरिया कार्यदायी संस्था UPSIC द्वारा लगभग 14 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही है, जो जनपद में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परियोजना के मानचित्र का अवलोकन करते हुए निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में सड़कों एवं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि समतलीकरण एवं अन्य शेष कार्य बजट प्राप्त होने के उपरांत लगभग 6 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। जिला अधिकारी ने मौके पर निर्मित सड़कों और नालों की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जिला अधिकारी ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में शीघ्र पूर्ण होने से जनपद में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इच्छुक उद्यमियों को फैक्ट्री स्थापित करने हेतु प्लाट आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जनपद में भारत रत्न संविधान

0: निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती को हर्षो उल्लास व धूमधाम से मनाई गई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्या अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके अलावा अपर जिला अधिकारी आदित्य प्रजापति सहित कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारियों ने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्या अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में ऐसे बहुत कम महापुरुष हुए हैं जिनके नाम पर संपूर्ण विचारधारा और जीवन दर्शन विकसित हुआ। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचारों को गांधीवाद तथा अम्बेडकर के सिद्धांतों को अम्बेडकरवाद के रूप में जाना जाता है, जो न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर अम्बेडकर के समानता के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से समान है और उन्हें समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने आह्वान किया कि वे बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में अपनाए, खासकर शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने बच्चों को उनके सिद्धांतों से अवगत कराएं। बीते महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 36,230 करोड़ से निर्मित 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ प्रयागराज का लोकार्पण जनपद हरदोई में किया गया, जिसके क्रम में जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के ग्राम सराय संग्राम सिंह स्थित टोल प्लाजा पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जनपद के प्रभारी मंत्री व परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, सदर विधायक गजेंद्र कुमार मौर्य, विधायक विश्वनाथगंज जीतलाल पटेल, जिला अधिकारी शिव सहाय अवस्थी, पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, जनपद स्त्री अधिकारी व जन सामान्य ने सजीव प्रसारण का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किमी लंबा है, जो मेरठ के बिजोली गांव से प्रारंभ होकर प्रयागराज के जूदापुर दादू गांव तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 प्रमुख जनपदों कमसा, मेरठ, हापुर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ते हुए गमन को सुगम बनाएगा और औद्योगिक और विकास गतिविधियों को नई देगा। उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय से जुड़ने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को पश्चिम से पूरब तक जोड़ने का यह सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक्सप्रेसवे का अवलोकन किया गया था और इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार थे पंडित भरत व्यास, संगीतकार वसंत देसाई और फिल्म का नाम दो आंखें भारा हाथ। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। शब्द रचना गुलशन बाबरा की है, धुन बनाई है रवि ने और फिल्म का नाम है मॉडर्न गर्ल।

शोला और शबनम, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। बोल कैफी आसमी के हैं, संगीत खयाम का दिया हुआ।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर के स्वर में। धुन बनाई थी एसटी बर्मन ने और फिल्म का नाम था नागिना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन और फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

तीसरी मंजिल फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंद लोक भजन।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संवेद सुर में गाए हुए चंदलो भजन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता।

मोहब्बत फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और विनोद राठौर की आवाजों में। शिवदशना समीर की थी, धुन बनाई थी संजीव दर्शन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मृत्युदंड से, स्वर उदित नारायण अलका याग्निक के, बोल जावेद अख्तर के दिए हुए हैं और संगीत आनंद मिलिंद का।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत के स्वर में। शब्दशना समीर की है, संगीत अनु मलिक का दिया हुआ और फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है।

मुलाकात इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, रोहन कपूर के स्वर में धुन बनाई थी विशाल ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल शर्मा और फिल्म का नाम है मुझसे दोस्ती करोगे।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं शंभू दयाल श्रीवास्तव का बजाया राग यमनी बिलावल में वायलिन वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शंभुदयाल श्रीवास्तव से राग यमनी बिलावल में वॉयलिन वादन। आइए अब सुनते हैं वॉयलिन पर ही शंभुदयाल श्रीवास्तव की बजाई पूर्वी धुन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शंभु दयाल श्रीवास्तव की वॉयलिन पर बजाई पूर्वी धुन। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको ले चलेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उस सुनहरे दौर में जहां धुनें सिर्फ बनाई नहीं जाती थी बल्कि जी जाती थी, जहां हर सुर में आत्मा बसती थी। और उस दौर के सबसे बड़े जादूगर थे नौशाद अली। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय संगीत को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे अमर बना दिया। आज के इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे नौशाद साहब की जिंदगी, उनका संघर्ष, उनकी महान रचनाएं और वो कारण जिनकी वजह से आज भी उनका संगीत दिलों में धड़कता है। नौशाद अली का जन्म 25 दिसंबर 1919 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, लखनऊ जहां तहजीब भी है और संगीत भी। बचपन से ही नौशाद साहब को संगीत से गहरा लगाव था, लेकिन उनके परिवार में संगीत को करियर के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। उनके पिता चाहते थे कि वे पढ़ लिखकर एक स्थिर नौकरी करें, लेकिन कहते हैं ना, जिसके दिल में सुर बस जाएं उसे कोई रोक नहीं सकता। नौशाद साहब चुपके

चुपके थिएटर जाकर संगीत सुनते, हारमोनियम बजाना सीखते और धीरे धीरे संगीत उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। संगीत का जुनून उन्हें लखनऊ से मुंबई खींच लाया, लेकिन यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी। श्रोताओं, इनके बारे में और भी जानेंगे, अभी सुनते हैं इन्हीं का ये प्यारा सा एक नगमा।

नहीं मानी। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, थिएटर में म्यूजिक अरेंज किया और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1940 में उन्हें फिल्म प्रेम नगर में संगीत देने का मौका मिला, लेकिन असली पहचान उन्हें 1944 की फिल्म रतन से मिली। इस फिल्म के गाने इतने लोकप्रिय हुए कि नौशाद साहब रातों रात स्टार बन गए। 1940 और 50 का दशक नौशाद साहब के नाम रहा। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में संगीत दिया। अनमोल घड़ी, मेला, बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुगले आजम, इन फिल्मों के गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस समय में थे। नौशाद अली की सबसे बड़ी खासियत थी भारतीय शास्त्रीय संगीत का फिल्मी संगीत में अद्भुत समावेश। उन्होंने रागों को इतनी खूबसूरती से फिल्मों में पिरोया कि आम लोग भी शास्त्रीय संगीत से जुड़ गए, जैसे मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोहे भूल गए सांवरिया जिसे अभी आपने सुना, प्यार किया तो डरना क्या। नौशाद साहब ने हिंदी सिनेमा के महान गायकों के साथ काम किया, जिनमें थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, तलत महमूद और भी बहुत से महान गायक। उन्होंने हर गायक की आवाज को पहचान कर उनके अनुसार धुन बनाई। यही वजह है कि उनके गाने दिल में उतर जाते हैं।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म संगीतकार नौशाद अली के विषय में। संगीत का जुनून उन्हें लखनऊ से मुंबई खींच लाया, लेकिन यहां जिंदगी आसान नहीं थी। मुंबई में उन्होंने कई रातें फुटपाथ पर भी गुजारी, भूख, संघर्ष, असफलता सब कुछ झेला, लेकिन उन्होंने हार

श्रोताओं, आज जहां डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है, वहीं नौशाद साहब के समय में सब कुछ लाइव रिकॉर्ड होता था। वो सैकड़ों म्यूजिशियंस के साथ ऑर्केस्ट्रा तैयार करते थे, हर वाद्य यंत्र का संतुलन खुद तय करते थे। कई बार एक गाने को रिकॉर्ड करने में कई दिन तक लग जाते थे, लेकिन परिणाम अमर गीत। नौशाद अली को उनके योगदान के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया, जैसे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण, फिल्म फेयर अवार्ड्स। उनका नाम भारतीय संगीत इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद नौशाद साहब बेहद सरल इंसान थे। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनका मानना था, संगीत दिल से निकलता है और दिल तक ही पहुंचता है। श्रोताओं, अब तक आपने नौशाद अली के जीवन और उपलब्धियों के बारे में जाना, लेकिन किसी महान कलाकार को सच में समझना हो तो उनके काम करने के तरीके, सोच और सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं उन पहलुओं की जो अक्सर कम बताए जाते हैं, लेकिन वही उन्हें महान बनाते हैं। नौशाद साहब के लिए संगीत सिर्फ कला नहीं था, बल्कि एक विज्ञान और साधना था। वो धुन बनाते समय केवल शब्दों को नहीं देखते थे, बल्कि ये समझते थे कि ये गीत किस स्थिति में फिल्माया जाएगा, उस समय पात्र की मानसिकता क्या है, दर्शक उस दृश्य को कैसे महसूस करेंगे। कई बार वे एक धुन बनाने के लिए दिनों तक सिर्फ सोचते रहते थे, बिना किसी वाद्य यंत्र को भी छुए। उनका मानना था, धुन पहले दिल में बनती है, बाद में कागज और सोनों पर उतरती है।

श्रोताओं, आज के समय में एक गाना कुछ घंटों में ही रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन नौशाद साहब के समय में हर गाने के पीछे कई कई दिनों की रिहर्सल्स होती थी। हर गायक को बार बार अभ्यास कराया जाता, हर वाद्य यंत्र का टाइमिंग परफेक्ट किया जाता, छोटी सी गलती पर भी पूरा टेक दोबारा होता था। वो कहते थे अगर एक सुर भी गलत हुआ तो भाव टूट जाता है। उनकी इसी परफेक्शन ने उनके संगीत को अमर बना दिया। नौशाद अली साहब हमेशा मानते थे कि उनका संगीत उनके गुरुओं की देन है। उन्होंने कई महान शास्त्रीय उस्तादों से सीख ली और उन्हें फिल्मों में मौका भी दिया। ये उस समय की बहुत बड़ी बात थी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री और शास्त्रीय संगीत के बीच दूरी हुआ करती थी। नौशाद साहब ने इस दूरी को खत्म किया और क्लासिकल संगीत को आम जनता तक पहुंचाया। उनकी एक और खासियत थी सिचुएशन के हिसाब से संगीत बनाना। वो कभी भी एक जैसा संगीत नहीं बनाते थे। हर फिल्म, हर सीन, हर किरदार के लिए उनकी धुन अलग होती थी। दुख के लिए अलग टोन, प्रेम के लिए अलग मधुरता, भक्ति के लिए एक अलग गहराई। यही वजह है कि उनका हर गाना एक कहानी सुनाता है।

श्रोताओं, नौशाद साहब का गीतकारों के साथ रिश्ता बहुत खास था। वो सिर्फ धुन नहीं बनाते थे बल्कि शब्दों को समझते थे। उन्होंने कई महान गीतकारों के साथ काम किया। शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी उनमें से एक थे। वो अक्सर गीतकारों से कहते, पहले आप अपने दिल की बात लिखिए, फिर मैं उसे सुर दूंगा। इस सहयोग ने कई अमर गीतों को जन्म दिया। आज हम साउंड डिजाइन की बात करते हैं, लेकिन नौशाद साहब उस दौर में भी ध्वनि के साथ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने स्टूडियो में अलग अलग कमरों का उपयोग किया। गूंज इको पैदा करने के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाए। वाद्य यंत्रों को अलग दूरी पर रखकर आवाज का संतुलन बनाया। ये सब उस समय बहुत नया और अनोखा था। नौशाद साहब ने सिर्फ शास्त्रीय ही नहीं

बल्कि भारतीय लोक संगीत को भी अपने संगीत में शामिल किया। श्रोताओं, आज ही के दिन 5 मई 2006 को नौशाद अली साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका संगीत आज भी जिंदा है। उनकी धुनें आज भी रेडियो पर या हर किसी के मोबाइल फोन में गूंजती हैं और दिलों में बसती हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज हम

एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर, हर परिवार और हर सांस से जुड़ा हुआ है, बढ़ता प्रदूषण और घुटती सांसें। आज के इस विशेष अवसर पर वर्ल्ड एस्थमा डे, हम समझेंगे कि कैसे प्रदूषण हमारी सांसों पर हमला कर रहा है और कैसे हम इससे खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। श्रोताओं, कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, आप खिड़की खोलते हैं ताजी हवा लेने के लिए, लेकिन क्या सच में वो हवा ताजी है? आज के समय में हम जो हवा ले रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को कमजोर कर रही है और इसी का सबसे बड़ा असर दिखता है एक बीमारी के रूप में जिसे हम कहते हैं अस्थमा। श्रोताओं, जब हवा में धूल, धुआं, केमिकल्स और जहरीले कण बढ़ जाते हैं तो ये सीधे हमारे फेफड़ों पर असर डालते हैं। ये कण हमारी सांस की नलियों में सूजन पैदा करते हैं और धीरे धीरे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति आगे चलकर अस्थमा का रूप ले लेती है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नलियां सकरी यानी कि बहुत पतली हो जाती हैं। इसके लक्षण होते हैं बार बार खांसी आना, सांस का फूलना, सीने में जकड़न, सीटी जैसी आवाज आना और सबसे खतरनाक बात, ये बीमारी कभी भी कहीं भी अचानक बढ़ सकती है। इसके विषय में और जानकारी लेंगे, अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं बढ़ता प्रदूषण और घुटती सांसों के विषय में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व अस्थमा दिवस है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर पड़ता है छोटे बच्चों पर, बुजुर्गों पर और उन लोगों पर जिनको रोग है कोई, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। बच्चों के फेफड़े अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होते, इसलिए प्रदूषण उन्हें जल्दी नुकसान पहुंचाता है। और इस प्रदूषण के बहुत से मुख्य कारण भी हैं, जो कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम खुद ही प्रदूषण बढ़ाने के जिम्मेदार बन रहे हैं। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज का धुआं, प्लास्टिक का जलाना, निर्माण कार्य की धूल, पेड़ों की कटाई, ये सभी मिलकर हवा को जहरीला बना रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब पहले जैसा खुलकर सांस लेना आसान नहीं रहा? शहरों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है और तब हर सांस हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है। अब सवाल यह है कि हम क्या करें? क्या हम इस समस्या से बच सकते हैं? जी हाँ, कुछ सावधानियों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि बाहर निकलते समय हम मास्क का इस्तेमाल करें, जैसे कोरोना टाइम में करते थे, उसी तरीके से अगर हम अपनी आदत बना लें, खासकर जब बहुत ज्यादा आपको लगे कि प्रदूषण है बाहर, तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। घर में पौधे लगाएं, जैसे तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, इससे भी आपको जो हवा है आपके आसपास की वो ताजी आएगी और जो प्रदूषण है वो कुछ हद तक कम होगा। धूल और धुएं से बचें, जहां तक हो सके कि साफ वातावरण में रहें। और कहीं से अगर धुआं निकल रहा है तो जैसे किचन में चिमनी जरूर लगाएं, वो एक ऐसा खर्च ना समझें कि वो बेवजह है, उसे जरूर करें, जैसे कि जो धुआं है खाने पीने का वो बनते समय घर में ना फैले। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, वॉक करें। योग और प्राणायाम फेफड़ों को बहुत मजबूत बनाता है, इसे अपनी डेली की हैबिट बना ले कि ये हमें करना ही है। इससे भी बहुत हद तक इस प्रदूषण से खुद के शरीर को बचा सकते हैं हम। और अगर बार बार सांस लेने में आपको दिक्कत या परेशानी हो रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खुद से या मोबाइल का यूज करके, AI का यूज करके खुद से डॉक्टर ना बने, जो असली डॉक्टर इस काम के लिए हैं उनके पास जाएं और उन्हीं से सलाह लेकर किसी भी दवाई का यूज करें या घरेलू उपचार करें। लेकिन एक ज्यादा समय तक इन घरेलू उपचारों पर निर्भर ना रहें, जिससे कि आपकी सांसों में जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाए।

0: गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है,
1: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
0: दुनिया के मेले में भी हम सबकी स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
1: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिकता की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें। खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
0: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का। लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
1: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। एनसीईआरटी उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा, ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
1: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैदराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
1: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
0: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहुं ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।
0: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है, गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
1: तो श्रोताओं, लगा कुछ अंदाजा?
0: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओं, आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसके रहस्यमय दुनिया की। तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
1: तो अजीत जी, पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
0: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
1: जी,
0: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
1: जी,
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।
1: वो क्या?
0: वो ये कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं।
1: जी,
0: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है, जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है, जैसे प्रशांत महासागर।
0: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
1: जी,
0: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं, जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
1: जी अजीत जी, एक और महत्वपूर्ण बात, और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं, जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
0: बिमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। आपसे शुरू करें।
0: जी, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
1: जी,
0: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
1: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका के पास है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं।
0: और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा महासागर है।

0: आपको विशेष रूप से बता दें कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी, श्रृंखला ये भी जानिए मैं। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है,
0: तो प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओं, 8800440559 हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: जी,
1: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक टेकपाठ पर आधारित है, जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name?
5: No.
3: I don't know. You may ask the grass I eat.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
6: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass,
6: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.
6: My name is Fly.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
1: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
3: मौलाना अबुल कलाम आजाद।

0: ये गजल है भारत के मशहूर राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहमदिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।
2: मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने। मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा।
1: पर बालक अबुल कलाम के बचपन के खेल तो निराले हुआ करते।
3: इसको इधर लगा देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए? रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें।
4: ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है मैंने, पता है क्यों?
3: क्यों?
4: ताकि अब आप लोग संदूक पर चिल्ला चिल्ला कर कहें हटो हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं।
3: लेकिन भाई यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, हम किससे कहें रास्ता दो?
4: अरे ये तो खेल है।
3: अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो गिर जाओगे।
4: नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं।
3: क्यों तालियां क्यों बजाएं हम?
4: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
3: अच्छा तो ये बात है।
0: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
1: वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही

0: अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
1: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
0: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
1: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
0: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
1: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी।

0: वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
1: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
2: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हों?
1: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
2: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
1: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
0: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
1: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
2: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
0: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका

0: दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
1: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
0: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
1: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
2: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान।

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई तराने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अजय को फिल्म धड़क में और संगीत था अजय अतुल का। आइए अब सुनते हैं राहत फतेह अली खां को फिल्म आजा नचले में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खां को फिल्म आजा नचले में। गीत लिखा था जयदीप सहनी और पीयूष मिश्रा ने और संगीत था सलीम सुलेमान का। आइए अब सुनते हैं मोनाली ठाकुर को फिल्म दम लगा के हईशा में। जावेद अख्तर की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है अनु मलिक ने, माफ कीजिएगा, वरुण ग्रोवर की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है अनु मलिक ने

0: खेल और डिजिटल भुगतान जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज IIT मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल PhD थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान

0: ties.
1: We reviewed the entire gamut of India-Jamaica relations. We identified new avenues for further strengthening our partnership. We have signed several important agreements, and we discussed effective implementations of MOUs, which have been recently concluded in the fields of digital transformation, cultural exchange, sports, and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground.
0: The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall across several parts of the country today. According to the IMD, heavy showers are likely over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, as well as Tamil Nadu and Puducherry. Thunderstorms accompanied by lightning are also likely over parts of northern states. And with that, we end this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में शिक्षा मित्रों के एजाजिया में इजाफे के जिम्न में मुनक्किद शिक्षा मित्र सम्मान तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में जनाब योगी ने बेसिक तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा,
3: उन स्थितियों में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो नींव के पत्थर के रूप में शिक्षा की, और उसमें बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। जितनी मजबूत नींव आप खड़ा करेंगे उतना ही सशक्त भवन उसमें बनेगा, और मुझे प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है।
2: वजीर आला ने आज गोरखपुर में तकरीबन 613 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा, जिसमें 14 करोड़ रुपए की लागत से तारामंडल इलाके में वाटर बॉडी के ऊपर 2 लेन के ब्रिज का इफ्तिताह भी शामिल है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। मीटिंग में साल 2026-27 के लिए सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए तबादला पॉलिसी जारी की गई। पार्लियामानी उमूर के वजीर सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस साल तमाम तबादले 31 मई 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। रियासत के MSME के वजीर राकेश सचान ने बताया कि कैबिनेट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश स्कीम नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत 25% की सब्सिडी और ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए तक की माली इमदाद दी जाएगी।
4: तमाम तरह से इस योजना को बनाया गया है कि पूरे प्रदेश में जो भी खाद्य पदार्थ जहाँ जहाँ के जो फेमस है और उनको प्रमोट करना, उनको दूर पैकेजिंग के माध्यम से दूर दूर तक पहुँचाना और उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको सरकार सहयोग दे करके और उस पर 25% की सब्सिडी और अधिकतम 20 लाख रुपए तक की मदद करके इस तरह से अभी 150 करोड़ रुपए का ये 26-27 बजट इस योजना में रखा गया।
2: काबीना में अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में संत कबीर पार्क बनाने के लिए आराजी की मुंतकली को भी मंजूरी दी गई। साथ ही रियासत में 150 सरकारी स्कूलों में ड्रीम स्किल लैब्स के कयाम को भी मंजूरी दी गई। मीटिंग के दौरान इस साल रियासत में 35 करोड़ पौधे लगाने के हदफ को पूरा करने के लिए 147 करोड़ रुपए की रकम देने पर भी मुहर लगी। रियासत के इंफ्रास्ट्रक्चर और सनअती तरक्की के वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरमायाकारी के लिए एक पसंदीदा मकाम के तौर पर उभर रहा है। कल लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के दफ्तर में एक आला सतही मीटिंग में सरमायाकारी की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए जनाब नंदी ने कहा कि रियासत में सनअती तरक्की को तेज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मीटिंग के दौरान सरमायाकारी की अहम तजावीज को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की सिफारिश की गई। यह प्रोजेक्ट बरेली, फिरोजाबाद, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर देहात जैसे इजला में कायम किए जाएंगे, जिससे 2000 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। रियासत के वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में जनाब शाही ने कहा कि 15 मई से खसूसी मुहिम चलाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम किसानों के लिए अहम स्कीमें हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि इनके फवायद हर अहल किसान तक पहुंचें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बड़े मंगल पर आवाम को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर लखनऊ के सभी अहम हनुमान मंदिरों में अकीदत

0: देर रात से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शहर के अलीगंज वाके पुराने हनुमान मंदिर, नए हनुमान मंदिर और हनुमान सेतु मंदिर के साथ ही दीगर मंदिरों में बड़ी तादाद में अकीदतमंद पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में बड़े मंगल की खसूसी अहमियत है। आज के दिन लोग शहर के कई जगहों पर स्टॉल लगाकर पूरी सब्जी वगैरह तकसीम करते हैं। लखनऊ नगर निगम ने जगह जगह मुनक्किद होने वाले भंडारों को लेकर इंतजाम किए हैं। सिटी कमिश्नर गौरव कुमार ने अपील की है कि भंडारे के मुंतजमीन 24 घंटे पहले नगर निगम के कंट्रोल रूम नंबर 1533 पर जरूर इतला दें, जिससे साफ सफाई का इंतजाम किया जा सके। बिजली सार्फीन की सहूलत के लिए रियासती हुकूमत ने बिजली कनेक्शन में प्री पेड स्मार्ट मीटर की शर्त को खत्म कर दिया है। अब पहले की तरह सभी बिजली कनेक्शन पोस्ट पेड ही रहेंगे। गुज़िश्ता साल से अब तक प्री पेड मोड में किए गए 83 लाख से ज्यादा कनेक्शन फिर से पोस्ट पेड मोड में बदल दिए जाएंगे। रियासत के वजीर तवानाई ए के शर्मा ने इस सिलसिले में कल लखनऊ में हुई मीटिंग के बाद बताया कि बिलिंग की सहूलत भी अब पहले की तरह ही रहेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 1:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं बहनों का अपना कार्यक्रम घर संसार।

0: नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में, और मैं हूं आपकी प्यारी रेडियो दोस्त भूमिका जैन। बहनों, आज इस कार्यक्रम का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल और कार्यक्रम के अंत में दूंगी उसका जवाब। तो बहनों, आज का सवाल है कि आज यानी 5 मई को भारतीय राजनीति के इतिहास का कौन सा विशेष दिन है? इस सवाल का जवाब मैं आपको कार्यक्रम के अंत में दूंगी। फिलहाल जानते हैं हाथों की स्वच्छता से बीमारियों की रोकथाम कैसे होती है। बहनों, दुनिया भर के शोध बताते हैं कि अधिकतर बीमारियां कीटाणुओं और जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से होती हैं, खासकर संक्रामक बीमारियां। ऐसे में अपने हाथों की को साफ रखना हमें कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचा सकता है। भाई, सीधी सी बात है कि गंदे हाथों से कुछ भी खाना पीना विषाणुओं को शरीर में बिना टिकट एंट्री देना है। तरह तरह की बीमारी फैलाने वाले रोगाणु दिन भर की एक्टिविटीज से हमारे हाथों पर फैल जाते हैं। आजकल दिन भर हाथों में मोबाइल और लैपटॉप रखने वाले लोगों के हाथ खतरनाक बैक्टीरियाज का घर बन जाते हैं। ऐसा मैं नहीं, रिसर्चेस कहती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि एक मोबाइल स्क्रीन पर एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसलिए कुछ भी खाने पीने से पहले हाथों को धोना या सैनिटाइज करना तो ज़रूरी है ही, पर अगर हर 2-3 घंटे में अपने हाथों को धोया जाए तो इससे 70-80% तक खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो बहनों, हेल्दी लाइफस्टाइल में हाथों की प्रॉपर स्वच्छता एक अहम स्टेप है। बीमारी की बात चल रही है तो हम आपको बता दें कि आज विश्व अस्थमा दिवस है। फेफड़ों से संबंधित ये बीमारी धूल प्रदूषण और एलर्जी के कारण होती है। इससे हमारे फेफड़े ठीक से फंक्शन नहीं करते, सांस नली में सूजन के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा के कई घरेलू उपचार भी हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कारगर है योग व प्राणायाम। योग व प्राणायाम के माध्यम से फेफड़ों की हेल्थ को दुरुस्त रखा जा सकता है। अस्थमा में प्रदूषण और धूल मिट्टी से बचाव के साथ साथ कौन कौन से योग व प्राणायाम करने चाहिए, आइए जानते हैं आचार्य प्रतिष्ठा से।
1: आचार्य प्रतिष्ठा, मौसम बदल रहा है और बदलता हुआ मौसम कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ के लिए थोड़ा सा दुखदायी कष्टदायक होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो बदलता हुआ मौसम कुछ परेशानियां लेकर के आता है। खासतौर पर अगर हम बात करें एस्थमैटिक पेशेंट्स की, जिन्हें अस्थमा की समस्या है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, उनके लिए बदलता हुआ मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होता, और वो अनुभव करते हैं कि बदलाव जैसे जैसे मौसम में आता है वैसे वैसे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अस्थमा की समस्या के लिए अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और आप अस्थमा की समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं।

0: कौन सी हैं वो आसान से योग की क्रियाएं जो आप करेंगे अस्थमा जैसी समस्या से अपने आप को प्रिवेंट एज प्रिवेंशन एज वेल एज क्योर, आइए जानते हैं।
1: अश्वत्थ आसन के लिए सीधे खड़े होना, दाएं हाथ को ऊपर सीधा ले जाना, बाएं हाथ को साइड में उठा लेना, इसको वंदनीय गुरुदेव ट्रैफिक पुलिस पोस्चर भी कहते हैं। जो हाथ ऊपर है वो पैर पीछे जाएगा और सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकना, चेस्ट का फुल एक्सपेंशन, सांस छोड़ते वापस आ जाना। इसी प्रकार से अपोजिट साइड में से हम दोहराएंगे, इनहेल एंड बेंड बैकवर्ड, होल्ड एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल, एक्सहेल एंड रिटर्न बैक। 5 बार आप इसका अभ्यास करें और फिर शरीर को ढीला छोड़ दें, प्रयत्न शैथिल्यम। गोमुख आसन के लिए पैरों को सामने फैलाकर इस प्रकार से बैठना और इस तरह से फोल्ड करना कि दाई एड़ी बाएं हिप को छू जाए, बाएं एड़ी दाई हिप को छू जाए, एक पैर दूसरे के ऊपर आ जाएगा। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे ले जाना और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे ले जाना और दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाकर के मिला देना, सीना ऊंचा, 5 बार गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। 5 बार डीप ब्रीदिंग करने के बाद हाथों को वापस ले आएंगे। अब पैरों की स्थिति बदल देंगे, जो पैर ऊपर था उसको नीचे कर देंगे, जो नीचे उसको ऊपर कर देंगे। गोमुख गाय के मुख जैसी आकृति हमारे पैरों से बन जाती है। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे की ओर जाकर के आपस में मिला देंगे। हो सकता है आप हाथ ना मिला पाए, लेकिन यदि अगर आप हाथ नहीं भी मिला पा रहे तो भी आगे नहीं झुकेंगे। 5 बार डीप ब्रीदिंग करके हाथों को वापस ले आना, पैरों को सामने की ओर फैला करके शरीर को ढीला छोड़ देना, प्रयत्न शैथिल्यम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठ जाएंगे। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में भी इसको कर सकते हैं। कमर को सीधी रखते हुए बैठना और चेक करना कि हमारा कौन सा नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिवेटेड है। इस वक्त हमारा दायां स्वर ज्यादा एक्टिवेटेड है तो दाएं से शुरू करेंगे, यानी बाएं नॉस्ट्रल को दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बंद करना और दाएं राइट नॉस्ट्रल से पूरा गहरा सांस भरना, फिर राइट नॉस्ट्रल को अंगूठे से बंद करना और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ देना, कंप्लीट एक्सहेलेशन। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही सांस भरना, थर्ड फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना और राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ देना। ये एक राउंड है, आपको कम से कम 5 रिपीटेशंस करने हैं और इसको आप बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट तक की अवधि में भी कर सकते हैं। अपने सांस पर ध्यान देना, टाइम ऑफ इनहेलेशन शुड बी इक्वल टू द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन, फोकस ऑन योर सिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग और फिर हाथ को वापस ले आना, धीरे धीरे से आंखें खोल देना, शरीर को ढीला छोड़ देना।
0: नियमित अभ्यास कीजिए और जाने से पहले हमारे नुस्खे जरूर लेते जाइए। अगर आप भी अस्थमैटिक पेशेंट हैं, अस्थमा की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको समय बिताना है पीपल के पेड़ के साथ। जी हाँ, पीपल के पेड़ को आप हक कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है और थोड़ी देर पीपल के पेड़ की छांव में जरूर बैठिए। अगर आप पीपल के पेड़ की छांव में बैठ करके नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो ये बहुत बहुत लाभकारी है। साथ में म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड से दूर रहिए।
2: थैंक यू सो मच आचार्य प्रतिष्ठा जी। बहनों, अब वक्त है अप टू डेट का। कम ऊर्जा, पानी और संसाधनों का उपयोग करके भोजन पकाना जिससे पर्यावरण पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े, इको फ्रेंडली कुकिंग कहलाती है। इसमें स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को चुनना, इंडक्शन या सोलर कुकर जैसे ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग और भोजन की बर्बादी कम करना शामिल है। इसके साथ ही किचन वेस्ट से खाद बनाकर पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाना भी इसी के अंतर्गत आता है। इको फ्रेंडली कुकिंग पर्यावरण की सुरक्षा की ओर एक छोटा सा मगर अहम कदम है। इसके लिए स्थानीय रूप से उगाई गई सब्जियां व फल चुनें क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन में ऊर्जा की खपत कम होती है। आप चाहें तो ज़्यादातर फल सब्जियाँ अपने किचन गार्डन में भी उगा सकती हैं। LPG की जगह इंडक्शन कुकटॉप या सोलर कुकर का उपयोग इको फ्रेंडली कुकिंग के लिए बेस्ट होता है। खाना पकाते समय बर्तनों को ढककर रखें जिससे ईंधन की बचत हो, भोजन जल्दी पके और उसके पोषक तत्व तो सुरक्षित रहें। प्रेशर कुकर का अधिकतम उपयोग बेहतरीन ऑप्शन है। सब्जी व फल के छिलकों से खाद बनाएं या इनका उपयोग सब्जी बनाने में करें। इसके साथ ही फ्रिज में बची सामग्री का उपयोग रचनात्मक ढंग से करें। प्लास्टिक के बर्तनों की जगह धातु या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें, ये रिसाइकलेबल होते हैं। मांस की

0: में शाकाहारी भोजन का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इसके लिए मांसाहारी भोजन की जगह शाकाहारी भोजन न सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। शोध बताते हैं कि मांसाहार मानव शरीर के लिए अनुकूल नहीं होता, इसके लिए शाकाहार से करें स्वास्थ्य रक्षा। बनो, यही विषय है हमारी आज की वार्ता का। वार्ताकार हैं भावना त्यागी।
1: भोजन प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। सही एवं संतुलित रूप में हमारे भोजन का होना नितांत आवश्यक है। संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट व फाइबर उचित मात्रा में हो। भोजन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, शाकाहार और मांसाहार। दुग्ध उत्पाद, फल, सब्जी, अनाज आदि ये सारी चीजें शाकाहार की श्रेणी में आती हैं। मांसाहार के अंतर्गत अंडे एवं जीवों से प्राप्त मांस को शामिल किया जाता है। वैसे सामान्यतया अंडे को एक अलग ही श्रेणी में विभाजित किया जाता है। शाकाहार हो या मांसाहार, अगर हम केवल भोजन को उदर पूर्ति का साधन मानकर ग्रहण करते हैं तो यह हमें आत्मिक शांति व आनंद प्रदान नहीं करता। भोजन का हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सात्विक व शाकाहारी भोजन हमारे मन मस्तिष्क के लिए लाभकारी होता है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकृति ने हमें पेड़ पौधों के रूप में अनेकों वरदान दिए हैं। कई सब्जियां तो शारीरिक व्याधियों में औषधि की तरह कार्य करती हैं। कुछ किस्म के डाइट्री फाइबर तो केवल पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। सभी आवश्यक तत्वों से परिपूर्ण भोजन हमें स्वस्थ एवं बलशाली बनाता है। जब पौष्टिक भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पोषक तत्व प्रवेश करेंगे तभी हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। हमें अपने भोजन से उचित पोषक तत्व प्राप्त हो सके इसके लिए सर्वप्रथम हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें भोजन सही एवं संतुलित रूप में प्राप्त हो सके। शाकाहार व नियमित दिनचर्या वाला भोजन अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य का सही विकास कर सकते हैं। वर्तमान समय में जहां एक ओर जंक फूड का प्रचलन बढ़ा है वहीं इसके साथ साथ अनेकों बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। स्वस्थ भोजन करने की हमारी आदत बीमारियों के जोखिम को कम कर सकती है। इससे हमारी एकाग्रता में सुधार होता है। हमें हमारे दैनिक जीवन के भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जिससे हमारे शरीर एवं स्वास्थ्य को लाभ हो। हमें अपने भोजन में फलों को भी शामिल करना चाहिए। आधुनिक समय में व्यक्ति शाकाहार के महत्व को भूलता जा रहा है तथा स्वास्थ्यवर्धक भोजन से दूर होता जा रहा है। हम लोग स्वादिष्ट भोजन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तथा भोजन की गुणवत्ता पर कम ध्यान दे रहे हैं। जहां एक ओर थला भुना भोजन, भोजन बंद भोजन को ग्रहण करने के कारण बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं, इन परेशानियों से निजात पाने के लिए हमें इस भोजन को त्याग कर स्वास्थ्यवर्धक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को हरी सब्जियां रंग बिरंगे तरीके से व उनके अलग अलग व्यंजन बनाकर खिलानी चाहिए जिससे उस भोजन से बच्चों को संपूर्ण पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। शाकाहारी भोजन में दालों के रूप में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व भी हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। इस भोजन के अंतर्गत अनाज, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल आदि को शामिल किया जाता है। शाकाहारी भोजन में स्वास्थ्य का उचित विकास होता है। पौष्टिक आहार सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी लेना आवश्यक है। हमें केवल स्वस्थ भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। हमें ऐसे भोजन का परित्याग करना चाहिए जो केवल कृत्रिम रंग एवं स्वाद वाला होता है। ऐसा भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं होता बल्कि उसके स्थान पर नुकसान होता है। जहां एक ओर हम स्वाद व प्रचलित जंक फूड के कारण अनेकों बीमारियां हमें घेर लेती हैं जैसे मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि, वहीं शाकाहारी भोजन हमें सदैव इन बीमारियों से बचाता है। हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को अलग अलग समय पर अलग अलग तत्वों की जरूरत पड़ती है। शरीर की इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम शाकाहार के रूप में संतुलित भोजन को अपना सकते हैं। स्वस्थ भोजन ग्रहण करने के साथ साथ हमें स्वस्थ रहने के लिए पानी को भी अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम भी करना चाहिए, इसलिए हमें नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, परंतु आजकल यह धारणा प्रचलित हो गई है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मांसाहारी भोजन है, परंतु

0: ऐसा नहीं है, शाकाहार में भी अनेकों ऐसी चीजें होती हैं जिससे प्रोटीन की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। प्रोटीन एक ऐसा जरूरी पोषक तत्व है जो शरीर की कोशिकाओं आदि का निर्माण करता है। हमें अपने शरीर की भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए हरी सब्जियां, दाल, दही, दूध, सोयाबीन, मूंगफली आदि का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इन सब चीजों का प्रयोग करने से शरीर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इन सब के अलावा कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन शाकाहारी खाने से ही प्राप्त होते हैं। ये हमारी बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। शाकाहारी भोजन में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसा भोजन ग्रहण करने से हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना बेहद कम होती है। इस भोजन में रेशे की मात्रा भरपूर होती है जिसके कारण आंतों की सफाई होती है और ज्यादा भूख भी नहीं लगती, जिससे ज्यादा भोजन करने की आदत से भी हम बच जाते हैं। इस प्रकार शाकाहार हमें मोटापे से भी बचाता है जिससे हमारा वजन नियंत्रित रहता है। वहीं अगर हम मांसाहार की बात करें तो संपूर्ण संसार में मांसाहार ज्यादा प्रचलन में है। मांसाहारी भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें किसी जीव को मारना पड़ता है, तभी हमें मांस प्राप्त होता है। मांसाहार जब किसी जीव की हत्या होती है तभी हमें प्राप्त होता है। अत्यधिक मांसाहार का प्रयोग करने से आंतों और फेफड़ों में होने वाले कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। औरतों में होने वाले स्तन कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज आदि बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हमें अपने भोजन में फल सब्जियों के साथ साथ अनेकों पौष्टिक चीजों को शामिल करना चाहिए। हमें अपने प्रातःकाल के भोजन में चने ग्रहण करने चाहिए, तभी हमें क्षय रोग या प्लूरिसी की बीमारी नहीं होगी। अंत में हम केवल इतना कह सकते हैं कि शाकाहारी स्वस्थ जीवन का आधार है। शाकाहार को अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य की सही एवं उत्तम ढंग से रक्षा कर सकते हैं।
1: बहनों, अभी आपने भावना त्यागी से उनकी वार्ता सुनी। वार्ता का विषय था शाकाहार से स्वास्थ्य रक्षा। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

मनु अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। मनु, किसी प्रसिद्ध शायर का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये शेर हमारे आज के सेगमेंट परवरिश रिश्ते नाते का सब्जेक्ट है। मनु, जिस तरह रिश्तों में संवाद बने रहना रिश्ते के बने रहने की गारंटी होता है, रिश्तों में चाहे जितनी भी अनबन हो, मतभेद हो, बातचीत अगर जारी है तो सुलह के रास्ते निकल ही आते हैं। उसी तरह हमें अगर ये पता हो कि बात कब करनी है, क्या करनी है और कैसे करनी है, तो भी रिश्तों की नींव की पकड़ को मजबूत बनाए रखा जा सकता है। जिस तरह रिश्तों में ये पता होना ज़रूरी है कि बातचीत बंद करने से सुलह के रास्ते भी बंद हो जाते हैं, उसी तरह से ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि वह बातचीत समय देख कर की जाए। कभी कभी असमय की गई बातचीत सब कुछ उल्टा कर सकती है। जैसे अगर कोई बहुत गुस्से में है तो उस वक्त बात करने से बात बिगड़ सकती है। सामने वाले का मूड, मिजाज, स्वभाव और सिचुएशन देखकर अगर हम बात करें तो ही बातचीत फ्रूटफुल होगी। आइए सुनते हैं ये गीत।

बहनों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब समय है कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट हमारा स्वास्थ्य का, जिसके अंतर्गत बात करेंगे डार्क सर्कल्स कारण और निवारण। बहनों, नींद पूरी ना होने पर, शरीर में पानी की कमी होने पर या फिर थकान और कमजोरी होने पर हमारी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। इन्हीं काले घेरों को डार्क सर्कल कहा जाता है। कई बार नज़र कमज़ोर होने पर, स्क्रीन टाइम अधिक होने पर और शरीर में किसी गंभीर बीमारी के होने पर उसके संकेत के रूप में भी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। ये काले घेरे देखने में तो अजीब लगते ही हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चिंताजनक होते हैं। डार्क सर्कल्स ना हो, इसके लिए भरपूर नींद लीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। यदि आप नज़र का चश्मा पहनते हैं तो आवश्यकता के अनुसार और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार चश्मे का प्रयोग कीजिए। हेल्दी भोजन कीजिए, रात को देर तक मत जागिए। इसके साथ ही डार्क सर्कल हो जाने पर अपने खान पान में भरपूर पोषण युक्त खाना खाइए। एक बार डॉक्टर के पास जाकर डार्क सर्कल का कारण पता कर लीजिए, फिर उसके अनुसार उसका निवारण कीजिए। सुबह सुबह की ताज़ी हवा टहलने से, सुबह उठकर आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारने से भी डार्क सर्कल्स दूर होते हैं। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें करके आप अपनी आंखों को डार्क सर्कल से बचाएं, ताकि लोग आपको देखकर बस यही गाएं।

मैंने उस गीत के बाद आपसे विदा लेने से पहले हम आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल था कि भारत की राजनीति के इतिहास में आज का दिन क्यों अहम है। तो हम आपको बताते चलें कि आज भारत के 7वें राष्ट्रपति, जो भारत देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह का जन्मदिन है। वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका धर्म सिख था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में भी गृह मंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के विभिन्न पदों पर भी रहे। वो वर्ष 1983 से 1986 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष भी रहे। उनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगों जैसी घटनाएं हुईं। वर्ष 1994 में कार दुर्घटना में घायल होने के कारण उनका निधन हुआ। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के फरीदकोट राज्य, जो वर्तमान में पंजाब में है, के ग्राम संगवान में 5 मई 1916 को हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह विश्वकर्मा तथा माता का नाम इंदिरा कौर था। आज उनकी जन्म जयंती पर हम उनको पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और बहनों, जैसा कि आप जानती हैं कि इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है और मौसम में बारिश की भी हल्की सी दस्तक सुनाई दे रही है, तो ऐसे में गर्मी और ठंड से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना मनाएं, ना बहुत ज़्यादा बारिश से खुश हों। अपने खान पान को दुरुस्त रखें, क्योंकि बहुत गर्मी के बाद एकदम से आई बारिश उमस पैदा करती है और उस उमस से तरह तरह के बैक्टीरिया और तरह तरह की बीमारियां जन्म

जैसा कि आप जानती हैं कि इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है और मौसम में बारिश की भी हल्की सी दस्तक सुनाई दे रही है, तो ऐसे में गर्मी और ठंड से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना मनाएं, ना बहुत ज़्यादा बारिश से खुश हों। अपने खान पान को दुरुस्त रखें, क्योंकि बहुत गर्मी के बाद एकदम से आई बारिश उमस पैदा करती है और उस उमस से तरह तरह के बैक्टीरिया और तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। ऐसे में आपकी सेहत को थोड़ी और सुरक्षा की ज़रूरत है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और फिलहाल हमें अनुमति दीजिए, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी ने हमें कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने का इशारा कर दिया है। अगली मुलाकात तक अपनी प्यारी रेडियो दोस्त भूमिका जैन को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बहनों का अपना कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 1:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में जॉली भल्ला के गाए कुछ गीत और भजन।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जॉली भल्ला के गाए कुछ भजन। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: from Gaya district. Chief Minister Samrat Chaudhary has expressed deep grief over the incidents. The Indian Meteorological Department IMD has forecast light to moderate rainfall with thunderstorms, lightning and gusty winds over Madhya Pradesh, Vidarbha and Chhattisgarh during the next 2 days. Parts of Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Gangetic West Bengal are expected to experience similar conditions today. In IPL cricket, host Delhi Capitals will face Chennai Super Kings at Arun Jaitley Stadium this evening. The match will begin at 7:30 this evening. Last night, hosts Mumbai Indians defeated Lucknow Super Giants by 6 wickets at Wankhede Stadium. Chasing the target of 229 runs, Mumbai Indians overhauled the score in 18.4 overs at the loss of 4 wickets. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah resulting in injuries to 3 Indian nationals. Calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. US and Iran launch fresh attacks in the Gulf as the two sides wrestle control over Strait of Hormuz. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Jamaican counterpart. Kamina J. Smith calls for stronger economic ties between the two countries. Political activities begin for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly poll results. Education Minister Dharmendra Pradhan emphasizes need to transform India's research ecosystem. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीतिक आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच

0: साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में सम्पन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलका विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पन्नयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वी डी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में

0: श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
3: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नतालिए ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
4: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की, जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में

0: 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 2:30 हुए हैं। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं पंडित रामकृष्णा का मिश्र पहाड़ी धुन में क्लैरिनेट वादन।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित रामकृष्णा का मिश्र पहाड़ी धुन में क्लैरिनेट वादन। आइए अब सुनते हैं गजाधर पाठक का मिश्र पीलू में सितार वादन।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गजाधर पाठक का राग मिश्र पीलू में सितार वादन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 2:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म दोस्ती में। गीत के बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म कालीचरण का ये गीत जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। इंद्रजीत सिंह तुलसी के शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धर्मवीर का ये गीत, जिसे गाया था मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। संवादक मुकुल तिवारी और प्रस्तुतकर्ता हैं अनिंद्र सिंह।
1: गई है आपकी रेडियो हम सफर, मुकुल तिवारी। दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में दिन भर न जाने कितनी आवाजें हमारे कानों से टकराती हैं। ऑफिस की बातें, घर की जिम्मेदारियां, ट्रैफिक का शोर, लेकिन इन सब के बीच कोई आवाज जो दिल को सुकून से भर जाती है, वो है आपके पसंद के गीतों की आवाज। तो अब वक्त है आपसे और आपकी पसंद के गीतों से रूबरू होने का। तो इंतजार किस बात का, आइए गुफ्तगू करते हैं और पूरे आधे घंटे साथ में बैठकर आपके गीतों का आनंद उठाते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी आगरा के फोन इन प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है। जी, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ?
2: हाँ जी, रीता साथ से बोल रही हूँ मैं।
1: रीता जी, कैसी हैं आप?
2: हाँ, बढ़िया हूँ।
1: क्या करती हैं आप?
2: मैम, अभी तो मैं टीचिंग करती हूँ।
1: अच्छा, तो आप बच्चों का भविष्य मनाती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो रीता जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं और किसके लिए सुनना चाहती हैं?
2: हाँ मैम, मेरा एक पसंद का गाना है, काफी टाइम से मैं सुनती थी
1: जी।
2: थोड़ा पुराना गाना है, बट आप बचा दीजिए उसको।
1: कौन सी फिल्म का गाना है?
2: अखियों की झरोखों से, गाने की लाइन बता।
1: जी जी, इसी फिल्म का ये गाना है। आप टाइटल ट्रैक सुनना चाहती हैं जी?
2: हाँ,
1: तो
2: टाइटल सॉन्ग है ये।
1: जी जी जी, आप इंतजार कीजिए, हम आपके लिए ये गाना जरूर बजाएंगे। सुनिए और आकाशवाणी आगरा में फोन करने के लिए बेहद शुक्रिया।

0: जी नमस्कार, आकाशवाणी आगरा के फोन इन प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: जी थैंक यू।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं आसाम से बोल रहा हूँ।
0: और क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ?
1: मेरा नाम है मुकेश।
0: मुकेश जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। ये तो आसाम में मौसम कैसा है आजकल?
1: मौसम सर्दियाँ बीत चुकी हैं और गर्मियाँ दस्तक दे रही हैं।
0: क्योंकि कई जगह ना आजकल बारिश हो रही है, आंधी भी चल रही है, तो मौसम में काफी ठंडक है इधर।
1: जी, हमारे यहाँ बारिश काफी लेट से होती है, अभी नहीं है, अभी गर्मियाँ दस्तक दे रही हैं थोड़ी।
0: जी, तो वैसे तो मैंने सुना है कि आसाम बहुत अच्छी जगह है, कभी मौका मिला तो हम जरूर आएंगे। तो मुकेश जी, जी
1: बिल्कुल, बहुत ही हरियाली भरी जगह, बहुत ही शानदार खूबसूरत जगह है।
0: जी, तो मुकेश जी, आज आप किस गाने को सुनना चाहते हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगा, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में अपने एक दोस्त से पता चला था।
0: जी जी
1: कि सिफारिशी गाने शुरू हो रहे हैं आपके केंद्र से।
0: जी,
1: और मैंने सुना है एक गाना,
0: जी
1: होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।
0: जी जी बिल्कुल,
1: ये गाना मैं अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो मुकेश जी, कॉल करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी आगरा के फोन इन प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं आप?
1: मैम, मैं तृप्ति यादव बोल रही हूँ।
0: कहाँ से?
1: कॉलोनी से।
0: अच्छा, तो तृप्ति जी क्या करती हैं आप?

0: मैम, मैं फिलहाल तो स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करती हूँ।
1: क्या पढ़ाई कर रही हैं आप?
0: मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ मैम
1: जी।
0: आपका शो सुनती हूँ मैं बहुत।
1: अच्छा, जान के बहुत अच्छा लगा, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो तृप्ति जी, आगरा में तो आजकल मौसम बहुत सुहाना हो रखा है।
0: जी मैम, मौसम बहुत सुहाना है और इसी सुहाने मौसम में अगर गानों का तड़का लग जाए तो और ही।
1: जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम बैठे हैं कि हम आपकी फरमाइश को पूरा कर सके। तो बताइए, आपको कौन सा गाना आज सुनना पसंद करेंगे?
0: मैम जैसा कि अभी आपने कहा मौसम बहुत अच्छा हो रहा है
1: जी,
0: ऐसे मौसम में बड़े सुहाने गाने अच्छे लगते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: मैं सुनना चाहती हूँ हमको हम ही से चुरा लो, मोहब्बत मूवी का गाना है।
1: जी जी जी, बहुत खूबसूरत गाना है, सुनिए। और आकाशवाणी आगरा में फोन करने के लिए बेहद शुक्रिया।

0: आकाशवाणी आगरा के फोन इन प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ जी, मैं मैनपुरी से बोल रही हूँ। मेरा नाम कृष्णा है।
0: जी कृष्णा जी, कैसी हैं आप?
1: जी बहुत अच्छी हूँ, और अब आपसे बात करके और अच्छी हो गई हूँ।
0: क्या बात है, तो क्या करती हैं आप कृष्णा जी?
1: जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, आगे PCS की तैयारी कर रही हूँ।
0: क्या बात है, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो मौसम कैसा है?
1: हाँ, हमारी मैनपुरी में भी अच्छा मौसम है। कल हल्की फुल्की बारिश हुई, उससे थोड़ा मौसम और खुश मिजाज हो गया है। ऐसा इच्छा हो रही कहीं जाए घूमने, नहीं जा सकती इसलिए मैंने अपने मनपसंद गाना ही सुनना चाहा।
0: तो आप क्या पकौड़ी और कॉफी या चाय नहीं बनाती हैं अभी इस मौसम में?
1: नहीं बिल्कुल, कल बारिश जब हो रही थी
0: जी,
1: हल्के फुल्के ओले भी पड़े,
0: हाँ,
1: हमने पनीर के पकौड़े,
0: क्या बात है,
1: चाय, बालकनी में बैठ की थी, उसका बारिश का आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा।
0: क्या बात है। तो आप कृष्णा जी इलायची वाली चाय पीती हैं या अदरक वाली?
1: देखिएगा मैं विदाउट अदरक तो कभी पीती ही नहीं हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी।
0: अच्छा।
1: लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी इलायची डालती हूँ, सर्दियों में इलायची थोड़ी कम, चलेगी तो भी चल जाती है।
0: हाँ जी, गर्मियों में वैसे भी कहते हैं कि इलायची पीना चाहिए, क्योंकि इलायची का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है। जी, तो कृष्णा जी आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं ये गाना सुनने चाहूंगी, खुशी की ये रात आ गई, कोई गीत बजने दो, धरती चाहे पुकार पिक्चर का।
0: आइए सुनते हैं हम आपकी पसंद का ये गीत। आकाशवाणी आगरा के इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया
1: जी।

0: हाँ जी श्रोताओं, वैसे तो मन नहीं कर रहा कि ये सिलसिला कहीं थमे, पर फिर से मिलने के लिए जाना तो होगा। उम्मीद करती हूँ आज का हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम आप सबको पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में भी आपकी कॉल्स का मुझे रहेगा इंतजार। और हाँ, इस कार्यक्रम को आप सोमवार रात 10 बजे और मंगलवार दोपहर 3 बजे सुनना ना भूलें। फिर मिलेंगे, बाय बाय और नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। अब हमारे इस सभा के प्रसारण यहीं समाप्त होते हैं। सांधिकालीन सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल का नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पुदुचेरी में मनादीपेट में निर्वाचित विधायक ए नमस्शिवम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सावरगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति की हितधारक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैपिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स सीपीआर के प्रमुख उपयोगों और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और उनके अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। यह मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सूर्य संध्या। हमारी युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी वायु गुणवत्ता और हैंड हाइजीन विषय पर। अतुलनीय भारत सेगमेंट में आज जानिएगा चीनी का रोजा के विषय में। सेगमेंट हेल्थ प्लस में लीजिएगा जानकारी संभल कर करें इनहेलर्स का प्रयोग विषय पर। साथ ही सुनिएगा वार्ता संपूर्ण पोषण के लिए जरूरी है विविध भोजन। वार्ताकार होंगी वैष्णवी उपाध्याय। अन्य सेगमेंट होंगे ताकत वतन की हमसे है, जिसमें सरदार ज्ञानी जेल सिंह के विषय में आज जानकारी लीजिएगा। साथ ही चलते चलते सेगमेंट में योग और प्राणायाम के विषय में जानिएगा। हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक शाम 6:00, जिसमें चर्चा होगी गर्मियों की जुताई से लाभ विषय पर। विश्व अस्थमा दिवस विषय पर भी चर्चा होगी और होगी वार्ता पशुओं में कुपोषण से होने वाले रोग। वार्ताकार होंगे डॉक्टर आदित्य कुमार। सेगमेंट नई खोज सुनिएगा, साथ ही जानिएगा मंडी भाव और मौसम का हाल। आनंद लीजिएगा लोक

हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें चर्चा होगी विश्व अस्थमा दिवस विषय पर, वार्ता होगी तपती धरती जिम्मेदार कौन विषय पर, वार्ताकार होंगे असीम आनंद। अन्य सेगमेंट होंगे आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, लीजिएगा सेहत टिप्स और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा का समय रहेगा 7:10, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता अज्ञेय का रचना संसार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राधा कृष्ण।

कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुन सकते हैं शाम 7:31 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे विश्व अस्थमा दिवस पर विशेष भेंट वार्ता के अंतर्गत बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज यादव से अनिंद्र सिंह की बातचीत। समय याद रखिएगा शाम 7:31। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं रात्रि 8 बजे कार्यक्रम भारत भारती में, जिसमें आप सुनेंगे देशभक्ति परक फिल्म संगीत। इसके अलावा फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम मनी टॉक मंथन, और रात्रि 10 बजे हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम खेल दर्पण। आकाशवाणी आगरा की प्रस्तुति होगी, संपादन एवं प्रस्तुति होगी डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण की, प्रसारण सहयोग सुमित कुमार का। समय याद रखिएगा रात्रि 10 बजे कार्यक्रम खेल दर्पण। शास्त्रीय संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं रात्रि 10:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित उल्हास कशालकर से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग दरबारी कान्हड़ा। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त हो चुका है कार्यक्रम सूर्य संध्या का। कार्यक्रम

मैं ये सुनते हैं, ये भक्ति रचना लो में आ गया फिल्म से, उदित नारायण नूतन और साथियों के स्वर में।

श्रोताओं, बजरंगी भाईजान फिल्म से ये गीत आपने सुना अदनान सामी के स्वर में, संगीत प्रीतम का था। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं एआर रहमान के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का गीत एआर रहमान के स्वर में, जोधा अकबर फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में योद्धा अकबर फिल्म से ये भक्ति रचना आपने सुनी A.R. रहमान के स्वर में। बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी A.R. रहमान ने। श्रोताओं, इन भक्ति रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा।

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं प्रकीर्णा, आपकी दोस्त और होस्ट, स्वागत करती हूँ आपका कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी काम की बात, लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के साथ। और आज भी हम कई सारे नए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। विश्व अस्थमा दिवस पर हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे आज हम मना रहे हैं, तो मैं तो आपको काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। तो बताइए, इंडिया के सबसे पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? आप सोचिए, इसका जवाब हम जानेंगे आगे के कार्यक्रम में। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और अब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं घूमने का प्लान भी बना रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आगरा में रहने के बावजूद भी आपने पूरा आगरा एक्सप्लोर किया होगा। आगरा एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ का हर कोना अपनी कहानी कहता है। और आज हम बात करेंगे आगरा के एक ऐसे हिडन जेम की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसकी कहानी उतनी ही खूबसूरत है जितनी ताजमहल की। दोस्तों, इस मॉन्यूमेंट का नाम है चीनी का रोज़ा। चीनी यानी कि ग्लेज्ड टाइल्स, और रोज़ा मतलब कि टोम, यानी ये एक ऐसा मकबरा है जो अपनी रंग बिरंगी चीनी मिट्टी की टाइल्स के लिए जाना जाता है। ये मकबरा 17वीं सदी में बनाया गया था और ये समर्पित है अफजल खान शिराजी को, जो महान कवि और शाहजहां के दरबार में प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर थे। कहते हैं अफजल खान शिराजी ना सिर्फ एक राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक संवेदनशील शायर भी थे। और शायद यही वजह है कि उनका मकबरा भी किसी कविता से कम नहीं लगता। तो अगर आप आगरा में ही रहते हैं या आगरा घूमने आते हैं, तो ताजमहल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चीनी का रोज़ा भी ज़रूर देखने जाएं। और ये इत्मादुद्दौला, जिसे हम बेबी ताज कहते हैं, यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से शाम के समय यमुना नदी के किनारे आप सुंदर सनसेट का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, आगरा सिर्फ ताजमहल नहीं है, ये एक लिविंग हिस्ट्री है, जहाँ हर गली हर इमारत एक कहानी छुपाए बैठी है। चीनी का रोज़ा जैसे मॉन्यूमेंट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध है। तो घूमने का प्लान बनाएं, लेकिन शुरुआत अपने आगरा से करें। फिलहाल हम चलते हैं घूमने संगीत की दुनिया में और शाम की चाय का आनंद लेते हैं इस गाने के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों। आप जानते हैं आज हम विश्व अस्थमा दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर ज़रूरी है कि हम कुछ बातें जानें, जैसे अस्थमा क्या है, क्यों होता है और इसका सही इलाज और प्रिवेंशन कैसे किया जाए। सबसे पहले समझते हैं अस्थमा आखिर है क्या। अस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है जिसमें हमारे एयरवेज़ यानी सांस की नलियाँ सूज जाती हैं और संकरी हो जाती हैं। इसमें सांस लेने में दिक्कत, वीजिंग, खांसी और चेस्ट टाइटनेस महसूस होती है। दोस्तों, अस्थमा होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि एलर्जी, जो कि हमें धूल से या पॉलन से या फिर जानवरों के बालों से हो सकती है, एयर पोल्यूशन और स्मोक, मौसम में बदलाव, जेनेटिक फैक्टर्स और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। यानी जब ये ट्रिगर्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो एयरवेज रिएक्ट करती हैं और ब्रीदिंग मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हवा में पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है, जैसे PM2.5, PM10 पार्टिकल्स, स्मोक, व्हीकल इमिशंस, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स सीधे हमारी सांस की नलियों में चले जाते हैं, जिससे एयरवेज में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ब्रीदिंग और मुश्किल हो जाती है और अस्थमा अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम कूड़ा जलाते हैं, कागज़ वेस्ट करते हैं या फिर ज़रूरत ना होने पर भी पास की दुकान तक जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं या फिर डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटते हैं, तो हम एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हमारे साथ बाकी लोग, खासकर अस्थमा पेशेंट्स की तकलीफें बढ़ती हैं। और दोस्तों, एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील ना होना और उसके महत्व को इग्नोर करना, इसी का ये नतीजा है कि आज हम क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट भारत के ऊपर देख रहे हैं, जहां पूरा नॉर्थ इंडिया गर्मी में तप रहा है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। अब बात आती है कि अस्थमा को प्रिवेंट कैसे करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने ट्रिगर्स को पहचानें और उन्हें अवॉइड करें। जैसे डस्ट और पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क का यूज़ करें, घर को साफ सुथरा वेंटिलेटेड रखें और डॉक्टर की एडवाइस से रेगुलर एक्सरसाइज करें और

0: स्मोकिंग से दूर रहें, हाई पोल्यूशन डेज में बाहर निकलने से बचें, बाहर जाते समय मास्क का यूज़ करें और घर में आप चाहें तो एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अस्थमा पूरी तरह परमानेंट क्योर अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड इन्हेलर्स सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इन्हेलर दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाकर सांस की नली को खोलते हैं, जिससे सूजन कम होती है और सांस लेना आसान हो जाता है। सबसे पहली बात, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हर इन्हेलर एक जैसा नहीं होता। कुछ होते हैं रिलीवर इन्हेलर्स जो तुरंत राहत देते हैं, और कुछ होते हैं प्रिवेंटर इन्हेलर्स जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए होते हैं। इन्हेलर यूज़ करते समय कुछ बेसिक स्टेप्स ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे इन्हेलर को पहले अच्छे से शेक करें, सबसे पहले पूरी सांस बाहर छोड़ें, फिर इन्हेलर को मुंह के पास रखकर प्रेस करें और साथ में गहरी सांस लें। उसके बाद 8-10 सेकंड तक सांस रोकने की कोशिश करें। याद रखें, सही टेक्निक ही सही ट्रीटमेंट है। कई लोग राहत मिलते ही बार बार इन्हेलर यूज़ करने लगते हैं, लेकिन ओवर यूज़ हार्मफुल हो सकता है। अगर आपको बार बार इन्हेलर की ज़रूरत पड़ रही है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। साथ ही इन्हेलर को टाइम टू टाइम साफ़ करना ज़रूरी है। माउथपीस को ड्राई और क्लीन रखें, एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, और हाँ, इन्हेलर यूज़ करने में शर्म महसूस ना करें। ये कोई वीकनेस नहीं, बल्कि एक स्मार्ट मेडिकल सॉल्यूशन है जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है संपूर्ण पोषण, और वो हमें कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं वार्ताकार वैष्णवी उपाध्याय से।
1: आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, जो हमारे जीवन का आधार है, और इस आधार को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है सही पोषण, जो हमें अलग अलग तरह के खाने से मिलता है। आज हमारी युवा पीढ़ी अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को पीछे छोड़ देते हैं, और इसी के चलते आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर, जो है संपूर्ण पोषण के लिए जरूरी है विविध भोजन। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य और डाइट को लेकर अनगिनत बातें चल रही हैं। कभी कोई कहता है सिर्फ प्रोटीन खाओ, तो कभी सिर्फ सलाद, कोई सुपर फूड को जादुई बताता है, तो कोई किसी साधारण चीज को हानिकारक। और इसी के साथ ही युवाओं में जिम जाने का क्रेज भी खूब बढ़ रहा है। हर कोई बॉडी बिल्डिंग, वेट ट्रेनिंग या सिर्फ स्लिम दिखने की रेस में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में हमारे शरीर के लिए क्या सही है। हमारा शरीर एक अमेजिंग मशीन है, और किसी भी मशीन को सही ढंग से काम करने के लिए अलग अलग तरह के फ्यूल और देखभाल की जरूरत होती है। यह फ्यूल है अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ये सभी हमारे शरीर के लिए अलग अलग कार्यों के लिए जरूरी हैं। और क्या आप जानते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट हमें सिर्फ एक तरह के खाने से नहीं, बल्कि अलग अलग तरह के खाने से मिलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कार्ब्स बुरे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमारी एनर्जी का मुख्य स्रोत होते हैं। चावल, रोटी, आलू और फल, ये सब अच्छे कार्ब्स हैं। हमें सिर्फ रिफाइंड कार्ब से बचना चाहिए, क्योंकि ये अनाज को प्रोसेस करके बनाए जाते हैं, जिससे उनमें फाइबर, विटामिन और अन्य पोषक तत्व निकल जाते हैं, जैसे कि सफेद ब्रेड, सफेद चावल और मैदा। इनकी जगह हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हैं, जो साबुत अनाज और फलियों में पाया जाता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी और विभिन्न प्रकार की दालें। क्या आप जानते हैं, साबुत अनाज धीरे धीरे पचता है, जिससे हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही फैट को अक्सर अनहेल्दी माना जाता है, लेकिन कुछ फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो मछली, अखरोट और अलसी के बीज में मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट से बचना चाहिए, जो कि जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड में होते हैं। उसके साथ ही प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यह है मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा के लिए जरूरी हैं। यह हमें दालों, फलियों, अंडे, मांस मछली और दूध के बने पदार्थों में अच्छी मात्रा में मिलते हैं। जिम जाने वाले लोगों को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन शेक्स पर निर्भर रहना सही नहीं है। नेचुरल प्रोटीन

उसका सेवन करना भी बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर आजकल एक और चर्चा का विषय है, डिटॉक्स डाइट। लोग मानते हैं कि ये हमारी बॉडी को साफ करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी खुद को साफ करने में पूरी तरह सक्षम है। हमें सिर्फ एक हेल्दी डाइट लेनी है और खूब सारा पानी पीने की जरूरत है। स्टडीज के अनुसार पुरुषों को लगभग 3.7 लीटर और महिलाओं को लगभग 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।

0: महिलाओं को लगभग 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखें, कोई भी एक डाइट या फूड आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे सकता, इसलिए हमें सभी न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए अपने आहार को विविध बनाना होगा। उसके लिए हमें फल, सब्जियां, दालें, अनाज और दूध से बने सभी पदार्थों को नियमित रूप से अपने दैनिक आहार में शामिल करना होगा। सभी रंग के फलों और सब्जियों में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे लाल टमाटर में लाइकोपीन। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को सेल्स के नुकसान होने से बचाता है। इसी तरह से हरा पालक, जिसमें आयरन पाया जाता है जो मुख्य रूप से खून की कमी को रोकता है। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में। एक बैलेंस डाइट का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी भारतीय थाली, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही आदि शामिल होते हैं। ये हमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। और एक चिंताजनक बात जो आजकल सामने आ रही है वह ये है कि युवाओं में विटामिन डी की कमी बहुत आम हो गई है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी लेने के लिए सुबह और शाम की धूप में सिर्फ 15 से 20 मिनट बैठना ही काफी है। इसके अलावा विटामिन डी अन्य खाद्य पदार्थों में जैसे कि मछली, मशरूम, अंडे और फोर्टिफाइड भोजन जैसे कि दूध, अनाज और फलों के रस में अच्छी मात्रा में मिलता है। डॉक्टर का कहना है कि सही खान पान से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन और मस्तिष्क भी बेहतर काम करते हैं। और जो लोग पतला होना चाहते हैं और साथ ही स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, वो लोग नए नए फूड्स और सुपर फूड्स की तलाश में अपने भारतीय खाने को ना भूलें। हमारे स्थानीय खाद्य पदार्थों में भी बहुत सारे पोषक तत्व छिपे हुए हैं। और दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मियों में हमें अपने शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो इस मौसम में हमारे लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं पानी से भरपूर फल और सब्जियां, जैसे कि तरबूज, संतरा, खरबूज, खीरा, टमाटर, ककड़ी और हरी पत्तेदार सब्जियां, जो न केवल हमें हाइड्रेटेड रखते हैं बल्कि विटामिन और मिनरल से भी भरपूर होते हैं। इसके अलावा दही और छाछ हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं और पाचन को भी सुधारते हैं। ऐसे ही नारियल पानी और नींबू पानी हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। ध्यान रहे, गर्मियों में हमें भारी और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। उनकी जगह पर हमें हल्के मसाले जैसे जीरा, धनिया और पुदीना का उपयोग करना चाहिए, जो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी, अपने शरीर को समझो, अपने शरीर को सुनो और कोई भी डाइट फॉलो करने से पहले अपने डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह जरूर लें। ध्यान रखें, स्वस्थ रहना एक दौड़ नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, तो आज से ही अपनी डाइट में विविधता लाएं, स्वस्थ जीवन जिए।
1: दोस्तों अभी आपने सुनी वार्ता, संपूर्ण पोषण के लिए जरूरी है विविध भोजन, वार्ताकार वैष्णवी उपाध्याय से, जहाँ हमने जाना कि स्वस्थ रहने के लिए जो हमें पोषण चाहिए वो हमें वैरायटी ऑफ फूड से इजीली मिल सकता है। लेकिन अच्छी सेहत के लिए और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि हम अक्सर थकान, स्ट्रेस या लो एनर्जी फील करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका आसान सा सल्यूशन आपके पास ही है। हम बात कर रहे हैं योग या एक्सरसाइज और प्राणायाम की, यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यायाम क्यों ज़रूरी है। देखिए, रोज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज या योग करने से आपका शरीर मजबूत बनता है, वेट कंट्रोल रहता है, हार्ट हेल्दी रहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका मूड अच्छा रहता है। अब बात करें प्राणायाम की, तो प्राणायाम का मतलब है सांसों को सही तरीके से लेना और छोड़ना। बस इतना सा करने से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, दिमाग शांत रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और लंग्स भी स्ट्रांग बनते हैं। तो शुरुआत में रोज़ सुबह या शाम 10-15 मिनट आप वॉक कर सकते हैं, साथ में हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो जिम या योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए दोस्तों खाली पेट होना ज़रूरी है, तो आप सुबह एक शांत जगह पर बैठकर अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जिसमें हम एक नासिका से सांस लेकर दूसरी से छोड़ते हैं। फिर आप भ्रामरी कर सकते हैं, जिसमें हम हमिंग साउंड के साथ

सांस छोड़ते हैं। इसके लिए चाहे तो आप नज़दीकी योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप ये सब सीख सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, आपका शरीर और मन दोनों आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा समय खुद को दीजिए, व्यायाम और प्राणायाम अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को हेल्दी और हैप्पी बनाइए। और आपके मूड को हैप्पी बनाने के लिए चलिए रुक करते हैं संगीत की दुनिया का और सुनवाते हैं आपको ये गाना।

वेलकम बैक दोस्तों। आपको याद है प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भारत के सबसे पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने कभी सिर्फ 5 रुपये महीने की नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत की थी, वो बाद में देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचे। हम बात कर रहे हैं ज्ञानी ज़ैल सिंह की। ज्ञानी ज़ैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले में हुआ था। उनका असली नाम था जरनैल सिंह, लेकिन धार्मिक ज्ञान के कारण उन्हें ज्ञानी की उपाधि मिली। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही समाज सेवा और राजनीति में कदम रख दिया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और जेल भी गए। आज़ादी के बाद उनका राजनीतिक सफ़र और भी तेज़ हुआ। वे पंजाब के मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के गृह मंत्री भी रहे। उनकी कार्यशैली में जनता से जुड़ाव और सादगी साफ दिखाई देती थी, लेकिन उनको सबसे बड़ा सम्मान तब मिला जब वो 1982 में भारत के राष्ट्रपति बने, देश के पहले सिख राष्ट्रपति। उनके कार्यकाल में कई चुनौतियां भी आईं, खासकर ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की परिस्थितियां। ये समय देश के लिए बहुत संवेदनशील था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया। ज्ञानी ज़ैल सिंह की सबसे खास बात थी उनकी विनम्रता और लोगों से जुड़ने की क्षमता। वे अक्सर कहते थे कि मैं जनता का सेवक हूँ, और उन्होंने इसे अपने जीवन में पूरी तरह निभाया। तो दोस्तों, ज्ञानी ज़ैल सिंह की जयंती पर हम यही सीख लेते हैं कि हम चाहे तो मेहनत, सादगी और डेडिकेशन से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। दोस्तों, अब कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है, चलते चलते एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। हर साल 5 मई को हम विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाते हैं, जिसका उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि साफ हाथ स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। पोषण की बात तो हमने कर ली, लेकिन गंदे हाथों से ही खाना खा लिया तो पोषण भी जर्म्स को ही मिलेगा। हमारे हाथ दिन भर में ना जाने कितनी चीज़ों को छूते हैं, दरवाजे, मोबाइल, पैसे और भी बहुत कुछ। इन सब के जरिए जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे हाथों पर आ जाते हैं, जो बिना दिखे ही बीमारियों को फैलाते हैं। जैसे ही हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं या चेहरे को छूते हैं, ये जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें डायरिया, फ्लू, कोल्ड और कई सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कोरोना पेंडेमिक ने हमें हाथ धोने का महत्व तो समझाया, लेकिन अब फिर से हम लापरवाह हो गए हैं। याद रखिए, खाने से पहले और बाद में, टॉयलेट के बाद और खांसने या छींकने के बाद, और बाहर से घर आने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। आपके साफ हाथ न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और समाज को भी बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अच्छी आदतें अपनाएं और सुनते रहें कार्यक्रम युववाणी रोज शाम 5:30 बजे, जहां आज आप सुन रहे थे मुझे यानी प्रकीर्णा को। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

कार्यक्रम ग्रैमेलो के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी उत्कर्ष कुमार पांडे की राम राम। किसान भाइयों, करते करते अपने काम सुनते रहिए हमारी बातें, कुछ खास कुछ आम। अच्छी फसल लेने के लिए किसान भाइयों, ये बहुत जरूरी है कि हम समय पर जुताई करें। अपने आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अप्रैल से जून के महीनों में जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है, तब खेतों की गहरी जुताई करना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसको मिट्टी का सूर्य उपचार भी कहते हैं। गहरी जुताई से मिट्टी के अंदर छिपे हुए हानिकारक कीड़े, उनके अंडे, प्यूपा, लार्वा कड़ी धूप में ऊपर आ जाते हैं और मर जाते हैं, जिससे एक तरह से मिट्टी की शुद्धि हो जाती है। भूमिगत रोगों के रोगाणु और फसलों की जड़ों में गांठ बनाने वाले सूत्रकर्मी भी गर्मी के प्रकोप से नष्ट हो जाते हैं। गर्मियों में 2 से 3 बार गहरी जुताई करने से खरपतवार की जड़ें और बीज बाहर आकर धूप में सूखकर खत्म हो जाते हैं। इससे खरीफ की फसलों में खरपतवार कम होते हैं और कीटनाशकों का खर्चा बच जाता है। मिट्टी पलटने से नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, मिट्टी का वायु संचार बढ़ जाता है, सूर्य की गर्मी से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन तेजी से होता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है। इससे मिट्टी से कीड़े और खरपतवार खत्म होने और नमी की मात्रा बढ़ने से खरीफ की पैदावार में लगभग 25% तक की वृद्धि हो जाती है। किसान भाइयों, 9 से 12 इंच की गहरी जुताई के लिए हम डिस्क हैरो या कल्टीवेटर का प्रयोग कर सकते हैं। जुताई मिट्टी के ढलान के विपरीत दिशा में करें, जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो। तो किसान भाइयों, गर्मी की जुताई अपनाएं, अपनी पैदावार को बढ़ाएं और सुनते जाएं राम भक्त हनुमान को समर्पित ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, पोषण चाहे हम इंसानों में हो या पशु में, सभी के लिए ज़रूरी है। यानी कि सही अनुपात में खान पान, शुद्ध खान पान, समय से खाना पीना स्वस्थ रहने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना क्या इंसान और क्या पशु तबीयत खराब होते, सेहत बिगड़ते देर नहीं लगती है। और अगर हमारा पशुधन कुपोषण का शिकार होकर बीमार हो जाए तो उसकी काम करने की क्षमता, उसकी दूध देने की क्षमता सभी में कमी आ जाती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं पशुओं में कुपोषण से होने वाले रोग के विषय में डॉक्टर आदित्य कुमार से इस वार्ता के माध्यम से।
1: हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को दाने व चारे के रूप में जो खाने को देते हैं उसमें बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो पशुओं के लिए अति आवश्यक होते हैं। ऐसे पदार्थों को पोषक तत्व कहा जाता है। इन पोषक तत्वों से पशु के शरीर की सभी क्रियाएं सामान्य रूप से चलती हैं, क्योंकि ये पोषक तत्व पशु के शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं व शरीर की कोशिकाओं में होने वाली टूट फूट को ठीक करते हैं। इन पोषक तत्वों से ही पशु शरीर को शक्ति मिलती है व शरीर की वृद्धि होती है। परंतु यह बड़ा ही दुख का विषय है कि हमारे पशुओं को पोषक तत्वों की आपूर्ति उचित मात्रा में नहीं होती है। पशुओं को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, विटामिन्स व खनिज लवणों आदि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की पशु के शरीर में कमी हो जाने पर पशु के शरीर की क्रियाएँ सामान्य रूप से नहीं चल पाती हैं, जिसकी वजह से पशु के शरीर का विकास रुक जाता है तथा पशुओं से मिलने वाले उत्पादन की मात्रा भी कम हो जाती है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों से होता है। इसमें सल्फर व फास्फोरस भी पाया जाता है। प्रोटीन से पशु शरीर के तंतुओं की वृद्धि, नई कोशिकाओं का निर्माण, टूटी फूटी कोशिकाओं का पुनर्जन्म व मरम्मत होती है। प्रोटीन से पशु शरीर में पाचक रस, हार्मोन्स, एंजाइम्स का निर्माण होता है, जिससे शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्राप्त होती है व शरीर की वृद्धि होती है। यदि पशु शरीर के प्रोटीन की उचित आपूर्ति ना हो तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है और पशु की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। अतः पशु को प्रोटीन की उचित मात्रा सोयाबीन, बिनौला, गेहूँ, ज्वार आदि को उचित अनुपात में देने से प्राप्त हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नामक तत्वों से होता है। इससे पशुओं को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन का क्षय भी कम होता है। यह पशु के शरीर में जिगर व मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है व आवश्यकता पड़ने पर रक्त में मिलकर ऊर्जा देता है। यह चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से पशुओं के शरीर में कमजोरी आ जाती है व पशु के शरीर की क्रियाएँ चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती व पशु का उत्पादन कम हो जाता है। अतः पशुओं में इनकी आपूर्ति के लिए पशुओं को उचित मात्रा में हरा चारा व दाना खिलाना चाहिए। इसकी कमी से पशुओं में कीटोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है। वसा पशु शरीर को शक्ति व गर्मी प्रदान करता है। शरीर की वृद्धि, विकास व स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। वसा त्वचा व प्रजनन के लिए भी आवश्यक है, जो कि भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। वसा पशु के शरीर को सर्दी से बचाती है और उसके शरीर को सुडौल बनाती है। वसा के अभाव से वसा में घुलनशील विटामिन शरीर को नहीं मिल पाते हैं, जिससे शरीर में विटामिन्स की कमी, अनेक विकार हो जाते हैं। पशु का शरीर कमजोर व दुबला हो जाता है व शरीर के बाल गिर जाते हैं। अतः पशुओं

0: को वसा वाला भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जल की संरचना हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से होती है। पानी पशु के शरीर का सबसे आवश्यक तत्व है। पानी भोजन पचाने, शरीर में बनने वाले दूषित पदार्थों को पेशाब व पसीने के रूप में बाहर निकालने व शरीर को सदैव गर्म करने, रक्त को तरल रूप में बनाए रखने में सहायक होता है। पशु के शरीर को पानी सीधे पीने के अलावा दाना व चारा से भी उपलब्ध होता है। पशु के शरीर में पानी की कमी से रक्त प्रवाह पर असर पड़ता है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। पानी की कमी से पशु को कब्ज बना रहता है, अतः पशु को उचित मात्रा में पानी पिलाना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए व आवश्यकता पड़ने पर नॉर्मल सलाइन का घोल खून की नस में चढ़ाना चाहिए। विटामिन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन आदि मूल तत्वों से बना जटिल यौगिक है, जो कि पशु शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनकी उपस्थिति से शरीर निरोग व स्वस्थ रहता है। सभी जीवों में जीवन क्रियाओं को संतुलित रूप से चलाए रखने के लिए इनका भोजन में होना अति आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से यह हरे चारों में पाया जाता है। पशुओं के लिए मुख्यतः विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई आवश्यक है। विटामिन ए का पशु पोषण में विशेष महत्व है। यह साधारणतः हरी सब्जियों व चारों में पाया जाता है। पशु की हड्डियों के निर्माण में व रोगों से बचने में इनका विशेष महत्व है। आंखों की रोशनी व प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में इस विटामिन का योगदान है। इस विटामिन की कमी से पशुओं के शरीर का विकास रुक जाता है, जननांग व पाचन तंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते व त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। पशुओं में इसकी कमी से गर्भपात हो जाना व दूध का कम होना देखा जाता है। इसकी कमी से बछड़े अंधे पैदा होते हैं। इसकी कमी से बचने के लिए पशु को उचित मात्रा में हरा चारा खिलाना चाहिए और जरूरत होने पर इसके इंजेक्शन और विटामिन ए युक्त पाउडर पशुओं को खिलाना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक सामूहिक विटामिन है, जिसमें B1, B2, B3, B6 और B12 आदि विटामिन होते हैं। यह पशु आहार का आवश्यक तत्व है। इस विटामिन से पशुओं की पाचन क्रिया ठीक रहती है व पशु स्वस्थ रहता है। इसकी कमी से पशु का पाचन खराब रहता है, त्वचा खुश्क व रूखी हो जाती है, दुग्ध उत्पादन व प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। विटामिन सी का निर्माण पशुओं में हरी घास खिलाने से होता रहता है। इस विटामिन से पशु के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है व इसकी कमी से दांत व हड्डियां संबंधी रोग हो जाते हैं। पशुओं के जोड़ों में सूजन व कैल्शियम की कमी हो जाती है। पशुओं की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उचित उपयोग के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से सूखा नामक रोग हो जाता है। पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है। पशु कमजोर हो जाते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर रोग उभरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। हड्डियों में सूजन आ जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए पशुओं को भरपूर हरा चारा व संतुलित आहार, जिसमें खनिज लवण उचित मात्रा में हो, दिया जाना चाहिए। विटामिन ई के अभाव से पशुओं की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। वह इसकी कमी को पूरा करने के लिए विटामिन ई के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। विटामिन के की कमी से खून पतला हो जाता है व खून का जमना कम होने से रक्त स्राव नहीं रुकता। अक्सर दस्त व पेचिस की शिकायत भी बनी रहती है। विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए हरा चारा व संतुलित आहार देना चाहिए। इसकी कमी को पूरा करने के लिए भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पशु के शरीर का उचित विकास व प्रजनन क्षमता के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे खनिज तत्व कहते हैं। इनमें सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, कोबाल्ट आदि शामिल हैं। सामान्य पशु शरीर क्रिया के लिए इन खनिज तत्वों का पशु की खुराक में होना अति आवश्यक है। खनिज तत्वों की कमी के कारण शारीरिक भार में कमी, बालों का झड़ना, थकान व दुर्बलता, भूख न लगना, खून की कमी, त्वचा में रूखापन देखा जाता है। मैग्नीशियम की कमी से लैक्टेशन टेटनी की दशा बनी रहती है। खनिज तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पशुओं को प्रतिदिन उनकी खुराक में उचित मात्रा में खनिज मिश्रण युक्त दाना व हरा चारा खिलाना चाहिए।
1: किसान भाइयों, अभी आप डॉक्टर आदित्य कुमार को पशुओं में कुपोषण से होने वाले रोग विषय पर सुन रहे थे। लेते हैं एक अंतराल।

किसान भाइयों, आज मई माह का पहला मंगलवार है और हर वर्ष मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है ताकि अस्थमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके। ये एक गैर संक्रामक बीमारी है, यानी कि ये संक्रमण से नहीं फैलती है। हर वर्ष एक नई थीम, एक नए विषय, एक नए लक्ष्य के साथ इसको मनाया जाता है ताकि लोगों में अस्थमा के रोग के प्रति जानकारी बढ़ाई जा सके और अस्थमा के रोगियों के जीवन को बेहतर और आसान किया जा सके। इस वर्ष 2026 में इस दिवस की जो थीम है वो है सूजन रोधी इनहेलर तक पहुंच, अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए अभी भी एक आवश्यक आवश्यकता। अस्थमा वाले बच्चों और वयस्कों में सबसे आम और दीर्घकालिक बीमारियों में से एक है। भारत में भी करोड़ों लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। आइए विश्व अस्थमा दिवस पर आप और हम मिलकर ये प्रण लें कि न सिर्फ इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे बल्कि अपने स्तर से उनकी हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। जाते जाते जान लेते हैं आगरा और उसके आसपास के मौसम का हाल। विगत 24 घंटों में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी उत्कर्ष कुमार पांडे की राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं, श्रोताओं ये सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल अपनी रेडियो साथी शालिनी भदौरिया के साथ। तो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। साथियों, शाम का वक्त हो, हाथ में प्याय का चाय का प्याला हो, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हों और हम इन हवाओं का लुफ्त ले रहे हों, वाह क्या जिंदगी है। लेकिन सोचिए, जब इन ठंडी हवाओं का चाहकर भी हम मजा ना ले पाए तो क्या होगा? हम सांस लेने के लिए मुंह तो खोलें, लेकिन चाहकर भी हम सांस ना ले पाए। हमारे फेफड़ों के अंदर ऐसा लगे जैसे कोई भारी वजन रख दिया गया हो, तो हमें कैसा लगेगा? अरे भैया, मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं आपको बता रही हूं उन लोगों की तकलीफ जिन्हें अस्थमा की बीमारी होती है। जी हाँ साथियों, अस्थमा के मरीज को कुछ ऐसा ही महसूस होता है। जब उसे अस्थमा का अटैक आता है तो वो पूरी कोशिश करता है, वो लंबी लंबी सांस लेकर अपने फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन भरने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद भी उसकी सांसें फूलती हैं और ऑक्सीजन उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता, और ऐसी ही स्थिति को हम कहते हैं अस्थमा। अस्थमा या दमा फेफड़ों की एक दीर्घकालिक बीमारी है जिसमें श्वास नलियों में सूजन और संकुचन के कारण सांस लेने में कठिनाई, खांसी, सीने में जकड़न और घबराहट होती है। यह एलर्जी, धुआं, प्रदूषण या ठंडी हवाओं से ट्रिगर हो सकता है। हालांकि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इनहेलर और दवाओं से इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। साथियों, WHO के मुताबिक 2023 में दुनिया भर में करीब 36.3 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित थे। एक और रिसर्च बताती है कि 2021 में ये संख्या 26 करोड़ लोगों की थी। अगर हम इसमें अस्थमा के थोड़े बहुत लक्षण वाले लोगों को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 60 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। मतलब दुनिया में हर 20 में से एक इंसान को अस्थमा है। और दुख की बात यह है कि अस्थमा से होने वाली 4 लाख मौतें हर साल होती हैं, जिसमें से ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास इनकम देशों वाले लोग होते हैं। और भारत में भी इसकी हालत गंभीर है। यहाँ अस्थमा के मरीजों की संख्या करोड़ों में है। धूल, धुआं, फैक्ट्रियों का पॉल्यूशन, बीड़ी, सिगरेट, ये सब अस्थमा को बढ़ाते हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए ही और लोगों में अस्थमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने विश्व के सभी देशों के साथ मिलकर हर वर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाने की ठानी। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, जो आज ही का दिन है, और इस बार 2026 को विश्व अस्थमा दिवस की थीम है मेक इनहेलर ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल टू ऑल, यानी सभी के लिए इनहेलर इलाज सुलभ बनाए। साथियों सोचिए, अस्थमा का इलाज तो है, इनहेलर दवाएं भी हैं, पर गरीब देशों में आज भी बहुत से लोगों तक ये पहुंच नहीं पाती। कई बार तो एक इनहेलर की कीमत मजदूर के हफ्ते भर की कमाई के बराबर होती है। इसलिए WHO कहता है कि इनहेलर हर मरीज तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और विश्व अस्थमा दिवस हमारे लिए क्यों जरूरी है साथियों? ताकि हम समझ सकें कि कभी कभी लंबे समय तक चलने वाली खांसी जुकाम आम नहीं है, ये अस्थमा हो सकता है। ताकि लोग इनहेलर से डरे नहीं, वो ये ना समझे कि ये आदत डालता है, बल्कि ये जान बचाता है। ताकि सरकारें और फैक्ट्री मालिक धुएं और धूल पर कंट्रोल करें। साथियों, अगर हम कुछ बिंदुओं का पालन करें ना, तो हम अस्थमा से बच सकते हैं। यानी अगर आपको अस्थमा है तो इन कुछ चीजों से आपको खुद को बचाना चाहिए, जैसे वायु प्रदूषण, ठंडी हवाएं, कोई सुगंध, इन सब से कभी कभी अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थों से संपर्क ना करें, उनसे दूरी बनाए रखें। सिगरेट, मोमबत्ती, अगरबत्ती और पटाखों के धुएं से बचें।

बुखार रोग जिन्हें सर्दी या फ्लू है उनसे दूर रहें। आसपास के वातावरण को धूल रहित रखें, या फिर जहां धूल मिट्टी का काम है वहां ना जाएं, या फिर अपने नाक और मुंह को ढककर जाएं। निमोनिया, टिटनेस, दाद और खांसी जैसे बचाव के लिए समय समय पर अपना टीकाकरण और इलाज कराते रहें। अस्थमा की दवाओं का नियमित सेवन करें। देखिए साथियों, अस्थमा को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जोखिम को कम किया जा सकता है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है, साथ ही इससे बचाव भी किया जा सकता है। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ताकि आप भी इन ठंडी ठंडी हवाओं का दिल खोल कर आनंद ले सकें।

0: साथियों, हर साल गर्मियां रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, हर साल तापमान बढ़ रहा है। एक समय था जब हम पेड़ की छांव में बैठकर दोपहर काट देते थे, लेकिन अब तो कूलर पंखे भी फेल हो रहे हैं। हर साल गर्मी कुछ और बढ़ जाती है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? इस विषय को और विस्तार से जानने के लिए आइए सुनते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है तपती धरती जिम्मेदार कौन, और वार्ताकार है असीम आनंद।
1: धरती क्या है? धरती एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जहाँ पर पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अनुसार पृथ्वी की आयु 15 अरब वर्ष आंकी गई है। पृथ्वी पर हमें मानव, पेड़ पौधे, फल फूल आदि सभी मिलते हैं, जो अन्य किसी ग्रह पर नहीं मिलते। इस कारण पृथ्वी सभी से अलग है। दूसरा, धरती का सबसे बड़ा साथी पर्यावरण। इस कथन में कोई दो राय नहीं कि हमारी धरती का सबसे बड़ा साथी पर्यावरण है। ऋतुओं का बदलना, जाड़ा, गर्मी, बरसात, स्वच्छ वातावरण, पर्वत, हवा, पानी, ये सभी धरती पर जीवन के मुख्य कारण हैं। साथ ही साथ उपजाऊ मिट्टी भी पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाती है। यदि हम आसपास के वातावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे, विभिन्न प्रकार से प्रदूषणों से वातावरण को गंदा करेंगे, तो यह सब हमारी धरती के लिए व वातावरण के लिए हानिकारक होगा, और इसका भुगतान हम वर्तमान में निरंतर कर रहे हैं। भविष्य में इसके और विनाशकारी प्रभाव हमारे सामने आएंगे। यदि हमने स्वयं में सुधार नहीं किया और पर्यावरण को स्वच्छ नहीं बनाया, क्षितिजल पावक गगन समीर, इन 5 तत्वों से मिलकर ही इस पृथ्वी का, ब्रह्मांड का, मानवरण का, पर्यावरण का निर्माण हुआ है। हम यदि इसे सुंदर व स्वच्छ बनाएंगे, तो हमें इसका परिणाम सकारात्मक मिलेगा। यदि हम इसके साथ खिलवाड़ करेंगे, तो इसके दूरगामी परिणाम अत्यंत विनाशकारी व भयंकर होंगे। तीसरा, पिछले 500 वर्षों में होने वाला पर्यावरण परिवर्तन। यदि हम गहराई से जांच करें, तो हम देखेंगे कि पिछले 500 वर्षों में पर्यावरण परिवर्तन की रफ्तार धीरे धीरे प्रदूषण से प्रदूषण की ओर बढ़नी शुरू हो गई थी। पिछले लगभग 200 सालों में प्रदूषण ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। पिछले 50 वर्षों में प्रदूषण की स्थिति दिन दूनी रात चौगुनी की गति से बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से मानव आज जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन कर रहा है, वह भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। प्रदूषण के हर क्षेत्र में हम आगे खतरनाक स्थिति में जाते जा रहे हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जनसंख्या प्रदूषण आदि। फोर्थ, प्रदूषण पर्यावरण असंतुलन का कारण एवं महामारी का कारण। धरती का तापमान बढ़ने से मौसम में निरंतर बदलाव आ रहा है। इन बदलावों से लगातार बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा सर्दी होना, निरंतर वर्षा होना या ज़्यादा गर्मी होना, इस बात का निरंतर सूचक

के कि प्रदूषण का प्रभाव वायुमंडल पर अत्यंत नकारात्मक असर डाल रहा है। अधिक आबादी की वजह से भारत पर यह खतरा अन्य देशों की अपेक्षा अधिक दिखाई दे रहा है। विद्वान लोग वैज्ञानिकों को तो इस विनाश का भास हो चुका है, परंतु आम जनता को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से नदियां सूख जाएंगी, ग्लेशियर लगातार पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। भीषण तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, आंधी आने से धरती की स्थिति व मानव की स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाने का खतरा बढ़ जाएगा। हमारी पृथ्वी पर लगभग 1,98,000 ग्लेशियर हैं, जो करीब 7,26,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। ग्लेशियर साफ पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। सभी नदियों

0: भी ज्ञान नहीं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से नदियां सूख जाएंगी, ग्लेशियर लगातार पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। भीषण तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, आंधी आने से धरती की स्थिति व मानव की स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाने का खतरा बढ़ जाएगा। हमारी पृथ्वी पर लगभग 1,98,000 ग्लेशियर हैं, जो करीब 7,26,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। ग्लेशियर साफ पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। सभी नदियों का जन्म इन्हीं ग्लेशियरों व पर्वतीय इलाकों से ही होता है। इनका तेजी से पिघलने का कारण भी प्रदूषण है। पांचवा, पृथ्वी पर प्रदूषण को कम करने की दिशा में प्रयास। आज विश्व में प्रदूषण को कम करने की दिशा में लोग, विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं व सरकार निरंतर सक्रिय हैं। इसके लिए पिछले लगभग 47 वर्षों से 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस का प्रारंभ 1970 में पहली बार एक अमेरिकी सीनेटर जेरार्ड नेल्सन के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को समर्थन देने के लिए किया गया था। पृथ्वी दिवस के सफल आयोजनों व प्रयासों का पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के जो भी कार्य हुए उसकी अपेक्षा वैज्ञानिक विकास, नित नए वैज्ञानिक प्रयोग, युद्ध, अंधाधुंध विकास, गाड़ियों का निरंतर बढ़ना, प्रदूषण बढ़ना, यह सब पर्यावरण को और अधिक प्रदूषित करते हैं। बढ़ती जनसंख्या एक विस्फोट के रूप में हमारे सामने आई है। यह भी प्रदूषण के एक मुख्य कारणों में से एक है। जनसंख्या बढ़ने से पेड़ पौधे निरंतर कटते जाते हैं, गंदगी बढ़ती जाती है। कहते हैं मानव जहाँ जाता है वहाँ का वातावरण स्वतः ही प्रदूषित हो जाता है। अतः जनसंख्या को रोकना ही हमारे लिए परम आवश्यक है। अंतिम, प्रदूषण का जिम्मेदार कौन? निश्चित रूप से इस व्यापक स्तर पर प्रदूषण के जिम्मेदार हम स्वयं को ही मानते हैं। कहते हैं एक ही सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, लेकिन यहाँ एक ही सुधरने को तैयार नहीं तो दूसरा कैसे सुधरेगा? अपनी गलतियों का भुगतान हम स्वयं ही करेंगे तथा आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका भुगतान करना होगा। हमें सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकना होगा। धरती को कम से कम गंदा करें, पेड़ पौधे उगाएं, पेड़ों को ना काटें, पानी की एक एक बूंद को सुरक्षित रखें, तालाब, पोखर, कुएं पहले की भांति बनवाएं, जल संरक्षण करें, आग से चमड़ा आदि न जलाएं जिससे अधिक धुआं ना हो। यदि हमें स्वस्थ रहना है हमें इस ओर ध्यान देना ही होगा। अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से ये प्रदूषण हमारे जी जान के लिए और अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगा। धन्यवाद
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था तपती धरती जिम्मेदार कौन, और वार्ताकार थे असीम आनंद। साथियों, आज अस्थमा की बात करके हमें पता चला कि सांस लेने में अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो तो कितनी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा श्वास से संबंधित व्यायाम करते रहने चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। और ऐसे व्यायाम करने के लिए सबसे अच्छी जगह कैसी होती है? खुले और हरे भरे स्थान। और ऐसी खूबसूरत जगह के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, और वो है आगरा का प्रसिद्ध मेहताब बाग। साथियों, मेहताब बाग सिर्फ एक आम बाग या गार्डन नहीं है, बल्कि यहाँ से आपको होते हैं ताजमहल के खूबसूरत दर्शन। जरा सोचिए, सुबह सुबह ठंडी हवा, सामने यमुना बह रही हो और यमुना के ठीक उस पार संगे मरमर का ताजमहल सूरज की पहली किरण से नहा रहा हो, वाह, मन खुश हो जाए। मेहताब बाग को चांदनी बाग भी कहते हैं। मुगल बादशाह बाबर ने इसे बनवाया था। कहते हैं शाहजहां ताजमहल के ठीक सामने यमुना पार एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, और मेहताब बाग वही जगह है। निर्माण बाबर द्वारा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया। शाहजहां ने इसे चांदनी रात के उद्यान के रूप में विकसित किया, जो ताजमहल की सुंदरता को निहारने का सबसे अच्छा स्थान माना गया। 1652 में यमुना की

भयानक बाढ़ के कारण ये बगीचा काफी हद तक नष्ट हो चुका था। 1990 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इसकी खुदाई की, जिसमें एक विशाल टैंक, फव्वारे और बरादरी के अवशेष मिले, जिसके बाद इसे एक सुंदर बगीचे के रूप में पुनर्जीवित किया गया। और तब से लेके आज तक हजारों लोग मेहताब बाग जाते हैं ताजमहल को निहारने के लिए, प्रकृति की खूबसूरती और यमुना नदी के किनारे बैठकर ताजमहल को निहारने में अपना ही सुकून है। तो साथियों, अगली बार जब आपको ठंडी हवाओं, सुकून और शांति की तलाश हो, तो आपके लिए मेहताब बाग बिल्कुल सही जगह है। वहां ना शोर है न भीड़ का धक्का, बस आप हैं, यमुना का कलकल बहता पानी और सामने मोहब्बत की निशानी ताजमहल। और अब सुकून की तलाश में हम भी चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि वक्त है आपसे विदा लेने का, पर जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी रेडियो साथी शालिनी भदौरिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप हिंदी समाचार सुनेंगे, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
1: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को।

0: कॉटन, कस्तूरी कॉटन, इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफपीआर को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32 लाख किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विचार करने के लिए समूची संस्कृति और सभ्यता के साथ उसके समग्र संबंध का विचार करना होगा। अज्ञेय ने भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व से ऊर्जा प्राप्त कर अपनी भाषा को प्राणवंत बनाया है। यदि हम उनकी रचना धर्मिता को आधार बनाकर उनके रचना संसार पर उचटती हुई सी दृष्टि डालें तो भी मानव वन के अंतरतहों में जाकर उसकी भावाव्यक्ति को जैसे का तैसा प्रस्तुत कर मन के विज्ञान को चमत्कार रूप में प्रस्तुत करने वाले कुशल जादूगर हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में मनोविश्लेषणात्मक धरातल पर खड़े होकर सृजन करने वाले यज्ञ का 1940 में प्रकाशित शेखर एक जीवनी अद्वितीय उपन्यास है। उपन्यास की भूमिका में वे स्वयं लिख देते हैं कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है, 10 वर्षों में भी कुछ देर है, केवल जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई है, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना और ऐसा वह निजी नहीं कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा दें। अज्ञेय का यह उपन्यास एक भावुक किंतु विद्रोही व्यक्ति के जीवन का चित्रण है, जो उनका दूसरा उपन्यास नदी के दीप एक दर्द भरी प्रेम कहानी है। ये दर्द उनका भी है जो उपन्यास के पात्र हैं और उनका भी जो उपन्यास के पात्र नहीं है। नदी के दीप समाज के जीवन का चित्र नहीं है, एक अंग के जीवन का चित्र है। पात्र साधारण जन नहीं है, एक वर्ग के व्यक्ति हैं और वह वर्ग भी संख्या की दृष्टि से अप्रधान ही है। नदी के द्वीप में प्रेम का चित्रण और उस प्रेम के फलस्वरूप दो स्त्री पुरुषों के बीच व्यक्तित्व का तन और मन दोनों का समर्पण किसी विकृति का परिणाम नहीं है और न उसका कोई कारण। अज्ञेय का एक और उपन्यास अपने अपने अजनबी बूढ़ी सेतमा जो कैंसर पीड़िता है की बड़ी दर्द भरी कहानी है, जो रोग से बुरी तरह ग्रसित होने के कारण सहर्ष मृत्यु का वर्णन करती है। तो कहानियों के क्षेत्र में भी अज्ञेय ने अपने रचना कौशल के बल पर विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। 67 से अधिक कहानियां लिखने वाले अज्ञेय ने हिंदी कहानी के क्षेत्र में भी अपनी कीर्तिमयी उपस्थिति दर्ज कराई है। अज्ञेय की कहानियों को वर्गीकरण करने की दृष्टि से हम उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग क्रांतिकारी जीवन से संबंधित कहानियां, दूसरा प्रेम संबंधित कहानियां और तीसरा मनोवैज्ञानिक कहानियां। अज्ञेय की क्रांतिकारी कहानियों में मिलन, कैसांड्रा का अभिशाप, 1 घंटे में, दरोगा अमीचंद, छाया, कोठरी की बात, पुलिस की सीटी, अकलंक आदि कहानियां हैं, जिनमें अकलंक चीन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है तो बिपथगा मास्को की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी। तभी तो उनकी क्रांतिकारिणी नायिका कहती है, क्रांति आंदोलन, सुधार, परिवर्तन कुछ भी नहीं है, क्रांति है विस्फोटों का, सदियों का, शासन की ओर विचारों की प्रणालियों का घातक विनाशकारी भयंकर विस्फोट। इसका न आदर्श है, न ध्येय, न धुर। इसी प्रकार मिलन भी रूसी पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है तो कैसांड्रा का अभिशाप क्यूबा की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। क्रांतिकारी जीवन की घटनाओं को विवेचित करती अज्ञेय की कहानियां रोमांचित कर देती हैं। इस प्रकार की अन्य कहानियों में लेटरबॉक्स, शरणदाता, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, वदला, नारंगियां, रमनते तत्र देवता आदि हैं। इन कहानियों के अतिरिक्त उनकी प्रेम संबंधी कहानियों में अमर वल्लरी, मनसो, सिग्नेलर, हर्षृंगार, सेव और देव, रेल की सीटी, सांप, ताज की छाया में, कवि प्रिया, अछूते फूल आदि हैं। अमर बल्लरी में लेखक की प्रेम संबंधी युक्ति ध्यान आकर्षित करती है। प्रेम आईने की तरह स्वच्छ रहता है, प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपना ही प्रतिबिंब पाता है और एक बार जब वह खंडित हो जाता है तब वह जुड़ता नहीं है। इसी प्रकार अन्य कहानियों में भी अज्ञेय ने प्रेम के विभिन्न रूपों को अलग अलग तरह के फ्रेम में कसकर फिट किया है। कहानियों को नई दिशा में ले जाने वाले अज्ञेय ने निबंधों के क्षेत्र में भी अपनी प्रखर बौद्धिकता, मूल्यान्वेषण तथा सतत स्तरीय चिंतन से नए आयाम स्थापित किए हैं। हिंदी जगत में अपनी रचनाओं के बल पर चर्चा के केंद्र में रहे अज्ञेय ने साहित्य, राजनीति, भाषा, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, आधुनिकता, व्यक्ति और समाज से संबंध रखने वाले सभी संदर्भों पर निबंध लिखे हैं। अज्ञेय के अब तक 12 निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें त्रिशंकु, सवरंग और कुछ राग, आलवाल, जोगलिखी, संवत्सर, अद्यतन, कहां है द्वारिका आदि हैं। अज्ञेय ने अपने आत्मबोध और परिवेश को दो फाकों की तरह नहीं अपितु एक संपूर्ण चैतन्य कलेबर की भांति ग्रहण करते हुए स्वकीय निबंधात्मकता का मार्मिक प्रण किया है। उनके लिए अपने समय का यथार्थ केवल बाह्य यथार्थ न होकर अच्छी तरह से स्वयं की आंच पर तपाया हुआ यथार्थ है। वास्तविकता यह है कि अज्ञेय ने हिंदी निबंध को नई दिशा दी है। वैविध्यपूर्ण विषय चयन करके निबंधों की प्रमुख विशेषता को ध्यान में रखकर उन्होंने इसे निखारा है। सच तो यह है कि अज्ञेय वास्तव में कथाकार की अपेक्षा मूलतः कवि हैं। सदा नीरा में अज्ञेय की लगभग सभी कविताएं संकलित हैं, जिनमें उनके प्रकाशित काव्य ग्रंथ भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा हेरी, शरणार्थी, हरी घास पर क्षणवर, आंगन के पार द्वार, नदी की बाग पर

0: आदि हैं। अज्ञेय ने अपनी कविताओं में मन के तारों को झंकृत किया है। वे स्वयं कहते हैं कि मैं कवि हूँ किंतु मेरी प्रतिभा अभिशप्त है। संसार का चित्रण करने का सामर्थ्य रखते हुए भी मैं अपने को व्यक्त नहीं कर सकता। कवि की हृदय पीड़ा को व्यक्त करते हुए अज्ञेय कहते हैं कि एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाती है, एक चुम्बन से प्रणय फलीभूत हो जाता है, पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथागार हूँ। प्रेम, वियोग, राष्ट्र, गरीबी, मानवता, क्रांति, समाज आदि विषयों पर कवि की लेखनी चली है। अगणित कविताएं उनकी सांसों को सहलाते हुए उनकी लेखनी से अवतरित हुई हैं। उसने मानव की आस, प्यास, विश्वास और सांस सांस को देखा है, छुआ है, जाना है। अज्ञेय कवि हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार या निबंधकार, पता नहीं। वह जब भी जहां भी होते हैं अपने आसपास एक सुंदर संसार रच लेते हैं, तब लगता है वह केवल या तो कथाकार हैं या कवि। लेकिन यथार्थ यह है कि अज्ञेय केवल अज्ञेय हैं जिसने अपने प्रतिभा के विभिन्न आयाम गढ़कर एक सुंदर साहित्य संसार का सृजन किया है जिसमें आम आदमी की संवेदना आज भी नए रास्ते ढूंढती नजर आती है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आपने सुनी वार्ता अज्ञेय का रचना संसार। वार्ताकार थी डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। सात बजकर 18 मिनट होने को है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: अश्वानी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजन 2026-27 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल किया तय। कपास उत्पादकता मिशन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में शिक्षा मित्रों को किया सम्मानित। 612 करोड़ रुपए से अधिक की 71 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज प्रयागराज में चल रहे नॉर्थ टेक सिंपोजियम को किया संबोधित। कहा, देश में बने हथियार बढ़ा रहे हैं भारतीय सेना का बल। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के दिए निर्देश।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 1,52,702 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने लगभग 5,659 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को मंजूरी दी है।
1: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए सीजन 2026-27 के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल के उचित और लाभकारी मूल्य FRP को मंजूरी दी है। यह निर्णय लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ 5 लाख चीनी मिल कर्मियों और उनसे जुड़े सहायक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागदा मथुरा और बुढ़वल सीतापुर के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में शिक्षा मित्रों को सम्मानित कर बढ़े हुए मानदेय के चेक प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले ही अच्छी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों की हालत बदली है, जिसके कारण ड्रॉप आउट दर 19 से घटकर 3% पर आ गई है।
2: 99% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इन विद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं और परिणाम क्या है, ड्रॉप आउट रेट 19% से घटकर के 3% पे आया है। जो बच्चे और समय स्कूल छोड़ते थे, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब केवल स्कूल नहीं छोड़ता, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब राष्ट्रीय क्षति भी है।
0: प्रदेश के कई जिलों में भी आज शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसी क्रम में आगरा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा हमारी नींव है और शिक्षा मित्रों के कंधों पर अंतिम पायदान पर खड़े अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा का दायित्व है।
3: प्राइमरी एजुकेशन हमारी नींव है, अगर नींव कमजोर हो जाएगी तो उसके ऊपर महल नहीं बन पाएगा। अध्यापक राष्ट्र की संपत्ति के चतुर माली होते हैं और वो बच्चों के संस्कारों को अपने श्रम से सींचकर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 612 करोड़ रुपए से अधिक की 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें कल्याण मंडप के लोकार्पण, एकीकृत मंडलीय कार्यालय समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद के तारा मंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर 14,33,00,000 रुपए की लागत से बने 2-लेन ब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है।
2: गोरखपुर का नाम सुनकर के लोग डरते थे, कोई निवेश नहीं करने आता था। यहाँ का नौजवान अपनी पहचान के लिए मोहताज था, नौकरी के लिए उसको देश के अंदर भटकना पड़ता था। आज उसको भटकना भी नहीं है, पहचान छुपाना भी नहीं है। 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर में गीडा में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है, गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ है।
0: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज प्रयागराज में चल रहे नॉर्थ टेक सिंपोजियम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में विकसित हथियारों ने रक्षा बलों को और मजबूत बनाया। उन्होंने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि नवाचार एक सतत प्रक्रिया है और सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे रही है। श्री सेठ ने कहा कि हमारे रक्षा उद्योगों के कारखानों में विकसित उपकरणों और हथियारों से भारतीय सेना की शक्ति बढ़ रही है।
4: बिहारों का संजीवी मेहनत करती निकल के काम कर रहा है, अच्छी सड़कें पुल पुलिया दुरुस्त कर रहा है, लैंडस्लाइड होता है, खतरनाक होता है, लेकिन उसका ध्येय है चले वेती, बड़े चलो, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा।

0: कारखाने में पसीना बहाते हो, आप भी उससे कम नहीं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के रूप में कार्य करेंगे। पहले की तरह ही बिजली के बिल में बिल जमा करने की तिथि की जानकारी रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि बिलिंग साइकिल वैसे ही रहेगा जैसे पहले पोस्ट पेड मीटर में होता था। पूर्व की तरह एक तारीख से माह के अंत तक बिल की खपत का एक महीने का बिल SMS और WhatsApp पर दिया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अपना बकाया भुगतान 10 किश्तों में करने की बड़ी राहत भी दी गई है। यदि किसी उपभोक्ता को बिल संबंधी कोई समस्या है तो अपनी शिकायत 1912 पोर्टल पर भी दर्ज करा सकता है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश शासन ने महायोजना 2031 को मंजूरी मिलने के बाद अयोध्या के व्यापक विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने बताया कि अब शहर को 766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसे नव अयोध्या का नाम दिया गया है। इसमें 353 राजस्व गांवों को शामिल किया जाएगा।
3: यहाँ पर आवासीय, इंडस्ट्रियल, ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अलग अलग श्रेणी की भूमि आरक्षित करी गई है और सभी लोगों से उन्हें अनुरोध है कि महायोजना के अनुरूप एक सुनियोजित विकास में आप लोग अपनी सहभागिता दें।
1: ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल पर प्रदेश के कई जिलों में हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटी। अयोध्या में ऐतिहासिक हनुमान गढ़ी पर सुबह ही हनुमान जी को परंपरा के अनुसार सिंदूर और चोला चढ़ाया गया। वहीं लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराना हनुमान मंदिर और हनुमान सेतु मंदिर सहित शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। साथ ही जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: नगर निगम ने भंडारों के आसपास स्वच्छता के लिए सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने आगामी सभी बड़ा मंगल पर भंडारा लगाने की सूचना कंट्रोल रूम के नंबर 1533 पर फोन करके देने को कहा है, ताकि भंडारा स्थल के पास सफाई और स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जनपदों में कल भी तेज हवाओं के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को फील्ड में रहकर राहत और बचाव कार्यों पर लगातार निगरानी करने को कहा है। IPL क्रिकेट में 7 मई को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा। मैच को लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने लखनऊ पहुंचकर अभ्यास शुरू कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजन 2026-27 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल का तय। कपास उत्पादकता मिशन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में शिक्षा मित्रों को किया सम्मानित। 612 करोड़ रुपए से अधिक की 71 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज प्रयागराज में चल रहे नॉर्थ टेक सिंपोजियम को किया संबोधित। कहा, देश में बने हथियार बढ़ा रहे हैं भारतीय सेना का बल। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
5: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
6: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। कार्यक्रम से

0: वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में आइए सुनते हैं विश्व अस्थमा दिवस पर विशेष भेंट वार्ता के अंतर्गत बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज यादव से अनिंद्र सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर एक ऐसी विषय पर बात करेंगे जो हम लोगों के जीवन से जुड़ा है, अस्थमा। और इस साल जो है मुख्य थीम जो हर बार रखी जाती है, इस बार की थीम है कि हर मरीज तक जो अस्थमा की दवाएं हैं उनकी बहुत आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके और किफ़ायती तरीके से उनको वो दवाएं मिल सकें। आज अस्थमा पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज यादव। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में। नमस्कार।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। चूंकि अस्थमा दिवस है, सबसे पहले तो यही बताएं श्रोताओं को कि अस्थमा है क्या और किस तरह से अस्थमा हमें हो जाता है। चूंकि आजकल जीवन शैली ऐसी है, हमारे आसपास का वातावरण ऐसा है और उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं अस्थमा हमें होने के।
2: बेसिकली देखा जाए तो अस्थमा एक क्रोनिक इलनेस है, रिवर्सिबल। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हाइपर रिएक्टिव एयरवे हो जाता है। इसमें जो है जैसे ही किसी एलर्जन या पॉल्यूटेंट या फिर जो है किसी से जिससे सेंसिटिव एयरवे है वो टच में आता है या कांटेक्ट में आता है तो उसको जो है ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है। ब्रोंको स्पाज्म होने के कारण बच्चे को जो है सांस लेने में दिक्कत, खांसी और जो है चेस्ट में टाइटनेस जैसे सिम्टम आते हैं,
1: कंजेशन में
2: कंजेशन
1: जी हाँ,
2: कंजेशन जैसे सिम्टम आते हैं जिससे बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है और बच्चा रोता रहता है। और ज्यादा ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है तो बच्चे को पसली चलने लगती है। पसली चल रही है तो बच्चे को निमोनिया हो गया है। तो वो पेरेंट्स हर बार इसी कंफ्यूजन में होते हैं कि बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, लेकिन वो निमोनिया नहीं होता, बेसिकली वो ब्रोंकियल अस्थमा होता है। उसमें जो है बार बार हाइपर रेस्पॉन्सिव एयरवे होता है, उसमें जो है ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, इस वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे ही बच्चे को जो है हम ब्रोंको डायलेटर देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो बच्चे को तुरंत आराम मिल जाता है।
1: मतलब कॉमन सी चीज है ये पसली चलना, और हम शायद हर बार यही सोचते हैं कि पसली चल रही है, बार बार ऐसा हो जाता है। हम शायद ये नहीं समझ पाते कि इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो उसमें कहीं तकलीफ हो रही है।
2: बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है और इसमें जो है हमारा एयरवे बहुत हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाता है कुछ एलर्जन से, जैसे पॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड है, धूल के कण हैं या जो है पॉलन ग्रेन हैं, तो इसमें जो है सीरम आईजीई लेवल बढ़ा होता है, उस कारण जो है हाइपर रेस्पॉन्सिव होता है और ल्यूकोट्राइन्स और साइटोकाइंस सीक्रेट होते हैं और हिस्टामिन, जिससे ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ये ब्रोंकोस्पाज्म होने से कुछ बच्चों को नेजल एलर्जी होती है, राइनाइटिस होने लगती है। जैसे ही एलर्जन उसके टच में आता है तो बच्चे को छींक आने लगती है, नाक बहने लगती है, पानी आने लगता है, लेकिन वो बेसिकली जुखाम नहीं होता है, वो एलर्जी के कारण दिक्कत होती है, वो वायरल नहीं होता है।
1: जी।
2: कुछ बच्चों में जो है जब ठंडे हवा से या ठंडे पानी से एक्सपोजर होता है तो भी दिक्कत होती है। कुछ लोगों को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकियल अस्थमा होती है, तो उसमें जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो उनको ब्रोंकोस्पाज्म होने लगता है, FEV1 कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है
1: अलग अलग लोगों में अलग अलग कारण
2: अलग अलग कारण होते हैं, सभी में एक कारण नहीं होता है, सबके अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, सबका अलग अलग रेस्पॉन्स होता है। जैसे किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है तो सीजनल एलर्जी होगी, ठीक है, स्पेसिफिक
1: सीजन आएगा तो
2: स्पेसिफिक सीजन आएगा उसमें
1: ज्यादा उग्र हो जाएगा,
2: हाँ, उसको राइनाइटिस होगी और जो है आई फ्लू टाइप सिम्टम आएंगे और उसको जो है ब्रोंकोस्पाज्म, गले में खराश, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ये सीवियरिटी भी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। एलर्जी हो सकता है पोलन ग्रेन से बहुत सारों को होती है, लेकिन सभी में सिम्टम एक से नहीं होते। किसी में राइनाइटिस तक रहता है, किसी में गले में खराश थोड़ा बहुत होता है, किसी में थोड़ा ब्रोंकोस्पाज्म होता है, किसी में सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म होता है। जो सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म होता है, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको दिक्कत ज्यादा है, उनको ट्रीट करने की जरूरत है।
1: अच्छा, आपने कहा कि ये जो अस्थमा, ऐसा तो है ना कि ये बच्चों की बीमारी है?
2: नहीं, सभी में होता है,
1: किसी भी उम्र में भी हो सकती है।
2: किसी,
1: मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी को शुरुआत में बचपन से ही किसी के पर्टिकुलर एलर्जी हो जाए, किसी के प्रति सेंसिटिव हो।

0: बाद में भी ये चीज डेवलप हो सकती है।
1: हाँ बिल्कुल, जैसे सीरम आईजी जिन बच्चों में बढ़ा होता है उनमें जल्दी प्रेसिपिटेट होने लगती है, जिनमें सीरम आईजी बच्चों में नॉर्मल होता है उनमें लेटर ऑन सिम्टम आते हैं, लेकिन एटोपिक डर्मेटाइटिस वगैरह होती है तो उनमें अर्ली सिम्टम्स आ जाते हैं, उनमें जो है एलर्जन से जैसे ही एक्सपोजर होता है ब्रोंकोस्पाज्म होने लगता है और उनको सिनीजिंग रनिंग नोज
0: इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आमतौर पर घरों में ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं काम करती हैं और चूंकि रोजमर्रा के जो काम है उसमें झाड़ू पोछा तो कॉमन सी चीज है, किसी किसी को झाड़ू करने से या किसी दिन ज्यादा साफ सफाई कर ली तो फिर उनको बहुत अनइजीनेस होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी अस्थमा का ही एक प्रकार।
1: हाँ, वो भी एलर्जी का ही पार्ट है, एलर्जिक राइनाइटिस होती है और कुछ लोगों में अगर जो है सीवियर फॉर्म है तो उसमें जो है ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। जैसे होली दिवाली पे अगर देखा जाए जो घरों में सफाई होती है तो उन दिनों जो है ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट बढ़ जाते हैं, काफी पेशेंट आते हैं उन दिनों, तो क्योंकि घर में सफाई वगैरह चल रही होती है, हाउस माइट हाउस डस्ट से एलर्जी होती है, सेंसिटिव होते हैं, कुछ बच्चों को पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी होती है तो वो भी दिक्कत होती है, तो ऐसे में इनसे बचाव रखना चाहिए।
0: अभी एक चूंकि मुझे वाकया याद आ रहा है इसलिए उसका जिक्र करना चाहूंगा कि आई वॉज पोस्टेड इन करगिल, तो उधर जम्मू साइड में कश्मीर साइड में और लद्दाख साइड में घरों में कालीन बिछाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी डस्ट हो जाती है, वी आर नॉट यूज टू इट, हमारे यहाँ तो ये सब कालीन उतना नहीं बिछाते हैं। हमारे साथ का एक बंदा वहाँ जब था तो ही वॉज वेरी सेंसिटिव क्योंकि कमरे में पूरे में कालीन बिछाए और वो जरा सी भी उसमें अगर ब्रूमिंग करता था तो उसको बड़ा दिक्कत होती थी।
1: बेसिकली अगर देखा जाए तो जो धूल से या हाउस माइट से जिनको एलर्जी होती है या हाउस डस्ट से या पेपर से तो उसमें क्या होता है बेसिकली जैसे धूल कई दिनों तक जमी है तो उसमें जो है
0: एक खास जैसे किस्म की स्मेल आ जाती है,
1: स्मेल आने लगती है, स्मेल से एलर्जी होती है। मुझे भी एलर्जी है जी, आपको बताऊं, अगर मैं जो है ना पुराना कपड़ा रखा हुआ जो धूप नहीं देखा हुआ है तीन चार महीने रखा रहे वो कपड़े को मैं पहन लूं तो मुझे ब्रोंकोस्पाज्म और स्नीजिंग और रनिंग नोज होने लगता है।
0: जी, जो मेरा आगे का सवाल था शायद उसका जवाब भी इसी में छुपा था जो आपने जिक्र किया कि हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एलर्जी है अगर हमें किसी से, हमें पता होता है कि वी आर एलर्जिक टू दिस, बट हमको ये सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि हम उन चीजों को अवॉइड करें जिनसे हमें कहीं ना कहीं दिक्कत है।
1: एलर्जी है जिसको तो बेस्ट ट्रीटमेंट यही है, सबसे अच्छा इलाज यही है कि उसको अवॉइड करें, उससे एक्सपोजर मेरा ना हो,
0: कम से कम हो,
1: कम से कम
0: अगर
1: हो।
0: होना भी है तो मिनिमाइज करें।
1: अगर एक्सपोजर होगा तो आपको रेस्पॉन्स आएगा, उसका हाइपर रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब इसको अवॉइड आपको करना है, आपको पहचानना है, यही इलाज है, नहीं तो आप मेडिसिन जिंदगी भर खाते रहेंगे, बार बार दिक्कत होगी, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप अगर इलाज सही से नहीं ले रहे हैं तो उसको
0: या समय पे इलाज नहीं मिल पाया
1: तो कभी कभी सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म स्टेटस एस्थमेटिकस में चले जाते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं, और ये सही से इलाज नहीं ले रहे हैं तो क्रोनिक अस्थमा हो जाता है और बाद में लेटर ऑन COPD में बदल जाता है।
0: जी, अस्थमा के अगर हम और कारणों पर विचार करें या ट्रिगर्स पर ध्यान देना चाहें तो और क्या हो सकते हैं?
1: बेसिकली एक्सट्रिंसिक होते हैं, जैसे पॉल्यूटेंट हो गया, कोई एलर्जन हो गया, या फिर जो है माइट हो गया, या कोई फूड एलर्जी है, या कोई कलर से एलर्जी होती है किसी
0: कलर
1: को,
0: या पेंट से भी
1: पेंट से भी होती है, तो ये सारी चीजें, और स्पेसिफिक किसी को साइट्रस फ्रूट से एलर्जी होती है, किसी को सरसों और हरी मिर्च से, बहुत सारे लोगों को होती है, और कर्ड से मिल्क एलर्जी भी काफी पाई जाती है, ठीक है। जैसे बच्चा तो ठीक था साहब, जैसे ही जो है गाय का दूध पिया तो जो है इसके जो है ना दाने निकलने लगे, या अंडा खाया उसके बाद इसके जो है ना पूरे शरीर में रैशेस हो गए।
0: तो इस तरह के केसेस आपके पास लगातार आते हैं?
1: मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने काऊ एलर्जी का बच्चा एक बार देखा
0: जी।
1: 3 दिन का बच्चा था, काऊ मिल्क पिलाया, पूरे बॉडी में उसको आर्टिकेरियल रैसेस हो गए, और इतनी जल्दी यूजुअली मिलते नहीं है, लेकिन उसमें जो है ना 3 दिन पे आर्टिकेरियल रैसेस थे, और उसको फिर स्टीरॉइड दिया गया, उसको अवॉइड किया गया काऊ मिल्क, और बच्चा 2 दिन में ठीक हो गया।
0: जैसे अब किसी को अस्थमा है, जाहिर सी बात है मेडिकेशन लेगा, तो दवाएं क्या होती हैं, किस तरह से मेडिकेशन होता है? आजकल ज्यादातर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो इनहेलर्स देते हैं, शुरुआती प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं, और क्या इलाज होते हैं?
1: बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें जो है 2-3 तरह के से इलाज होता है, और एक तो फर्स्ट पार्ट यही है कि जो है एक्सपोजर को हम रोकते, अवॉइड एक्सपोजर।

0: दूसरा इसको रोकने के लिए जैसे किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है तो सीजनल एलर्जी, तो वो एक टावल लगाते हैं उसमें पोलन ग्रेन आइडेंटिफाई करते हैं, वो सीजनल फिर अलर्ट जारी कर देते हैं कि अब आप जो है घर से ज्यादा ना निकले, मास्क लगा के रखें, ठीक है, नहीं तो इसके पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा हैं एनवायरमेंट में, आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये अलर्ट जारी किए जाते हैं बड़े
1: जी
0: बड़े
1: जी जी
0: शहरों में,
1: जहाँ
0: अच्छे
1: पर
0: अच्छे
1: ऐसी जो कॉटन मिल्स होती हैं,
0: हाँ
1: खास तौर पे मैंने वहाँ जैसे कोयम्बतूर जैसी जगह है,
0: हाँ
1: वहाँ पे जो मिल्स होती हैं
0: हाँ
1: उनके इर्द गिर्द जो काम करते हैं वहाँ लोग या वहाँ रहते हैं, उनको कभी कभी ऐसी एडवाइजरीज
0: कहाँ
1: जारी होती
0: कॉटन
1: हैं।
0: से, कॉटन से एलर्जी काफी होती है।
1: जी
0: हाँ, उसमें क्रोनिक इलनेस भी होती है, क्रोनिक लंग डिजीज भी होती है, सीओपीडी में चले जाते हैं बाद में, फाइब्रोसिस भी हो जाती है।
1: अच्छा, अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है?
0: अस्थमा बेसिकली सबसे अच्छा पार्ट यही है कि अगर जो है ना किसी को एलर्जी है और एलर्जियन को हम उससे जीवन से निकाल दें, वो उसके टच में ना आए, तो बिल्कुल जिंदगी उसकी
1: आसान
0: आम
1: रहे।
0: आदमी की तरह हम लोग हैं वैसे ही रहेगा, कोई कभी सर्दी जुकाम खांसी नॉर्मली नहीं होगा। बाकी अगर देखा जाए जैसे बार बार दिक्कत होती है, जैसे कोई अस्थमा के प्रकार होते हैं जैसे इंटरमिटेंट है, तो इंटरमिटेंट में बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, 3 बार सप्ताह में उसको डे में सिम्टम आ रहे हैं सांस लेने में तकलीफ या खांसी, तो इंटरमिटेंट बोलते हैं इसमें जो है जब भी हो तो उसको ब्रोंकोडायलेटर दे दिया जाता है, उसे आराम मिल जाता है। माइल्ड टाइप होती है कि ये जो है उसको 3 से ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं सप्ते में, 3 दिन से ज़्यादा उसको खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जो है चेस्ट टाइटनेस हो रही है, तो ये माइल्ड टाइप में आता है। और मॉडरेट टाइप जब वो डेली सिम्टम आ रहे हैं लेकिन वो अपनी एक्टिविटी कर ले रहा है, एक्टिविटी करता है तो एग्जर्शन पर दिक्कत होती है, थकावट पर उसको सांस लेने में तकलीफ
1: तकलीफ हो रही
0: होती
1: है।
0: है। सीवियर वो होता है जब जो है बच्चा को बैठे बैठे भी दिक्कत हो रही है उसे, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में जो होता है तो इसके ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, कुछ स्टेबलाइजर होते हैं, प्रिवेंटर होते हैं और कॉर्टिकोस्टीरोइड एंटी इन्फ्लेमेटरी। जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं उसमें जो है साल्बिटामोल टर्बुटालिन यूजली यूज करते हैं, साल्बिटामोल के सिरप आते हैं जैसे एस्थालिन वगैरह है,
1: जी
0: टर्बुटालिन के भी बहुत सारे सिरप आते हैं। ब्रोंकोडायलेटर इसका काम है एयरवे को फैलाना, लेकिन ये बीमारी को रोक नहीं
1: रोक
0: रहा है।
1: नहीं रहा है, आपकी जो
0: हाँ
1: सांस लेने की तकलीफ है
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: रास्ता
0: उसको
1: आपका
0: रिलीव कर देगा,
1: रिलीव कर दे रहे हैं।
0: रिलीव कर देगा।
1: जी जी
0: अब दूसरा आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी में कॉर्टिकोस्टीरोइड देते हैं, कॉर्टिकोस्टीरोइड देते हैं तो वो उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है, कम करने के कारण जो है उसको लॉन्ग टर्म आराम
1: आराम
0: मिलता है।
1: मिलता है।
0: कुछ जैसे प्रिवेंटर होते हैं जैसे मास्ट सेल स्टेबलाइजर, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ग्लाइकेट और जो है दूसरा मोंटिलुकास्ट, ये जो है जहां से इनकी साइकिल एंटी इन्फ्लेमेटरी की साइकिल शुरू होती है उसको रोक देते हैं। जैसे
1: मतलब
0: इन
1: वो निपिन द बट बोलते हैं
0: आ
1: ना।
0: हाँ जैसे एलर्जन गया इसनोफिल पे एक्ट किया उसने, उससे बाइंड किया और वहां से जो है लिकोट्राइन्स और साइटोकाइन्स वगैरह रिलीज हुए, एंटी हिस्टामिन रिलीज हुए, तो उसको जो है ना
1: वहीं सप्रेस
0: वहीं
1: करेगा,
0: पर रोक देगा कि ये लिकोट्राइन्स रिलीज नहीं
1: नहीं
0: होंगे।
1: होंगे।
0: दूसरा होता है कि जो सोडियम क्रम कीटोटोफिन वो जो है उसको प्रिवेंट करता है, क्या कहते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर बोलते हैं, तो मास्ट सेल से रिलीज होने वाले सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी जितने भी
1: एजेंट्स हैं या
0: रिजेंट हैं उनको सबको रोक देता है।
1: जी।
0: तो वो ये दोनों अच्छे होते हैं लेकिन ये तभी कारगर होते हैं कि वो साइकिल उसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें लिकोट्राइन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लिकोट्राइन्स रिलीज हो रहे हैं तो लिकोट्राइन्स वाला मोंटिलुकास्ट कर देगा, रोक देगा,
1: जी
0: ठीक है। अगर जो है उसमें मास्ट सेल इन्वॉल्व हो रहा है तो मास्ट स्टेबलाइजर हो रहा है, लेकिन अगर जो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर उसमें दिया जिसमें लिकोट्राइन्स रिलीज हो रहे हैं
1: हाँ,
0: तो
1: तो
0: वो
1: फिर वो काम
0: काम
1: नहीं
0: नहीं
1: करेगा।
0: करेगा।
1: ठीक बात, तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमको किस चीज के लिए क्या यूज
0: हाँ
1: करना
0: क्या
1: है,
0: यूज
1: और
0: करना,
1: उसके लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह है आपके लिए बड़ी जरूरी है। अपने आप से कहीं से आपको मेडिकेशन नहीं करना है, ये
0: बेसिकली
1: समझना।
0: अगर सेल्फ मेडिकेशन कारगर नहीं होगी, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है ना एक्यूट अटैक तो होते ही हैं, उसके साथ साथ हमारा काम होता है कि उसको बार बार दिक्कत ना हो। बच्चे बेसिकली क्या है स्कूल जाते हैं, पढ़ाई होती है तो उसे बार बार दिक्कत होगी तो स्कूल में एबसेंट होगा बार बार, तो उसकी
1: ठीक बात।
0: पढ़ाई में सफर करेगी, तो उसको जो है प्रिवेंशन के लिए हम उसको लॉन्ग टर्म स्टीरोइड देते हैं, इनहेलर बाया मल्टीडोज इनहेलर और बाया नेबुलाइजर उसके थ्रू देते हैं।
1: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बच्चों के लिए एक बीमारी भर तो नहीं है, ये उनके लिए एक चुनौती भी है जो उनके डेली जो रोजमर्रा की लिखाई पढ़ाई है उसको भी प्रभावित करती है, उनके खेलने कूदने को उसको भी प्रभावित करती है, और जो बच्चे बड़े हैं और जो सपने देख रहे हैं उनके सपनों को भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालती ही है। अब अगर हम कहें कि

0: बच्चों का जो शारीरिक विकास है या मानसिक विकास है उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगी।
1: बिल्कुल, अगर बार बार अटैक हो रहे हैं तो उसका मेंटली स्ट्रेस रहता है बच्चे को, और पेरेंट्स को स्ट्रेस रहता है कि बार बार दिक्कत हो रही है हमारे बच्चे को, ये क्यों नहीं ठीक हो रही है, और जो है उसकी डाइट भी प्रॉपर नहीं ले पाता है, कुछ चीजें रोक दी जाती हैं उसकी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मल्टी फैक्टर होते हैं कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं
0: नहीं
1: हो
0: होती।
1: पाती है।
0: आम तौर पे देखा ये जाता है कि बच्चों को इनहेलर अगर रिकमेंड किया जाता है तो उसको लेने में वो असहज महसूस करते हैं या झिझकते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। पेरेंट्स बेसिकली बहुत ही सजग रहते हैं कि इनहेलर दिया है तो इसकी आदत न पड़ जाए, कितने दिन तक चलेगा, क्यों दिया, बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या, तो
0: तो
1: बहुत
0: ये जो
1: सारे।
0: साइकोलॉजिकल जो एक
1: हाँ,
0: बैरियर कहें या उसको कैसे किस तरह से आप
1: इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो इनहेलर बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए।

0: है क्या, तो
1: तो
0: बहुत
1: ये जो
0: सारे
1: साइकोलॉजिकल जो एक बैरियर कहें या
0: हाँ,
1: उसको कैसे किस तरह से आप
0: इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो इनहेलर बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर अटैक रोकने के लिए। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो जो स्टीरोइड हम देते हैं वो मिनिमम डोज में दिया जाता है और टारगेट पर दिया जाता है, ठीक है। सिस्टमिक इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते, लोकल साइड इफेक्ट थोड़े बहुत होते हैं। वो तो अगर किसी को रोकना है, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, तो ये चीजें अवॉइड की जाती हैं। और हमारा टारगेट होता है कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे और बच्चे को बार बार एब्सेंटिज्म ना हो और बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
1: वो
0: अच्छा
1: प्रभावित ना
0: हो।
1: हो, तो ये जो इनहेलर की आदत लग जाएगी ऐसा कोई भ्रम
0: ऐसा कोई
1: पालना
0: भ्रम होता नहीं है।
1: है।
0: बेसिकली अगर जो है उसको बार बार अस्थमा हो रहा है, क्रोनिक अस्थमा की तरफ जा रहा है, सीवियर अस्थमा है, तो इनहेलर लीजिए आप। और इनहेलर का भी डाउनग्रेड करते हैं, जैसे किसी को सीवियर अस्थमा है, जैसे ही मॉडरेट में आता है उसके बाद जो है माइल्ड एंड अप होता है, उसके बाद इंटरमिटेंट अस्थमा में आता है। जैसे ही इंटरमिटेंट अस्थमा में उसके सिम्टम आते हैं, वैसे ही हम इनहेलर को विड्रॉ कर लेते हैं और ब्रोंकोडायलेटर देते हैं।
1: जी, कार्यक्रम में इस मोड़ पर डॉक्टर साहब हम एक आपकी पसंद का गीत श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा वो गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: किशोर कुमार का कोई भी बढ़िया
1: आप
0: गीत
1: अपनी पसंद का एक गीत गुनगुनाएं और हम श्रोताओं को आपकी पसंद का वही गीत सुनवाएंगे।
0: पड़ोसिन,
1: पड़ोसन फिल्म का
0: हाँ
1: मेरे
0: गाना सुना
1: सामने
0: दे।
1: वाली खिड़की में,
0: हाँ
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, चलिए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।
2: अरे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: लेते रहिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते रहिए, इनहेलर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
1: ये बड़ा नॉर्मल सा है,
0: हाँ नॉर्मल है।
1: आपका एक जो सांस का रास्ता है वो अवरुद्ध अगर कहीं हो रहा है, उसको ठीक तरह से सांस ले सकें उसके लिए ये प्रोविजंस हैं, और
0: प्रोविजन
1: उसको लेने में मुझे लगता है कि
0: कोई
1: कोई
0: परहेज नहीं
1: संकोच होना
0: करना
1: नहीं चाहिए।
0: चाहिए। इससे जो है आपका जीवन अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, और लॉन्ग टर्म जैसे उम्र बढ़ती है तो COPD क्रोनिक लंग डिजीज होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती
1: उन
0: है,
1: स्टेजेज में आप पहुंचने
0: वो
1: से बच
0: नहीं
1: सकते
0: जाएंगे,
1: हैं,
0: आप
1: उससे आप बच सकते
0: बच
1: हैं।
0: सकते हैं, नहीं तो बुढ़ापे पे आप हांफते रहेंगे।
1: तो इसमें अगर हम देखें तो स्कूल है या परिवार है जो बच्चे के इर्द गिर्द है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
0: इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कोई बच्चा ब्रोंकियल अस्थमा का है यार, उसको बार बार रेस्पिरेटरी सांस लेने में दिक्कत होती है, या कफ है, पसली चलती है, तो ऐसे में अगर कोई बच्चा इनहेलर ले रहा है या कोई नेबुलाइजर ले रहा है तो उसका क्रिटिसिज्म ना करें,
1: हाँ,
0: उसका मजाक ना उड़ाएं, ठीक है,
1: उसको
0: ये
1: सपोर्टिव वे
0: नॉर्मल
1: में
0: है।
1: लेना चाहिए।
0: जैसे मेरी आई साइट भी हुई तो मैंने चश्मा लगाया, तो अगर मैं देखता कि नहीं मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा तो मैं कैसे पढ़ता,
1: ठीक बात
0: ठीक है, कैसे मैं डॉक्टर बनता, ठीक है। वैसे ही ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, आप ट्रीटमेंट लीजिए
1: तो उसको
0: और
1: सपोर्टिव वे
0: अपनी
1: में लेने की
0: सपोर्टिव वे
1: जरूरत
0: में
1: है, चाहे
0: लीजिए
1: वो
0: और
1: स्कूल हो चाहे
0: पॉजिटिव
1: परिवार हो।
0: पॉजिटिव वे में लीजिए,
1: जी जी
0: उसको निगेटिव ना लीजिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इस साल सरकार का जो फोकस है वो थीम जो है जाहिर करती है कि हर मरीज तक सस्ती और समान तरीके से इलाज की पहुंच संभव हो सके। हमारे भारत जैसे देश में आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को सुनिश्चित करना वो एक चुनौती है?
0: चुनौती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है ब्रोंकियल अस्थमा का। मल्टीडोज इनहेलर आते हैं, MDI, वो काफी चिप भी आते हैं, काफी महंगे भी आते हैं, लेकिन जी ये जो फार्मेसी खुली हैं प्रधानमंत्री योजना
1: जी
0: के
1: जी जी
0: अंतर्गत,
1: जन आरोग्य योजना,
0: जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फार्मेसी खुली है, तो वहाँ जो है मल्टीडोज इनहेलर होते हैं, वो काफी चीप पड़ते हैं।
1: जी
0: अगर वो इनहेलर देखा जाए तो उसमें 120 डोजेज होती हैं, तो 120 डोजेज होती हैं, अगर एक पप सुबह शाम ले रहा है तो वो 2 महीने चलेगा,
1: बिल्कुल।
0: ठीक है, अगर वो एक बार ही ले रहा है तो वो 4 महीने चलेगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ता इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है, और मिनिमम साइड इफेक्ट है, और इस बीमारी को पाले ना आप जो है सही से इलाज कराएं, अच्छे
1: इसको इसको
0: डॉक्टर से
1: इसको
0: कंसल्ट
1: अपने
0: करें।
1: दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपको एक सामान्य दिनचर्या की तरह देना है, और सामान्य जीवनचर्या का एक हिस्सा भर है जहां आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है आपको उस एक पफ को लेके।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और जैसा कि आपने बताया कि जन औषधि केंद्र जो हैं आजकल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बड़े ही मददगार हो रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन तक, ग्रामीण और दूर दराज के जो मरीज हैं उन तक उपचार पहुंचाए जाने के लिए। अब हम आते हैं कि हमारी जो आजकल की जीवन शैली है बड़ी ही व्यस्त हो गई है, इस दिनचर्या में क्या ऐसे बदलाव हम कर सकते हैं जिससे जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है या
0: इसमें
1: वो पा सकते
0: बेसिकली
1: हैं?
0: सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन, घर के आसपास बिल्कुल सफाई रहे। सेकंड आता है कि पॉल्यूशन कम से कम हो। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज करिए। तीसरा, कंस्ट्रक्शन साइट जो है कम से कम होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट
1: और
0: है तो
1: जो जो
0: प्रॉपर
1: गवर्नमेंट
0: उसका
1: नॉर्म्स होते हैं
0: नॉर्म का
1: उनको
0: पालन
1: फॉलो
0: कर
1: करना भी
0: फॉलो
1: बड़ा
0: करना
1: इम्पोर्टेंट
0: चाहिए,
1: है,
0: जे वहाँ से जिससे धूल वगैरह ना आवे।
1: क्योंकि ये जो पोल्यूशन का आपने बात किया, मुझे लगता है कि पोल्यूशन जो है हम ही हैं जो पोल्यूशन फैला रहे
0: ह्यूमन
1: हैं,
0: वेट,
1: और हम ही जो है उससे प्रभावित भी हो रहे हैं, तो वी आर द पीपल हु नीड टू थिंक हाउ टू मीन्स कन्फ्रंट विद दिस
0: अगर देखा जाए
1: प्रॉब्लम।
0: तो जो है ना वेस्टर्न कंट्री में तो वहाँ का एनवायरनमेंट इतना साफ रहता है और ऑक्सीजन इतनी अच्छी है, ठीक है, वहाँ जो है लोग बताते हैं, मतलब फील करते हैं कि वहाँ जो है ना ताजगी सी महसूस होती है। ताजगी सी महसूस सिर्फ इसलिए होती है कि जो है ना वहाँ प्लांटेशन बहुत
1: ज्यादा
0: ज्यादा
1: है।
0: है।
1: सबसे
0: अच्छा,
1: बड़ी बात है कि हमारे
0: हाँ
1: यहाँ हिंदुस्तान चूंकि 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो आप उस चीज को वहां उससे तुलना अगर करते हैं तो वो फिर ठीक बात नहीं होगी। हमको किस तरह से हमारी परिस्थितियों में बेहतर करना है, और हमारी जो एक ज्ञान परंपरा रही है जिसमें योग और प्राणायाम भी जुड़ा हुआ है, तो वो जो चीजें हैं हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण को कम कर सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और योग प्राणायाम जैसी जो
0: हाँ
1: विधाएं हैं प्राचीन परंपराएं
0: योग
1: उनका
0: का
1: सहारा
0: बहुत
1: ले सकते हैं।
0: महत्वपूर्ण रोल है।
1: जी,
0: रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कीजिए, जो बाबा रामदेव जो प्राणायाम बताते हैं जिसमें जो है सांस लेकर फेफड़े को फुलाते हैं, तो इससे वाइटल कैपेसिटी हमारे लंग की बढ़ती है। और एक्सरसाइज में देखा जाए तो स्विमिंग

0: अच्छा डॉक्टर साहब, वापस हम आते हैं। अस्थमा किसी बच्चे को है और घर परिवार वाले, जाहिर सी बात है कि माता पिता हैं तो चिंतित तो होते ही हैं। क्या अस्थमेटिक किसी बच्चे को सामान्य तौर पे खेल कूद या उसकी जो ग्रोथ है या उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, सामान्य जो जीवन है, वो क्या नहीं जारी रख सकता है?
1: नहीं,
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: कुछ है
1: नहीं
0: क्या?
1: है। पूरी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं और सामान्य ही रहना चाहिए। बेसिकली आप प्रिवेंटर

0: स्विमिंग में बहुत अच्छी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज मानी गई है। तो
1: जी
0: जिनको बार बार रेस्पिरेटरी दिक्कत
1: दिक्कतें
0: होती
1: होती
0: है,
1: हैं।
0: ब्रोंकियल अस्थमा है, क्रोनिक लंग डिजीज है, तो ऐसे लोगों को जो है प्राणायाम जरूर करना चाहिए, और ये जो है क्या कहते हैं स्विमिंग वाला पार्ट भी करना चाहिए, जिससे जो है फेफड़े थोड़े से मजबूत रहें। और दूसरा, हम लोगों को अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन के चक्कर में जो है ना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिप्लांटेशन हो रहा है। मैं देखता हूँ कि जो है किसी शहर में जब भी कोई कॉलोनी बनती है, बहुत सारे पेड़ उस खेत में खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, सबसे पहले पेड़ पर आरी चला दी जाती
1: जी
0: है।
1: जी
0: ये गलत है,
1: नहीं,
0: पेड़ों को
1: गलत
0: बचा।
1: है। और उसके लिए
0: हाँ
1: व्यक्तिगत प्रयास के
0: हाँ
1: तौर पे एक यही कर सकते हैं कि हम
0: हाँ
1: ज्यादा से ज्यादा
0: हाँ
1: व्यक्तिगत तौर पे भी पेड़ लगाने की कोशिश करें,
0: हाँ
1: सिर्फ सरकारी प्रयासों के भरोसे रहना वो शायद हमारी भूल हो।
0: इंडिविजुअल को,
1: प्रयास
0: सभी
1: जो है
0: को
1: करने
0: अपने
1: पड़ेंगे।
0: प्रयास करने चाहिए।
1: एक
0: और
1: पेड़ माँ के नाम, एक प्रधानमंत्री जी का हमारे
0: बिल्कुल
1: यहाँ एक
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसमें।
0: हाँ बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, अब एक सवाल और लेना चाहूंगा कि अस्थमाटिक अटैक किसी को अगर आता है तो इमीडिएटली क्या करने की जरूरत है?
0: जैसे किसी को ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक आया है, तो ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक अगर सीवियर है, अस्थमेटिकस है, स्टेटस अस्थमेटिकस बोलते हैं, उसमें तो आपको तुरंत इमरजेंसी जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इनहेल्ड स्टीरॉयड है उस समय, इनहेलर है या सीरप है, तो वो घर पर जरूर दे दीजिए रास्ते में, जिससे जो है वहां अस्पताल तक
1: पहुंचने
0: पहुंच
1: में
0: सहायता मिले, ठीक है। अब जो है जब अस्पताल में पहुंच जाता है, तो सबसे पहले जो है ना एयरवे को हम रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स हो जाएगा तो उसको सांस लेने में आराम मिल जाएगा। फर्स्ट ब्रोंकोडायलेटर और एड्रिनलिन देते हैं अगर सीवियर अटैक है तो, जिससे जो है ना उसका इम्पैक्ट ज्यादा आए, ठीक है। और उसके बाद जो है हम प्रिवेंटर देते हैं, स्टीरॉयड शुरू करते हैं।
1: जी, तो दोस्तों, अस्थमा जो है एक चुनौती तो ज़रूर है, लेकिन सही जानकारी और सही इलाज और समय पर देखभाल अगर हम कर लें तो इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। तो हम सब मिलके आज ये संकल्प लें कि सही इलाज हर मरीज तक पहुंचे और हर सांस सुरक्षित रह सके। डॉक्टर नीरज यादव जी, आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ हमारे स्टूडियो आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: श्रोताओं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने ली कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में। आज आपने सुनी विश्व अस्थमा दिवस पर विशेष भेंटवार्ता के अंतर्गत बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज यादव से अनिंद्र सिंह की बातचीत। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आप सुनेंगे देशभक्ति परक फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में आइए सुनते हैं जमीन फिल्म से ये गीत के और शान की आवाजों में। समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

0: श्रोताओं, 23 मार्च 1931 शहीद फिल्म से ये गीत आपने सुना, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों के स्वर में। प्रेम धवन की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था आनंद राज आनंद ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में मणि कर्णिका फिल्म का गीत शंकर महादेवन के स्वर में।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

श्रोताओं, रंगदेव बसंती फिल्म से ये गीत आपने सुना दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाजों में। प्रसून जोशी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था A.R. रहमान ने। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में समीर का गीत। शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी और साथियों की आवाज में फिल्म 10 से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में 10 फिल्म का ये गीत आपने सुना, शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी और साथियों की आवाज में। बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, एक बार फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का और सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत दीवाना फिल्म से। अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में कभी खुशी कभी गम फिल्म से ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी संदेश सांडिल्य ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर

0: से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
0: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ है 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी

0: और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: दो नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से दो में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकेंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम में सरकार

0: सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी नीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 21 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनएसई ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय

0: क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी, साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली सातवें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की, इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Centre approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to 2 more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured 3 internationals, calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. And in cricket, India retain its top position in ICC Men's T20 rankings. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
2: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of 3 components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores.
1: The scheme aims to develop high-yielding variety seeds that are resistant to diseases and pests while promoting the large-scale adoption of modern crop production technologies. The scheme is expected to benefit around 32 lakh cotton farmers and boost cotton production to 498 lakh bales by 2030-31. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. The minister shared that the scheme aims to provide credit guarantees.

0: The cameras were switched off during counting was categorically denied, with officials confirming that the cameras remained operational throughout. Earlier, speaking to reporters in Kolkata, Ms. Banerjee refused to step down from the post of Chief Minister, alleging that the voting process was rigged. BJP has criticized Ms. Mamata Banerjee's statement. BJP leader Bimal Shankar Nandi, while speaking to Akashvani, said that Mamata Banerjee will not succeed in creating stalemate and making a mockery of democracy. US President Donald Trump has congratulated Prime Minister Narendra Modi on what the White House described as a historic and decisive election victory in West Bengal, where the BJP has secured a breakthrough win. India has retained its position at the top of the ICC Men's T20 rankings, showcasing their dominance in the cricketing world. India had created history by becoming the first team to successfully defend their T20 World Cup title and also win it for a record-extending third time in March. With this achievement, India continues to hold the top position in the rankings with 275 rating points. England are second, while Australia are third. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to two more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugar cane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured three internationals. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. And in cricket, India retain its top position in ICC Men's T20 rankings. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। मरकज ने कपास की पैदावारियत के मिशन के लिए 5,600 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी है। मरकज ने कारोबार को मदद देने के तनाजुर में मुख्तसर मुद्दती नकद रकूमात की फराहमी के सिलसिले में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है। काबीना ने गुजरात में सेमी कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के दो मजीद यूनिटों की मंजूरी दी है। उसने 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने की मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपये फी क्विंटल की भी मंजूरी दी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में 4 का इजाफा करके 37 कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा पर हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय बाशिंदे जख्मी हुए हैं। उन्होंने बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है ताकि पूरे मगरबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को बहाल किया जा सके। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और क्रिकेट में भारत ने ICC मर्दों की T20 रैंकिंग में अपने पहले मकाम को बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कपास की पैदावारियत के मिशन कपास क्रांति को 5,660 करोड़ रुपए की रकम के साथ मंजूरी दी है, ताकि भारत के कपास के सेक्टर में राह पा जाने वाली रुकावटों, तरक्की में कमी और मेयार से मुतालिक तशवीश को दूर किया जा सके। नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि ये मिशन हुकूमत के 5F विजन से मुताबिकत रखता है।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जैसे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: वजीर मौसूफ ने कहा कि इसका मकसद ज्यादा पैदावार वाले मुतनव्वे बीजों को तैयार करना है जो बीमारियों और कीड़ों से मजाहिमत कर सकते हों। साथ ही इसके तहत फसल की पैदावार से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी के वसी पैमाने पर इख्तियार करने पर जोर दिया जाएगा। इन कोशिशों पर रियासती सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों और रियासती जरई यूनिवर्सिटियों के जरिए अमल किया जाएगा। मरकजी काबीना ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूर

0: दी है। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस स्कीम का मकसद क्रेडिट गारंटी तआवुन फराहम करना है ताकि कारोबारी इदारे मगरबी एशिया के बहरान के सबब पैदा हो जाने वाली मुख्तसर मुद्दती नकद रकम की फराहमी की कमी को पूरा कर सकें। इस स्कीम के तहत MSMEs को 100% क्रेडिट गारंटी फराहम की जाएगी, जबकि गैर MSMEs और एयरलाइन सेक्टर को 90% गारंटी फराहम की जाएगी। काबीना ने 2026-27 के गन्ने के सीजन के लिए गन्ने की एक मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपये फी क्विंटल की भी मंजूरी दी है, जो 10.25% की बुनियादी रिकवरी शरह पर मबनी है। जनाब वैष्णु ने बताया कि इस फैसले से गन्ने के तकरीबन 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जबकि चीनी की मिलों और इससे मुतालिक दीगर सरगर्मियों से वाबस्ता तकरीबन 5 लाख कारकुनों को भी फायदा होगा। मरकजी काबीना ने भारत सेमी कंडक्टर मिशन के तहत 2 मजीद सेमी कंडक्टर प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है, जिसमें मुल्क का पहला कमर्शल मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले प्रोजेक्ट शामिल है, जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इसके साथ सेमी कंडक्टर की पैकिंग की सहूलत भी शामिल है। जनाब वैष्णु ने बताया कि मंजूर शुदा तजावीज के तहत तकरीबन 3,936 करोड़ रुपए की मजमूई सरमायाकारी के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट कायम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन प्रोजेक्टों से तवक्को है कि तकरीबन 2,230 तरबियत याफ्ता पेशेवर अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मरकजी काबीना ने आज पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद के तरमीमी बिल 2026 पेश करने की तजवीज को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णु ने कहा कि इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद एक्ट 1956 में तरमीम की जाएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर शुदा तादाद में 4 का इजाफा किया जा सके। इस तरमीम के बाद भारत के चीफ जस्टिस के अलावा जजों की तादाद मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जजों की तादाद में इजाफे से सुप्रीम कोर्ट ज्यादा मौसर और बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा, जिससे मुकदमात के जल्द फैसले और फौरी इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा में किए गए हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिनमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा है कि शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि सभी मामलात बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए पुरअमन तरीके से हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने इस जरूरत को उजागर किया कि आबनाए हुरमुज से बिला रुकावट और महफूज जहाजों का गुजरना इलाकाई अमन इस्तेहकाम और आलमी सतह पर तवानाई की फराहमी के लिए जरूरी है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में असेंबली इंतखाबात के नतीज के ऐलान के बाद हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत के बाद रियासत में नई हुकूमत की तश्कील और हलफबरदारी की तकरीब के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तवक्को है कि काबीना के नए अराकीन इस माह की 9 तारीख को हलफ लेंगे, जो गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। हलफबरदारी की तकरीब में उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखला अमित शाह शरीक होंगे। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बने सी जोसेफ विजय की तमिलागा वेटरी कजगम टीवी के रियासत में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है जिसने 108 सीटें जीती हैं। पहली मरतबा इंतखाबात में पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद टीवीके के 9 मुंतखब मेंबरान असेंबली ने चेन्नई के करीब पनयूर में पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज पार्टी की मीटिंग में जनाब विजय को बाकायदा अपना लीडर मुंतखब किया। इधर सुबुकदोश होने वाले वजीर आला एम के स्टालिन ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। केरलम में कांग्रेस

0: शिरकत की। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज कहा है कि तरक्याती इश्तराक भारत और जमायका के दरमियान शराकत दारी का एक अहम सुतून है। डॉक्टर जयशंकर जमायका की वजीर खारजा कामिना जॉनसन स्मिथ और दीगर काबीना अरकान के साथ अपनी मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। वजीर खारजा ने कहा कि ये बातचीत जामे और ठोस रही, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया गया और तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के नए मौकों की निशानदही की गई। रोमानिया के वजीर आजम एले बोलोजान की हुकूमत आज पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक के वोट में शिकस्त के बाद गिर गई है, जिसके सबब मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। सेंसेक्स में आज 252 पॉइंट की कमी आई और ये 77,018 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 87 पॉइंट के कमी के साथ 24,033 पर बंद हुआ। भारत ने मर्दों की आईसीसी टी20 दर्जाबंदी में एक मरतबा फिर अपनी सरकर्दा पोजीशन हासिल कर ली है, जिससे क्रिकेट में उसकी शानदार कारकर्दगी का इजहार होता है। भारतीय टीम टी20 आलमी कप के खिताब का कामयाबी के साथ दिफा करने वाली पहली टीम बनी और उसने मार्च में रिकॉर्ड तीसरी मरतबा ये खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के लिए 156 रन का निशाना दिया है। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने कपास की पैदावारियत के मिशन के लिए 5,600 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी है। मरकज ने कारोबार को मदद देने के तनाजुर में मुख्तसर मुद्दती नकद रकूमात की फराहमी के सिलसिले में एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है। काबीना ने गुजरात में सेमी कंडक्टर की मैनुफैक्चरिंग के दो मजीद यूनिटों की मंजूरी दी है। उसने 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने की मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपए फी क्विंटल की भी मंजूरी दी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में 4 का इजाफा करके 37 कर दिया है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मनी टॉक। Good evening and welcome to Money Talk. My name is Rajesh Lake. India has clocked a record-breaking GST collection this year, consistently crossing the 1.7 lakh crore mark in recent months. Is this a sign of booming economy, better compliance, or simply inflation at play? To decode the story behind the numbers, we are joined in by CA Ranjit Kumar Agarwal, former president ICAI, an economic analyst and tax expert Yogendra Kapoor. Warm welcome, gentlemen.
2: Good evening.
3: Thank you. Good evening.
1: Mr. Agarwal, if you could tell us about India seeing the record GST collections, what are the top three drivers behind this surge?
3: In last decade or 12-13 years, the biggest two reform India could witness was one was GST and one was IBC. And the GST has made the informal economy to formal. That's why whatever strength in the Indian economy, in the cash economy, has started coming on the paper. And we can see the huge surge in this GST collection. Although GST has also become an economic barometer like Sensex or power consumption or retail freight or PMI or digital transaction like this. But if you see the last year, same month collection, it comes to 223,000 crore. And this month, it's at 2,43,000 crore. But between the last year, April to this April, the collection was below 2 lakh. In the month of April, May, June, July, August, it was 1.73, 85, 82. So it's not like that this month has given us such a huge surge because of some issue. Of course, there are some fundamental issue in this huge surge. But if you see the year-end compliance of the month of March, the annual settlement, the compliance payment, and the SSC has become more alert and vigilant. That's why in the month of April, the collection has surged compared to rest of the month. But having said that, of course, India has a robust economy, and it's a huge in household consumption, the kind of electronics and mobile phone and drone and defense, which we are producing in India. Because of this oil surge also, the import which we are forced to buy, it also has contributed in the huge surge in this month. But that does not mean that continuously we are going to see, of course, the India economy growth rising, there's no doubt about it. But at the same time, because of two, three factors, the annual compliance and year-end settlement, the huge consumption we are having, the GST robustness in the form of e-invoicing, the matching concept and the UPI payment system which we have, all the

0: मंथन।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है और आज के इस नए अंक में आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, विश्व में एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभरता भारत। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परीक्षित निर्भय जी जुड़ चुके हैं। परीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी।
1: परीक्षित जी, जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल या मेडिकल टूरिज्म है, इसके पूरी दुनिया में बढ़ने के ट्रेंड को देख सकते हैं कि पूरा जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का एक बाजार है, वो आंकड़ा कहता है कि 2022 में जो 115 अरब डॉलर था, वो 2030 तक संभावना है कि 270 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। और भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत भी एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के तौर पर उभर रहा है लगातार। और एक आंकड़ा ये है कि 2025 में भारत का मेडिकल टूरिज्म का पूरा अनुमान है वो लगभग 8 अरब डॉलर के आसपास था, जो उम्मीद है कि 2030 तक 16 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच सकता है। तो आप कैसे देखते हैं भारत की तरक्की को और किस तरह से भारत एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभर रहा है?
2: जो आंकड़ों की बात है, आंकड़े तो बहुत स्पष्ट है और जिस तरीके से हम अपना इतिहास देखेंगे और पिछला कुछ दौर देखेंगे, उसका कंपेयर करेंगे, तो ये हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि ये आंकड़ा हम तय समय में हासिल कर पाएंगे।
1: जी,
2: चिकित्सा पर्यटन की बात है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूं।
1: बिल्कुल।
2: दरअसल भारत का जो चिकित्सा पर्यटन का जो इतिहास है, वो हम तीन भाग में देखते हैं। पहला भाग है साल जो 2000 है उससे पहले का, उसके बाद का जो इतिहास आता है वो 2000 से 2014 के बाद का आता है, और 2014 के बाद का एक अलग इतिहास रहा है हमारे देश का। चिकित्सा का इतिहास चूंकि हमारा सदियों पुराना है, आयुर्वेदा हो गया, योग हो गया, हम इसमें हमेशा से आगे रहे हैं। पूरी दुनिया को हमने ही सर्जरी के लिए कल्पना दी, सर्जरी का आचार्य सुश्रुत हमारे ही हैं। एक जब साल दर साल हम इसकी स्थिति देखते हैं तो 1960 से शुरू होता है, मुझे याद है ये बात साल 2000 के आसपास की है, 2001-2002 के आसपास। तब तक चिकित्सा पर्यटन अपनी एक गति से चल रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा था, बहुत ज्यादा ऐसी गति नहीं थी, चल रहा था, लोग आते थे, बहुत लिमिटेड आते थे। मुझे याद है 1990 के बाद भारत में सबसे जल्दी से अस्पताल बनना शुरू हुए, उससे पहले इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने इंडिया में नहीं थे। सबसे बड़ा दिल्ली में अपोलो बना था 99 के आसपास, उसके बाद ये चीजें बढ़ी। तो 2002 के आसपास कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने मिलकर और भारतीय, उस समय ये था भारतीय उद्योग परिसंघ, इन लोगों ने मिलकर उस समय एक

मुद्दा उठाना, पॉलिसी वाइज गवर्नमेंट से अपील करना शुरू किया कि भाई चिकित्सा पर्यटन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब किन्हीं कारणों के चलते सरकार ने उस पर संज्ञान तो लिया, पर वो जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं हुई। अब बात आती है 2014 की। धीरे धीरे जब वक्त 2014 का आया, गवर्नमेंट चेंज हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इन्होंने सबसे पहले सरकार बनते ही सबसे पहले क्या किया कि हेल्थ के साथ साथ आयुष को भी जोड़ा, एक आयुष मंत्रालय शुरू किया। आयुष मंत्रालय शुरू करते करते इनका एक दो साल बाद ही इन्होंने चिकित्सा पर्यटन पे काम करना स्टार्ट किया। चिकित्सा

0: मंत्रालय शुरू किया। आयुष मंत्रालय शुरू करते करते इनका एक दो साल बाद ही इन्होंने चिकित्सा पर्यटन पे काम करना स्टार्ट किया। चिकित्सा पर्यटन पे काम इस कदर इनका शुरू हुआ कि आज आप देखिए कि भारत जो है वर्तमान में टॉप 10 शीर्ष जो देश हैं चिकित्सा पर्यटन के, उनमें से एक है। इसी तरीके से आंकड़े जो आपने बताए, इसमें कुछ आंकड़े मैं भी अगर जोड़ू आपको बताऊं, तो दूसरा आंकड़ा ये कहता है कि दुनिया के शीर्ष 20 वेलनेस जो पर्यटन बाजारों में भारत 12वें स्थान पर है। एशिया प्रांत क्षेत्र में बात करें तो टॉप 10 शीर्ष 10 स्वास्थ्य देखभाल स्थलों में से 5वें स्थान पर भारत है। भारत की आज स्थिति ये है कि तकरीबन तकरीबन 80 से ज्यादा देशों के मरीज हर साल आ रहे हैं और उपचार करा रहे हैं यहाँ पर। भारत के लगभग लगभग जितने भी शीर्ष प्राइवेट अस्पताल की जो चयन है, इन सबके लगभग लगभग सभी जगह पे इंटरनेशनल पेशेंट को लेकर रिलेशनशिप मैनेजर भी अपॉइंटेड है। हम दिल्ली में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जहां पर ये लोग कई तरीके की फैसिलिटी हैं, इंश्योरेंस से लेके और सारी चीजें हैं। सरकार भी कई सारी सुविधाएं देती है, जैसे आपको पता हो हाल फिलहाल में कुछ ही समय पहले आयुष वीजा हुआ था, ई मेडिकल वीजा हो गया, जो इनका वीजा का प्रोसेस या बाकी जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होती है पेशेंट की, वो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल जो है वो भी काफी आसान किया है भारत सरकार ने। साथ के साथ में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें और उनका इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको स्वीकार्यता बने, उसके लिए भी सरकार ने गुणवत्ता और मानकीकरण पे काम किया।
1: बिल्कुल,
0: आज इसका जो परिणाम है वो ये कि अधिकांश हॉस्पिटल के पास में NABH यानी इसको बोलते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, इनका प्रमाण पत्र हासिल है। ये प्रमाण ये बताता है कि ये अस्पताल ए ग्रेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था से लेकर उपचार तक सबसे बेहतर ये व्यवस्था है।
1: परीक्षित जी, दो बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं मेडिकल टूरिज्म में, एक तो होता है डायग्नोस एडवांस सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और दूसरा है जैसा कि आपने बात की वेलनेस, जिसमें इन दोनों क्षेत्रों में भारत बड़ी तेजी से काम कर रहा है, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो जिसमें जटिल से जटिल इलाज लेने की ओर लोग भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसा कि आपने भी बताया भारत लगातार आयुष को बढ़ावा दे रही है, जिसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जिसमें कि होम्योपैथी, यूनानी पद्धति, अलग अलग पद्धतियां शामिल हैं, तो हर स्तर पर मेडिकल और वेलनेस पर भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। तो कैसे आप देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में प्रगति से पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हो रहा है?
0: बिल्कुल हो रहा है, उसकी वजह ये भी है। देखिए, स्वास्थ्य को या चिकित्सा को आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से नहीं देख सकते, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें चिकित्सा उपकरण भी आते हैं, इसमें इलाज भी आता है, इसमें जांच भी आती है, इसमें इलाज के भी कई सारी विधियां आती हैं। और बात यहाँ सिर्फ एलोपैथी या आयुर्वेदा की नहीं है, आप ये देखेंगे कि भारत सरकार ने होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, आयुष को मतलब इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत अप्रोच के साथ में जो पहल की है। आज हम किसी भी एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ एलोपैथी नहीं, हमको आयुष का भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है, हमको हर तरीके की पैथी है एक ही छत के नीचे। चूज हमें करना है कि हमको किस पैथी में जाके अपना उपचार करना है। ये अप्रोच बहुत ही अच्छी अप्रोच है और मुझे नहीं लगता, मैं इतनी कंट्री में मैंने देखा है कि इस तरीके की अप्रोच दूसरे देशों में है। दूसरी बात, सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक बहुत अच्छी पॉलिसी चलाई थी चिकित्सा पर्यटन को लेकर, मुझे बहुत वो पसंद आई। उसका था हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया, मतलब भारत से मरहम लीजिए और भारत में मरहम लीजिए, दोनों बातें। तो चिकित्सा पर्यटन के नाते आप भारत में आइए, यहाँ उपचार कराइए, अच्छा गुणवत्ता वाला उपचार लीजिए, और भारत से मरहम का मतलब भारत के जो स्टाफ है, भारत का जो डॉक्टर है, भारत के जो नर्स हैं, उनके देशों में अपॉइंट करने के लिए, तैनात करने के लिए उन देशों से वो करा। तो ये योजना जो है कि मतलब सिर्फ हम अपने घर में ही नहीं दे रहे हैं, हम आपके घर में आके भी आपको इलाज देने की व्यवस्था कर रहे हैं,
1: निश्चित तौर पर। और भारत में जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बढ़ रहा है, उसका एक और अहम कारण ये माना जाता है कि भारत में चिकित्सा को लेकर एक बहुत पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसा कि आपने भी अस्पतालों, डॉक्टरों का जिक्र किया, तो आंकड़ा कहता है कि भारत में लगभग 70,000 के आसपास अच्छे अस्पताल हैं, जिसमें कि लगभग 43,000 के आसपास निजी अस्पताल और 25,000 से 26,000 के आसपास सरकारी अच्छे अस्पताल हैं, और डॉक्टरों की संख्या भी 12,00,000 से ऊपर है जो प्रशिक्षित और सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। इसके अलावा भारत में जो चिकित्सा शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन है, उसका भी एक बहुत भरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कैसे भारत का जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इकोसिस्टम है, वो भारत को एक दुनिया में बड़े मेडिकल हब के रूप में बनाता है, और आगे आने वाले समय में इसके और बढ़ने की संभावना है, जैसा कि सरकार भी मेडिकल एजुकेशन पर ध्यान दे रही है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, तो कैसे आने वाले समय में इस इकोसिस्टम की और मजबूत होने से जो भारत का एक मेडिकल हब बनना है, मेडिकल टूरिज्म बनने की दिशा में एक कदम है, वो और आगे बढ़ेगा?
0: जी, देखिए, अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो आजाद भारत

0: भारत का इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमें आज आजाद हुए 70-75 साल हुए हैं, और हमने जो अप्रोच ली है ये पिछले 10-12 साल की अप्रोच है। और इस 10-12 साल की अप्रोच में हम देखिए कहाँ आके खड़े हो गए, टॉप 10 शीर्ष 10 देशों में हम शामिल हो गए। इसी अप्रोच के साथ अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो ये पूरा भरोसा है कि हम पहले या दूसरे स्थान पर होंगे। उसकी वजह हमारे पास में क्वालिटी है, हमारे पास में क्वांटिटी है यानी संख्या है डॉक्टरों की, हमारे पास में इंस्टीट्यूट है। देश में जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 750 के आसपास मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट और सरकारी, जो कि ये शायद दूसरा या तीसरा स्थान आता है पूरे दुनिया में भारत का। जो हम डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, सबसे ज्यादा MBBS सीटें हमारे पास में हैं, और आयुष और इसको लेके भी हमारे पास में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो कहने का मतलब हम स्टाफ में भी ध्यान दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, हम कंटिन्यू वो पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं जिससे बाहर के मरीज जो यहाँ आ रहे हैं उनको सहूलियत हो। जैसे कई देशों में अभी देखते हैं आप कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वहां कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, है ना। ईरान और इराक और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री ऐसी हैं यहाँ के लिए हमने हमेशा ही अपना दरवाजा खोल के रखा है। और जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात करें 2014 के बाद से, तो आप यकीन नहीं मानेंगे सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक सर्जरी हुई है, जो
1: जी
0: मेजर सर्जरी हुई है, जो मतलब करिश्माई सर्जरी बोलेंगे, वो सबसे ज्यादा इराक और ईरान और अफगानिस्तान के लोगों की हुई है। किसी मैंने देखा था, ये दिल्ली में महसूस भी किया है कि कोई वहां पर जब जंग हुई, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, जब वो लोग आए और उनको हमने वो सब चीजें दी हैं, नए ऑर्गन डेवलप करके उनको दिए हैं, तो वो काबिले तारीफ है। और वैसी सर्जरियां शायद कभी हुई भी नहीं थी वर्ल्ड में, तो हमारे पास वो क्षमताएं हैं।
1: और अभी अगर हम इस बार के बजट की ही बात करें परीक्षित जी, तो भारत सरकार ने भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से या भारत में जो चिकित्सा का पूरा इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इसमें सबसे बड़ी एक घोषणा तो ये थी कि भारत में 5 बड़े रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे जिसमें कि रिहेबिलिटेशन से लेकर रिसर्च और इलाज तक की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे ही बड़े अखिल भारतीय आयुर्वेद केंद्र की भी शुरुआत करने की घोषणा है, और साथ ही सरकार ने जो अलग दूसरे देशों से आने वाले नागरिक हैं उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाने की जो घोषणाएं की हैं, जो कार्यक्रम चलाए हैं और जो भी तमाम प्रयास हैं, उनसे कैसे आने वाले समय में और भी ये मेडिकल टूरिज्म का एक पूरा ढांचा है और मजबूत हो रहा है।
0: बाहर से जो पेशेंट आ रहा है वो इंडिया आ रहा है, तो उसको हमें एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि उसके लिए सुरक्षित, गुणवत्ता वाला, आसान भरा और सस्ता, ये एक मैसेज देने की सरकार कोशिश की। और सरकार सक्सेस भी रही, सफल भी हुई है इसमें। जो बजट में जिस तरीके की उन्होंने घोषणाएं की हैं, इससे बहुत फायदा भी मिला है। इनका डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि more than 40% इंक्रीज हुआ है इनका चिकित्सा पर्यटन का जो डेटा है, और मतलब 40% से ज्यादा इजाफा हुआ है बाहर से आने वाले मरीजों के संख्या में। तो जब सहूलियत होती है तो हर बंदा उसको अप्रोच को स्वीकार करता है। सरकार भी उसी दिशा में जा रही है और बहुत अच्छी दिशा है ये। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इसके परिणाम बहुत जल्दी, मतलब 2030 तो मैं बहुत ज्यादा आगे बता रहा हूँ, ये 2027-28 तक ही आप देखिएगा कि हमारा जो डाटा होगा, हमारे पास जो पेशेंट की संख्या होगी, हमारे पास जो सुविधाएं होंगी, उनमें बहुत तेजी से बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने एक और अच्छा काम किया है कि अलग अलग कंट्री में अपने सेंटर भी खोले हैं, चाहे वो सरकार के जरिए हो या प्राइवेट हॉस्पिटल खुद डायरेक्ट वहां सेंटर खोल रहे हैं। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है कि हम आपके घर पहुंच गए, वहां वो अप्रोच कर रहे हैं, वहां वो बता रहे हैं देखिए आप भारत आइए तो ये तरीके का आपको इलाज मिलेगा, इतना सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में अमेरिका या बाकी कंट्री का तुलना करेंगे तो भारत में इलाज वाकई सस्ता है। डॉलर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो भारत का इलाज बहुत सस्ता है। आज भी भारत में 3 से 4 लाख रुपए में हार्ट की सर्जरी हो रही है, जो कि अमेरिका में उसी हार्ट की सर्जरी का, मुझे अच्छे से याद है कि इसके लिए 12 से 15 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता है इंडियन रुपीस के हिसाब से। तो उस हिसाब से उन पेशेंट के लिए भारत सबसे सस्ता और किफायती है।
1: और इसका एक आर्थिक पक्ष भी अगर हम परीक्षित जी देखें, तो जब एक पर्यटक आता है तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो ऐसे ही अगर मेडिकल टूरिज्म
0: बिल्कुल
1: भारत में बढ़ता है तो उससे निश्चित तौर पर भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी। और पर्यटन मंत्रालय का आंकड़ा भी है 2024 का कि मेडिकल टूरिज्म की भारत में जो जीडीपी में योगदान है वो 5% से ज्यादा रहा है। तो कैसे आगे आने वाले समय में आर्थिक तौर पर भी भारत का बढ़ता हुआ मेडिकल टूरिज्म फायदा पहुंचाएगा?
0: देखिए, इस आंकड़े को अगर सजीव तरीके से देखना है तो खास तौर पे दिल्ली NCR की बात करें तो जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे मैं आपको गुड़गांव का बता सकता हूँ, दिल्ली का बता सकता हूँ कि गुड़गांव में अगर मेदांता अस्पताल है तो उसके आसपास जब भी आप जाएंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे तो आपको पता चलेगा कई तरीके के पीजी, कई तरीके के जो है रूम रेंट पे दिए जा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: किराए पे दिए
1: बिल्कुल
0: जा रहे हैं, कई तरीके के फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, और वहां पे इंटरनेशनल पेशेंट रहते हैं,
1: रहते हैं
0: बाकायदा सेफली है, सुरक्षा महसूस करते हैं। प्लस वहां जो आसपास के जो दुकानदार हैं उनका खाना

0: पीना, वो सारी चीजें जो वो लोग आते जाते हैं, ऑटो वगैरह। तो मतलब कुल मिला के अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो जीडीपी को बहुत तेजी से फायदा हो रहा है।
1: इसीलिए सरकार ने हील इन इंडिया नाम से भी पूरा मिशन चलाया हुआ है कि भारत ग्लोबल हीलिंग हब बने, यानी लोग यहाँ आकर न सिर्फ अपना इलाज करवाएं बल्कि अपने शरीर को तरोताजा करके मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ करके लौटें।
0: बिल्कुल,
1: तो निश्चित तौर पर जैसा कि हमने इस चर्चा में बात की भारत के बढ़ते मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की, तो हमें अपेक्षा है कि आने वाले समय में जिस गति से हम सरकारी योजनाओं और सरकार के समर्थन से भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसमें और आगे आने वाले समय में एक बहुत सकारात्मक बढ़ोतरी होगी। और अभी जैसा कि हमने कार्यक्रम में चर्चा भी की कि भारत 10वें पायदान पर आता है मेडिकल टूरिज्म में, जो आगे आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म के पायदान में और ऊपर आएगा और भारत इस दिशा में और अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, बहुत सारी जरूरी जानकारियां भी साझा की।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हमें अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
2: मंथन।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण। खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को ब्रजेंद्र नारायण का नमस्कार। श्रोताओं, इन दिनों भारतीय खेल जगत में आईपीएल की धूम मची हुई है। क्या युवा, क्या बच्चे और बुजुर्ग सभी फटाफट क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं और चौकों छक्कों पर जमकर तालियां बजा रहे हैं। हो भी क्यों ना, इस समय विराट कोहली, रिंकू सिंह और वैभव सूर्यवंशी लोकप्रियता के चरम पर हैं। कई युवा उन्हें अपना आइडियल मान बैठे हैं और उनकी तरह का ही क्रिकेट खेलने की इच्छा और संकल्प कर बैठे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह के प्रमुख खेल समाचारों के विषय में, जिसे लेकर आ रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अशोक सिंह।
2: जी अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेल दर्पण में। इस सप्ताह की जो मुख्य खेल घटनाएं रही हैं, खेल हलचलें रही हैं पूरे विश्व की, विशेष रूप से भारतवर्ष की, उनके विषय में आप क्या कहेंगे?
3: हम शुरुआत सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट से ही करते हैं। क्रिकेट अब जो ट्रेडिशनल देश है जहाँ पहले से ही खेला जाता रहा है, वहां से यूरोप में भी तेजी से फैल रहा है। हाल ही में यूरोपियन T20 लीग में बड़े खिलाड़ियों की एंट्री ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में क्रिकेट नए बाजारों में और भी मजबूत होगा। फुटबॉल जगत में इस सप्ताह, या ये कहें पिछले सप्ताह, कई बड़े प्रशासनिक फैसले चर्चा में रहे। क्लबों पर वित्तीय नियमों के उल्लंघन के चलते कार्रवाई हुई, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ खिलाड़ियों पर अनुशासनात्मक प्रतिबंध भी लगाए गए। यूरोपियन फुटबॉल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर भी बड़ा बदलाव सामने आया। पिछले कुछ समय से फुटबॉल के दर्शकों का जो तरीका चला रहा है, उसमें कुछ बदलाव के संकेत भी मिले। वहीं वर्ल्ड स्कूल स्नूकर चैंपियनशिप में सेमीफाइनल मुकाबलों में बेहद रोमांचक मुकाबले देखे गए, जहां अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर हुई। इंडियन प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो पिछले सप्ताह कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। कुछ टीमों ने बड़े स्कोर खड़े किए, वहीं कुछ टीमों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। खिलाड़ियों की फॉर्म पर लगातार चर्चा रही। प्लेऑफ की दौड़ और भी अब रोमांचक हो गई है। आईपीएल का बीता सप्ताह पूरी तरह से हाई स्कोरिंग मैचों, आखिरी ओवर के रोमांच और युवा खिलाड़ियों के धमाकेदार प्रदर्शन के नाम रहा। टूर्नामेंट अब एक ऐसे मोड पर पहुंच गया है जहां हर टीम प्लेऑफ

0: में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कई मुकाबलों में 200 प्लस स्कोर आम बात बन गया। बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। वहीं कई मैच आखिरी गेंद तक गए जिसमें दर्शकों का रोमांच चरम तक पहुंचा। सबसे ज्यादा चर्चा में रहे विराट कोहली, जिन्होंने बढ़ती उम्र के बावजूद लगातार शानदार पारियां खेलकर अपनी टीम को मजबूती प्रदान की। उनकी क्लास और अनुभव का बेहतरीन मेल देखने को मिला। युवा खिलाड़ियों की बात की जाए तो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया। पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल देना इन दोनों बल्लेबाजियों की खासियत बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश के रिंकू सिंह ने फिनिशर भूमिका में फिर शानदार अपना रोल साबित किया। आखिरी ओवर में उनके शॉट्स ने कई मैचों का नतीजा बदला। वहीं विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुवन ने विकेट के पीछे शानदार प्रदर्शन कर और बल्लेबाजी से भी अपने को साबित कर एक बार फिर स्थापित किया। इस सप्ताह कई मुकाबले ऐसे रहे जहां जीत हार का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। 220 प्लस का लक्ष्य सफलतापूर्वक किया गया। कुछ मैचों में आखिरी गेंद पर चौका छक्का लगाकर जीत दर्ज हुई। सुपर ओवर तक पहुंचे मुकाबलों ने रोमांचक को और बढ़ा दिया। यह साफ संकेत है कि इस सीजन में कोई भी टीम किसी को हराने का मादा रखती है। जब बल्लेबाजों का दबदबा रहा, वहीं गेंदबाजों ने भी महत्वपूर्ण मौके पर मैच पलटे। डेथ ओवर्स में सटीक और कर और धीमी गेंदों ने बल्लेबाजों को परेशान किया। स्पिनर्स ने मिडिल ओवर्स में रन गति को नियंत्रित किया और विकेट निकालने में अपनी भूमिका को साबित किया। पॉइंट्स टेबल की स्थिति बेहद दिलचस्प हो गई है। टॉप फोर में जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर। मिड टेबल की टीमें हर मैच को करो या मरो की तरह से खेल रही हैं। नेट रन अब निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। हर जीत टीम को ऊपर ले जा रही है, जबकि एक हार पूरे समीकरण बदल रही है। आईपीएल 2026 का जो पिछले सप्ताह ट्रेंड यही दिख रहा है कि युवा खिलाड़ी बिना किसी डर के खेल रहे हैं, बेक ऑफ खेल रहे हैं। अनुभवी खिलाड़ियों के साथ उनका कॉम्बिनेशन टीमों को संतुलन ही दे रहा है। आईपीएल 2026 में अब अपने ऐसे रोमांचक दौर में प्रवेश कर चुका है। हर मैच के साथ प्लेऑफ की तस्वीर बदल रही है। आने वाले मुकाबलों में दबाव और बढ़ेगा और यही दबाव तय करेगा कि कौन सी टीम ट्रॉफी की तरफ कदम बढ़ाएगी। भारत ने IITTF वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्लोवाकिया को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की और ग्रुप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम AFC एशियन कप के लिए चीन पहुंच चुकी है, जो भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है। भारत में रग्बी प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे सीजन की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें पहली बार महिला टीमों को भी शामिल किया जा रहा है। यह खेल के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। देश में खेल सुविधाओं को लेकर भी बड़े सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जयपुर में पैरा एथलीट्स के लिए विशेष स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन पिछले सप्ताह हुआ है, जिससे समावेशी खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेशनल स्तर पर भी जहां खेल राजनीति बिजनेस और प्रतिस्पर्धा के नए आयाम सामने आ रहे हैं, वहीं भारत में खेलों का दायरा तेजी से बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन और नई पहल यह संकेत देती है कि आने वाले समय में भारतीय खेलों का भविष्य और उज्ज्वल हो सकता है।
1: ये थे अशोक सिंह, वरिष्ठ खेल पत्रकार, इस सप्ताह के प्रमुख खेल समाचारों के साथ। और श्रोताओं, अब आइए एक ऐसे खेल के विषय में चर्चा करते हैं जिसे हम कम ही खेलते रहे हैं, परंतु इस खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने काफी नाम कमाया है। हम बात कर रहे हैं कॉर्फ बॉल की। कॉर्फ बॉल एक ऐसा खेल है जो देखने में तो बास

0: बास्केटबॉल की तरह ही लगता है, परंतु इसमें एक ही गोल पोस्ट होता है। और कमाल की बात यह है कि इसे लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर खेलते हैं, यानी एक टीम में दो लड़के और दो लड़कियां होती हैं। अर्थात ये लैंगिक भेदभाव से दूर बराबर क्षमता के साथ पुरुष एवं स्त्रियों के इस खेल को खेलते हैं और बराबरी की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तो इस खेल के विषय में हमने बात की पूर्व राष्ट्रीय कॉर्फबॉल कैप्टन और वर्तमान कोच रीना सिंह जी से। उन्होंने इस खेल के विषय में और भारतीय टीम की उपलब्धियों के विषय में बताया।
1: खेल प्रेमी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे खेल की जो कम जाना पहचाना रहा है, लेकिन उसमें भारत की उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण रही हैं और यहाँ के खिलाड़ियों ने बहुत आगे बढ़कर विश्व चैंपियन के स्तर तक पहुंचने की उपलब्धि हासिल की है। तो ऐसी एक खिलाड़ी है रीना सिंह जी, और वो जो खेल खेलती है उसका नाम है कॉर्फ बॉल। कॉर्फ बॉल एक विशेष प्रकार का खेल है जिसमें बॉल यूज होता है बास्केटबॉल की तरह, लेकिन खासियत इसकी ये रही है कि इसमें लड़के लड़कियां मिलकर एक टीम में शामिल होते हैं और शामिल होकर वो खेल खेलते हैं। कैसा ये खेल है, किस प्रकार इसको खेला जाता है, इसके क्या नियम हैं और क्या भविष्य है इसका भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में, तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कॉर्फबॉल की रीना सिंह जी से। रीना सिंह जी संयोग बस आगरा में ही रह रही हैं इस समय, और उनसे हम बातचीत करके बहुत सारी बातों की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। रीना सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये कॉर्क बॉल जो नाम का खेल है, ये किस प्रकार का खेल है, कम जाना पहचाना लगता है, कम सुना गया है इसके विषय में, कुछ बताएं आप ये किस प्रकार का खेल है।
2: ये कॉर्क मतलब डच लैंग्वेज में होता है बास्केट, तो ये हॉलैंड और बेल्जियम का नेशनल गेम है। लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं और 100 साल से भी ज्यादा पुराना, यानी कि 2003 में तो 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो लगभग इसको 50 वर्ष हो चुके हैं, 40 वर्ष तो आराम से होने वाले हैं। तो चार लड़के चार लड़कियों की टीम होती है।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: आठ खिलाड़ी खेलते हैं।
2: हाँ, एक टाइम में एक टीम ऐसे आठ खिलाड़ी खेलेंगे और वो दो टीमों में डिवाइड हो जाएंगे, दो लड़के दो लड़कियां अटैक के लिए जाएंगे, दो लड़के दो लड़कियां डिफेंस के लिए जाएंगे। बास्केटबॉल टीम में हम कभी भी इधर से उधर आ सकते हैं, लेकिन इसमें आफ्टर टू गोल चेंज होता है, जब एक टीम दो गोल मार लेगी तभी दूसरा खिलाड़ी दूसरी तरफ जा सकेगा, यानी कि अटैक करने वाले या डिफेंस करने वाले दो गोल के बाद आपस में चेंज हो जाते हैं। जो अटैक में खेल रहे होते हैं वो डिफेंस में चले जाते हैं, जो डिफेंस में खेल रहे होते हैं वो अटैक में चले जाते हैं। ये खेल आउटडोर इनडोर बीच यानी कि तीनों जगह होता है, और आउटडोर में इसकी मेजरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है और इंडोर में थोड़ी कम होती है। आउटडोर में ये 30x60 का होता है, वैसे इंडोर में ये 20x40 का होता है।
1: जी जी जी। अच्छा, आपने बताया कि जब तक दो गोल नहीं हो जाते हैं तब तक टीमें बदलती नहीं है, यानी डिफेंसिव टीम अटैक में नहीं जाती है, तो अगर किसी पूरे मैच में गोल ना हुए तो क्या वो पूरी टीम जो डिफेंस कर रही है वो डिफेंस ही करती रह जाती है?
2: नहीं नहीं, एक्चुअली में इसका नियम ये कि आप इस गेम में ऐसा सोचिए कि लड़के भी खेलें लड़कियां भी खेलें, दोनों को बराबर का अधिकार है। वैसे ही जो अटैक करने वाला है उसको भी पूरा मौका मिलना चाहिए, जो डिफेंस करने वाला है उसको भी पूरा मौका मिलना चाहिए, यानी कि डिफेंस को अटैक करने का भी मौका मिलना चाहिए और अटैकर को डिफेंस का ही मौका मिलना चाहिए। कोई भी टीम दो गोल करे, यानी कि चाहे अपोनेंट टीम कर ले या दोनों टीम एक एक गोल कर ले या कोई एक टीम दो गोल कर ले, लेकिन वो लोग बाद में चेंज होंगे होंगे।
1: अच्छा, ये खेल भारतवर्ष में किन क्षेत्रों में ज्यादा खेला जा रहा है?
2: देखिए, हरियाणा में इसको जो उनके राज्य पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को दिए जाते रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छे स्तर पर आगरा से बढ़ रहा है खेलने के लिए, झांसी कानपुर इधर काफी जगह, अलीगढ़ जो भी विश्वविद्यालय में भी ये खेल है, इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है, स्कूल गेम्स में भी है, तो खेल का इसको जहाँ कोएड है वहाँ पर ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खेल दिल्ली है, हरियाणा है, साउथ में भी काफी खेला जाता है, पूरे देश में लगभग सभी देशों में खेला जाता है ये खेल।
1: जी जी जी। आप क्योंकि आगरा से हैं और आपने इस खेल में बहुत लंबी दूरी तय की है,
2: जी।
1: आप अपने विषय में बताइए कि कब इस खेल को आपने शुरू किया और अभी आप कहाँ तक पहुँची हैं इस खेल के उपलब्धि।
2: देखिए, मैंने 92 में अपनी यूपी की जूनियर टीम के लिए खेलना शुरू किया।
1: जी जी।
2: तो सबसे पहला नेशनल मैंने मंडी हिमाचल में खेला, सबके बाद मैंने कभी को पलट के नहीं देखा, मतलब मैंने लगातार 20 साल खेला और सबसे पहला जो मेरा चयन हुआ 98 में एशिया चैंपियनशिप के लिए साउथ अफ्रीका में डरबन, तो हम लोग वहाँ गए

0: और वहाँ पर हमने खेला। उसके बाद 99 में प्रथम बार वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ मेरा इंडिया टीम में, तो हम लोग एडिलेड ऑस्ट्रेलिया खेलने गए। वहाँ जो साउथ अफ्रीका में कहाँ से पता चला, ये सफर ऐसे ही चलता रहा। फिर 2000 में एशिया ओशियाना हुआ इंडिया ने, उसमें कहाँ से पता जीता वर्ल्ड कप के लिए, फिर क्वालिफाई किया। तो मैंने उसमें उस टीम की हिस्सेदार थी। 2003 में वर्ल्ड कप मैंने हॉलैंड में एस्टरडम में मैंने ये खेला, नीदरलैंड से हम बोलते हैं। तो वहाँ पर भारत की अच्छी पोजीशन में थी, बेस्ट 16 जो टीमें थी उसमें वो टीम आई। फिर मैं उप कप्तान के रूप में, इसलिए रहता है कि एक लड़का कप्तान होगा तो लड़की वाइस कैप्टन होगी, और लड़की कैप्टन है तो लड़का वाइस कैप्टन होगा, यानी सभी को अधिकार है इसमें। फिर मैंने 2006 में मुझे भारत का कप्तान बनाया गया, 2006 में मुझे कप्तान बनाया गया भारत का। और हांगकांग में हम लोग खेले तो हमने वहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और भारत को कांस्य पदक जिताया। फिर 2007 में वर्ल्ड कप था, 2007 में वर्ल्ड कप मैंने चेकोस्लाविया यानी कि चेक रिपब्लिक जिसे हम बोलते दो भागों में बट गया, चेक रिपब्लिक चेक गणराज्य में मैंने खेला, ब्रूनो में, ब्रूनो में खेला। तो वहाँ पर भारत की बहुत शानदार रैंकिंग थी, जो कोहली भी एशियन टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मतलब वो सोच नहीं सकते हम लोग 8वीं रैंक में थे। फिर एशिया चैंपियनशिप हुई 2008 में, लास्ट मेरा इंटरनेशनल जो एज ए प्लेयर था वो 2008 था। 2008 में वो इंडिया में ही हुई और हमने कोरिया इन सबको हराते हुए चाइना साइपे से हमने फाइनल खेला मेरी टीम ने, मैं उसमें ही भारत की कप्तान थी। उसके बाद 2009 में मैं जूनियर इंडिया की भी कोच रही। तो अपने आप को प्राउड होता है, खेल चाहे कोई भी हो, लेकिन मैंने भारत के लिए खेला, भारत के झंडे को कई बार लहराया, तो मुझे प्राउड होता है कि मैं ऐसी टीम की कप्तानी की जहाँ पर लड़के भी खेलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो समय वर्तमान बच्चे हैं, उनमें कैसा उत्साह है इस खेल को लेकर?
0: देखिए, अपने समाज की जो एक दृष्टिकोण है, लड़के लड़कियां साथ खेलना, पहले लड़कियों को खेलना ही, तो उसमें पहले से तो बहुत ज्यादा बदलाव आया है। मतलब जब मैं खेलती थी तो उसको लेकर अगर हम देखा जाए तो, और आज की स्थिति में देखा जाए तो आज खेल के भी सारे पेरेंट्स अवेयर हूँ। और टीमें भी पहले नेशनल में थोड़ी कम टीमें हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जहाँ की भाग ना करती हूँ। टीमें आती हैं, बच्चे खेलते हैं, बेनिफिट लेते हैं। हिमाचल में कई लोग, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, सब कॉर्फबॉल के माध्यम से जॉब पर लगे हुए हैं। बहुत अच्छा स्कोप है, लड़के लड़के साथ खेलते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि लड़कियों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए मैदान में पुरुषों के सामने क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है।
1: जी जी,
0: भविष्य बहुत उज्ज्वल है। बच्चे अगर इसको खेलेंगे और इसके रूल्स को जानेंगे तो लड़के लड़की खेलते भले ही साथ हैं, लेकिन लड़की के अधिकार सुरक्षित है, वैसे लड़के के भी अधिकार सुरक्षित है। लड़का उसे कहीं भी हिंडरिंग या डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। ये आपस का जो सहयोग सामंजस्य है ना, वो उसमें दिखाई देता है। अगर लड़की को गोल मारना है तो उसे लड़की की मदद लेनी ही होगी। अगर लड़की को गोल मारना है तो लड़का लड़की की बिना मदद के वो गोल नहीं कर सकती। इनके खास वाली बात अलग है कि आपने शॉट उठा दिया और आपकी शूटिंग रेंज बहुत अच्छी है और आपने गोल कर दिया, लेकिन फिर भी आपको रिमाउंडर असिस्टिंग के लिए लड़की की आवश्यकता है या लड़की की आवश्यकता पड़ती है।
1: जी,
0: तो समाज को ये दिखाता है ये खेल कि एक महिला पुरुष आपस में सामंजस्य बनाकर के किसी खेल को किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।
1: बहुत सुंदर बात है आपने कही। ये न केवल समाज में जो लैंगिक समानता है उसकी ओर इंगित करने वाला खेल है, और इसको अगर बच्चे अपनाएं और अगर पूरी तरह से खेल भावना के साथ खेलें तो न केवल खेल में वो आगे बढ़ेंगे, खेल में उनका नाम होगा, खेल में उनका करियर अच्छा बनेगा, बल्कि साथ ही साथ समाज में भी जो आपसी भाईचारा है, आपसी लैंगिक समानता की बात है, वो भी बहुत सुदृढ़ होगी। तो रीना जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमें, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आप इस खेल के माध्यम से समाज को भी एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रही हैं, और आपने महिलाओं को विशेष करके इस क्षेत्र में आगे आने के लिए और महिलाओं के जो खेल
2: ये थी रीना सिंह जी, कॉर्फ बॉल की पूर्व राष्ट्रीय कप्तान और वर्तमान कोच। और अब बात करते हैं मुक्केबाजी की, यानी बॉक्सिंग की। यूं तो यह एक आक्रामक खेल है, परंतु यदि इसे खेल भावना के साथ खेला जाए तो न केवल शारीरिक स्फूर्ति एवं शक्ति का उचित प्रदर्शन होता है इस खेल में, बल्कि यह खिलाड़ी की मानसिक सुदृढ़ता का भी परिचायक बन जाता है। तो आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी अभय प्रताप सिंह चौहान से की गई ये बातचीत।
1: श्रोताओ नमस्कार, इस समय हम अभय प्रताप सिंह चौहान जी से बात कर रहे हैं। आप एक प्रख्यात बॉक्सर रहे हैं और भारतीय टीम में भी आपने

0: विभाग किया हुआ है। अभय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: सबसे पहले तो आप अपने विषय में बताइए कि आपका आगरा से क्या नाता रहा है और कैसे आपने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा।
1: सर बेसिकली फादर पुलिस में थे तो आगरा ऐसे यहाँ पर पापा की पोस्टिंग थी। हम बेसिकली डावा के रहने वाले हैं।
0: हाँ।
1: तो फिर यही हमारी सारी स्कूलिंग हुई है और यहीं पर मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करी है। मेरे बड़े भाई जो विनय प्रताप सिंह है यूपी पुलिस में अभी, तो वो पहले बॉक्सिंग में आए थे घर से। उसके बाद मेरे को लेके आए कि पहले मैं थोड़ा मोटा था तो फिजिकल फिटनेस के लिए बॉक्सिंग में लेकर आए। तो ऐसी धीमे धीमे करके वो कब वो फिजिकल फिटनेस एज अ करियर में बदल गया वो पता ही नहीं चला। फिर जूनियर खेला, जूनियर नेशनल में मेडल था, यूथ नेशनल में मेडल था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं इनमें मेडल था, और सीनियर नेशनल होते हैं बॉक्सिंग का उसमें मेडल था। फिर स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू सर मैं इसमें हो गया पैरामिलिट्री में सशस्त्र सीमा बल। इसमें होने के बाद सर फिर यहाँ से ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होते हैं, नेशनल होती है, यहाँ मैंने मेडल दिए। मैंने दो बार ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड, एक बार सिल्वर, एक बार ब्रॉन्ज।
0: जी जी जी जी जी जी। तो ये जो आपका सफर रहा है कैसे फिजिकल फिटनेस की चाहत से शुरू हुआ और फिर आज आप विश्व चैंपियन बने, आपने पुलिस इंटरनेशनल पुलिस के खेलों में भी आपने भागीदारी सुनिश्चित की। अब ये बताएं कि जो बॉक्सिंग एक तरह से ऐसा खेल है जिसमें शरीर की ताकत तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ बहुत फुर्ती की आवश्यकता होती है और जोखिम भरा खेल होता है ये, तो इसको आप कैसे आप इसको कंट्रोल करते हैं और एक बॉक्सर बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं?
1: एक जो सर सबसे पहली बात करता हूँ, बॉक्सिंग अभी कुछ एक रिसर्च हुई थी उसमें बॉक्सिंग वर्ल्ड के सबसे नंबर वन खेलों में है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है।
0: जी जी।
1: इसमें चीज चाहिए होती है, स्किल चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, स्टैमिना, बहुत सारी चीजें चाहिए। बॉक्सिंग में सबसे जो जरूरी मुझे लगता है वो आपके अंदर उनकी विल पावर जो थोड़ा होता है ना अंदर, जो किलिंग इंस्टिंक्ट होती है।
0: हाँ।
1: वो ऐसे खिलाड़ी ज्यादा सक्सेसफुल है वजह उसकी जो थोड़े सॉफ्ट रखते हैं, जो आपस में भिड़ने से थोड़ा अवॉइड करते हैं लड़ने से, इन चीज को एक जो बॉक्सर है उसमें मुझे सबसे जरूरी चीज लगी वो होनी चाहिए थोड़ी जिद टाइप की होनी चाहिए।
0: जी जी। और ये जो मजबूती यानी कि जो विल पावर है वो बहुत मजबूत होना चाहिए।
1: जी।
0: अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि जो एक किलिंग इंस्टिंक्ट होता है कि किसी भी तरह से मार के जीतना है, ये जो भावना होती है, क्या आपको लगता है कि जो एक स्पोर्ट्स मैन की जो भावना होनी चाहिए, जो खेल भावना की बात जो करते हैं वो, और बॉक्सिंग चैंपियन बनने की जो ललक होती है, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो कि हम जीतने की ललक में इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाए कि हम अगले को कॉम्पिटिटर न मानकर उसे दुश्मन मान बैठे, ये जो फीलिंग है इसको कैसे आप नियंत्रित करते हैं या आपकी जो ट्रेनिंग होती है, आपके जो कोच होते हैं वो कैसे इसको समझाते हैं कि किस प्रकार से अपने को नियंत्रित रखो और अपनी जो शक्ति है उसको पॉजिटिव रूप में प्रयोग करो ताकि अगले पर आप विजय प्राप्त करें, कैसे आप इसको तैयार करते हैं?
1: जो हमारे कोच बेसिकली जिन्होंने हमें बॉक्सिंग सिखाई वो आगरे के मिस्टर राहुल सर करके हैं, उन्होंने ये किलिंग इंस्टिंक्ट वाली बात तो कही, पर बॉक्सिंग में सबसे अच्छी खूबसूरती ये होती है इधर आप अगर रिंग में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, रिंग का जैसी वो तीन तीन मिनट के तीन राउंड होते हैं वो खत्म हुए, उसके बाद आप एक साथ उठ रहे हैं, दोस्त हैं, खूब हंस खेल रहे हैं, कोई मन में जो एक अच्छा बॉक्सर जिसने ट्रेनिंग तीन चार साल करी है प्रैक्टिस, उसका दिमाग ऐसे सेट हो जाता है कि वो अगर रिंग में भले हार भी अपने अपोनेंट से वो दिल में कुछ नहीं रखता, वो रिंग की बात की वो रिंग में भूल जाता है।
0: ये जो बॉक्सिंग है इसके जो नियम है, कुछ नियमों के विषय में बताइए कि केवल पंच ही नहीं लगाना है, डिफेंस भी करना है, और पंच लगाते समय क्या क्या जो आवश्यकताएं होती है कि जो नियमों में बांधते हैं खिलाड़ी को, क्या क्या जरूरी होता है जो ध्यान में रखना होता है?
1: सर बॉक्सिंग में जो इतने साल में मैंने सीखा, बॉक्सिंग में सबसे जरूरी है कि मारो और खुद मार मत खाओ, हिट और यू डोंट गेट इट, ऐसी कहावत है काफी। बॉक्सिंग में अगर ये स्ट्रीट फाइट से बिल्कुल अलग होता है, स्ट्रीट एक्चुअली क्या है कि इसमें जो आपको पंच चलाने की टेक्निक बताते हैं, कैसे आप बॉडी को टर्न करेंगे तो आपका पंच सही आएगा, रेंज का वो होता है कि सामने वाला इतनी रेंज तक इसका पंच खुलता है तो हम इसके बाद पंच मार सकते हैं तो हम स्कोर ले सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बॉक्सिंग में एक डिसिप्लिन में और लंबे टाइम तक ट्रेनिंग की जाती है ना, तब वो आपकी बॉडी अडॉप्ट कर पाती है वो चीज जो बॉक्सिंग के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी।
1: पंच मारना हो गया, डिफेंस हो गया, डिफेंस बहुत जरूरी है, सिर्फ आप हार मार के नहीं जीत सकते, आपको मारना होगा और मार के बचना होगा।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: जी सर।
0: अब एक बात बताएं कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं

0: हैं। बचपन में तो उनके अंदर बहुत उत्साह होता है और बॉक्सिंग को वो सेल्फ डिफेंस का एक माध्यम मानकर सीखना शुरू करते हैं, जैसे कराटे है या जूडो है या फिर बॉक्सिंग है। तो लेकिन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना है, अगर इसको खेल के करियर के रूप में लेना है, तो फिर उन बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो जो उत्साह है, जो पहले जो एक क्रेज होता था या एक कहें कि एक ग्लैमर दिखाई पड़ता था बॉक्सिंग में, वो उसको ज्यादा तवज्जो दे या कि फिर इसको करियर के रूप में अगर लेना है तो अपने शरीर स्वस्थ हो और शरीर की जो बनावट है और अपनी जो फुर्ती है, अपने विल पावर है, इसको ज्यादा ध्यान में रखें। अगर किसी को चुनाव करना हो बॉक्सिंग का तो वो किन किन बातों पर वो ध्यान रखना चाहिए उसे?
1: ये अगर स्पेसिफिक बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में सर अगर आपके अंदर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस और चार लोगों के बीच में खड़े होके बोलने की हिम्मत है और छोटे लेवल पर मैं बता दूं स्टार्टिंग में पता कैसे आप थोड़े बेबाक हैं तो आपको ये कॉम्बैट गेम जैसे हो गए एमएमए हो गया, वुशू हो गया, बॉक्सिंग, ऐसे गेमों में बिल्कुल जाना चाहिए। जो हाइट का एडवांटेज करते हैं कि आप लंबी हाइट की तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो सबसे ज्यादा इसमें जरूरी वो ये कि अगर आप अपने दिल से अपने हार्ट से स्ट्रांग हैं तो बॉक्सिंग और या कोई मार्शल आर्ट गेम वो बहुत आपके लिए आसान रहता है स्टार्टिंग में।
0: अच्छा अभय जी ये बताएं कि इस तरह के जो खेल हैं जिसमें कि बहुत स्किल की आवश्यकता है और जिसमें कि ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, अगर गलत ट्रेनिंग हो गई तो ये खेल ऐसा है कि अगर उचित या कहें कि अगर योग्य कोच नहीं मिला तो घायल हो सकता है व्यक्ति और उसका करियर पूरी तरह से समाप्त हो सकता है शुरू होने से पहले ही। तो ऐसे में भारतवर्ष में और विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए कितनी सुविधाएं मौजूद हैं? आगरा से चूंकि आपने अपना करियर शुरू किया है तो आगरा में वो सुविधाएं कितनी हैं और फिर स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे जो सुविधाएं मौजूद हैं वो कितना अच्छी है ताकि हम जिसके आधार पर हम इंटरनेशनली कम्पीट कर सके?
1: मैं आगरा में ऑलमोस्ट 2012-11 से शुरू करा था गेम खेलना। तो आगरा में सबसे है ना, आगरा इतना बड़ा मेट्रो सिटी है, ताजमहल है, सारे 5-7 स्टार होटल है, पर आगरा में सबसे जो कमी मुझे लगती है वहाँ एक अच्छा स्टेडियम नहीं है। वो जो आगरा में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम वहाँ का ट्रैक आज भी खच्चा है, बॉक्सिंग की तो हालत आप पूछे नहीं, वहाँ काफी टाइम से वहाँ बॉक्सिंग का कोच भी नहीं था, अभी कुछ टाइम पहले आए वो कोच। सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नो डाउट गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, जैसे लखनऊ में बहुत अच्छा बॉक्सिंग की 2 इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सिंग रिंग है और हॉल सारी फैसिलिटीज है। पर अभी सर एज अ बॉक्सिंग देखा जाए तो इसमें बॉक्सिंग में हरियाणा का ज्यादा दबदबा है, वहाँ पर आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर भी है वहाँ पर बहुत सारे और लोग अपनी प्राइवेट अकेडमी भी खोल रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट थोड़ा और सपोर्ट करती है क्योंकि वहाँ पहले ओलंपिक में मेडल आ चुके हैं तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरफ ज्यादा है। एज कम्पेयर यूपी इतना बड़ा है पर तरफ धीमे धीमे हो तो रहा है क्योंकि यूपी में क्या है अभी वहाँ नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुला है बनारस में, तो स्लोली हो रहा है पर इतने बड़े प्रदेश के हिसाब से अभी बॉक्सिंग के लेवल में बहुत कमी आई है।
0: जी जी जी, यानी और भी कुछ करने की आवश्यकता है, अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो अभय जी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी बॉक्सिंग की बहुत अच्छी सुविधाएं मौजूद होंगी और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं जो बॉक्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आवश्यक सुविधाएं मिल सकेंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी कम्पीट कर सकेंगे। अभय जी चलते चलते हमारे जो युवा है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस स्पोर्ट्स को लेकर?
1: स्पोर्ट्स का सर ये कहना चाहूंगा युवाओं से कि ये शॉर्ट रास्ता नहीं है कि 1-2 साल में आपने खेल के अचीव कर लिया, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसमें लगना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, सारी चीजें देखनी पड़ेगी और हार्डवर्क तो बिल्कुल ही करना पड़ेगा। हार्डवर्क का कोई वही ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसकी थोड़ी ट्रेनिंग करो और खासकर ये कॉम्बैट गेम जो लड़ाई वाले गेम है बॉक्सिंग, वुशू, कराटे, इनमें आपको शारीरिक रूप से आपको बहुत मजबूत होना जरूरी है। तो हमेशा फोकस रहे और उम्मीद कभी ना हारे, खुशी हो जाता सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और जब हम पूरे मन से तन मन से लग जाते हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तो निश्चित ही वो सफलता हमें मिलेगी। हम कामना करते हैं कि आप भी अपने जो आगे पढ़ने का जो लक्ष्य है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको वर्ल्ड चैंपियन बनने के का जो लक्ष्य है उसमें आपको सफलता मिले और आगरा और हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। आपने हमसे बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: ये थे बॉक्सिंग खिलाड़ी अभय प्रताप सिंह चौहान। इसी के साथ खेल दर्पण का ये अंक समाप्त करने की ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। अगले अंक में पुनः हाजिर

0: होंगे कुछ अन्य खेल की चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 10:30 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं पार्थ प्रतिम राय का राग हेमंत में सितार वादन।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त हो चुका है शास्त्रीय संगीत का, तो आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं पंडित उल्लास कशालकर से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग दरबारी कानड़ा, विलंबित गत तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है। मुखड़े के बोल हैं दुल्हन तेरी अच्छी लगी, द्रुत ख्याल की बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। मुखड़े के बोल हैं तू है सोई करीम रहीम, तो आइए सुनते हैं पंडित उल्लास कशालकर से राग दरबारी कानड़ा में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित उल्हास कशालकर से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग दरबारी कानड़ा। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत